श्रेष्ठता का क्या अर्थ है? श्रेष्ठता का अर्थ है दूसरों से अधिक ज्ञान प्राप्त करना। अर्थात मूल्य इस बात का नहीं कि स्वयं कितना ज्ञान प्राप्त किया, मूल्य इस बात का है कि प्राप्त किया हुआ ज्ञान अन्य लोगों से कितना अधिक है। अर्थात श्रेष्ठता की इच्छा ज्ञान प्राप्ति को भी एक स्पर्धा बना देती है, और स्पर्धा में विजय अंतिम कब होती है? कुछ समय के लिए तो श्रेष्ठ बना जा सकता है, किंतु सदा के लिए कोई श्रेष्ठ नहीं रह पाता। फिर वही असंतोष, पीड़ा और संघर्ष जन्म लेता है। किंतु श्रेष्ठ बनने के बदले यदि उत्तम बनने का प्रयत्न करें तो क्या होगा? उत्तम का अर्थ है कि जितना प्राप्त करने योग्य है वो सब प्राप्त करना, किसी से अधिक पाने की इच्छा से नहीं, मात्र आत्मा की तृप्ति हेतु कुछ प्राप्त करना। उत्तम के मार्ग पर किसी अन्य से स्पर्धा नहीं होती, स्वयं अपने आप से स्पर्धा होती है। अर्थात उत्तम बनने का प्रयत्न करने वाले को देर अबेर सारा ज्ञान प्राप्त हो जाता है, बिना प्रयत्न के ही वो श्रेष्ठ बन जाता है। किंतु जो श्रेष्ठ बनने का प्रयत्न करता है वो श्रेष्ठ बने या ना बने, उत्तम कभी नहीं बन पाता।

0: दर्शनों और पूर्वाभासों के आधार पर हम भविष्य के सुख दुख की कल्पना करते हैं। भविष्य के दुख का कारण दूर करने के लिए हम आज योजना बनाते हैं, किंतु कल के संकट को आज निर्मूल करने से हमें लाभ मिलता है या हानि पहुंचती है, ये प्रश्न हम कभी नहीं करते। सत्य तो ये है कि संकट और उसका निवारण साथ जन से, व्यक्ति के लिए भी और सृष्टि के लिए भी। नहीं, आप अपने भूतकाल का स्मरण कीजिए, इतिहास को देखिए, आप तुरंत ही ये जान पाएंगे कि जब जब संकट आता है तब तब उसका निवारण करने वाली शक्ति भी जन्म लेती। यही तो जगत का चलन है।
1: वस्तुतः संकट ही शक्ति के जन्म का कारण है।
0: प्रत्येक व्यक्ति जब संकट से निकलता है तो एक पद आगे बढ़ा होता है, अधिक चमकता है, आत्मविश्वास से अधिक भरा होता है, ना केवल अपने लिए अपितु विश्व के लिए भी। क्या ये सत्य नहीं? वास्तव में संकट का जन्म है एक अवसर का जन्म, अपने आप को बदलने का, अपने विचारों को ऊंचाई पर करने का अवसर, अपनी आत्मा को बलवान और ज्ञान मंडित बनाने का। जो ये कर पाता है उसे कोई संकट नहीं होता, किंतु जो ये नहीं कर पाता वो तो स्वयं एक संकट है विश्व के लिए। विचार कीजिए।

0: जागृति बुन, आपने कारे सोचू है? अगर आप बूंदे रुके जाएंगा तो हूँ था है?
1: नाना अंजलि बुन, हूँ था का?
0: अरे जागृति बुन, आपड़ी जे नदिये है, ये हुके जाएंगा। खेतर बंजर थे ही जाएंगा, ने आपड़ो जीवन जे है, ये भी रुके जागा।
1: ओ अंजलि बुन, एटलेस मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ो जीवन है।
0: होवे जागृति बुन, हर बूंद में आपड़ो जीवन है, ने आज धरती माता नु संबल है।
1: होवे अंजलि बुन, आपड़े भाई बुन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नी राखो, बारिश ने पानी नु संग्रह करो, आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी सागा।
0: होवे होवे जागृति बुन, आपड़े भाई बुनो ने कहो कि पानी बचाओ, पानी बचाओ, ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो। जल जीवन है, आ आपड़ी पहचान है, हर बूंद नु मोल आपड़े जानो।
2: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाग रेडियो 90.8 FM।

कार्यक्रम खेतीबाड़ी हमरवा र हंगरे किसान भाई बोनन ने आपनी बोन जागृति नु राम राम। आप सब हमरे रहो आपड़ो सामुदायिक रेडियो वाग रेडियो 90.8 FM माते ने आप सबों नु स्वागत करा हां आपरे आज ने कार्यक्रम खेतीबाड़ी में जिम के किसान भाई बोन आपरे रोज ए कार्यक्रम खेतीबाड़ी ने लेने हाजिर थे सा एक नया विषय ने हाते तो आज नु एक नयो विषय जुड़ाई रु है। आज नु विषय है पोषण समिति खेती हूं केवाय ने आनु हूं महत्व है। तो आ सब बातें आज आपड़े करंगा पण कार्यक्रम की शुरुआत में आपड़े हमरेला गीत ने मोरे करा आपड़ी बातें आप हमर तरो आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें वागर रेडियो 90.8 FM माते

0: किसान भाई बहन गीत तो आयशु पूरु ने अणा गीत ने बात एक वक्त फिर आप सबों नु स्वागत कर रहा अपने आज कार्यक्रम खेतीबाड़ी में जिम के गीत की पहले आपने विषय बताड़ियो तू की आज आप बात कर रहा पोषण संवेदी खेती ने बारे में क्या पोषण संवेदी खेती हूँ कहवा ने आनो अपने किसान भाई बहन बल्ले हूँ महत्व है तो आ सब बातें करवा बल्ले आज अपने स्टूडियो में पधारे तक है श्रीमान सोहन नाथ जोगी ये अपने बताड़ेगा पोषण संवेदी खेती ने बारे में तो पहले हमरी लाना बात है मोरे कर अपनी बात है सर नमस्कार
1: नमस्कार
0: सर आपका स्वागत है वाघा रेडियो परिवार में
1: धन्यवाद
0: सर जैसा कि हम कार्यक्रम खेतीबाड़ी में नए नए विषय पर बातचीत करते हैं हमारे किसान भाई बहनों के साथ तो आज भी एक नया विषय जुड़ रहा है पोषण संवेदी खेती तो सर आप हमारे स्टूडियो में पधार रहे हैं तो सबसे पहले आप हमारे किसान भाई बहनों को ये बताइए कि आखिर ये पोषण संवेदी खेती है क्या
1: सभी किसान भाइयों को राम राम और आज हम बात कर रहे हैं पोषण संवेदी खेती
0: जी हाँ।
1: और पोषण खेती जो तंत्र है वो हर किसान को अपनाना चाहिए क्योंकि हम जिस एरिया से आते हैं या हमारा जो वागड़ है हमारे यहाँ पे हर किसान की एवरेज अगर हम खेत देखेंगे तो मुश्किल से 4 बीघा 5 बीघा 6 बीघा मतलब हमारे पास ज्यादा जमीन नहीं है
0: बिल्कुल सर
1: उसी जमीन के अंदर हमको चारा भी उगाना है उसी में हमको दूसरी फसल नकदी फसलें भी उगानी है उसी में हमको हमारा खाने योग्य चीजें भी लगानी है
0: बिल्कुल सर
1: ताकि परिवार है उसको खा सके
0: बिल्कुल
1: तो आज हम बात कर रहे हैं पोषण संवेदी खेती के बारे में
0: जी।
1: तो पोषण संवेदी खेती ऐसा है कि ऐसी खेती जो पोषण की दृष्टि से परिपूर्ण हो और परिवार को पोषण के लिए अधिकतर उसकी जरूरतें हैं वो अपनी खुद की खेती से पूर्ण हो जाए
0: बिल्कुल
1: ठीक है इसमें से चाहे हम सब्जी फल मसाले अनाज जो भी सामग्री पोषण के रूप में आती है वो सारी चीजें लगभग लगभग हम सारी चीजें हमारी खेती से ले ले हुए हमारी दालें हैं
0: जी।
1: है ना ये सारी चीजें हम हमारी खेती से प्राप्त कर ले हुए और हमको ऐसी प्लानिंग करके खेती करनी चाहिए ताकि हम हमारी दूसरी जरूरतें हैं उनके लिए भी उसी जमीन में से खेती हो जाए और हमारे परिवार की पोषण की आपूर्ति के लिए भी जो हमारे पास उपलब्ध जमीन है उसी से पूर्ति हो जाए और वर्ष भर के लिए वो सारी चीजें पर्याप्त हो
0: बिल्कुल
1: क्योंकि हमारे घर पे जो उगी हुई चीजें हैं वो ज्यादा पौष्टिक है फ्रेश है ना और हम बाजार में से लेने जाएंगे तो वो कोल्ड स्टोरेज में पड़ी होगी इस मतलब पिछले साल पकी हुई चीजें होगी जो कोल्ड स्टोरेज में स्टोर करके रखी हुई होगी और वो आपको आज उपलब्ध होगी पता नहीं वहां पे सिंचाई के लिए उनको कौन सा पानी दिया गया है कौन सा खाद डाला है कौन सा पेस्टिसाइड डाला है हमको कुछ नहीं पता है हम बाजार में जाते हैं सब्जी देखते हैं रंग देखते हैं और ले आते हैं लेकिन उसके साथ में हम कितना जो है बीमारियां मतलब वो पोषण के साथ में हम कुपोषण साथ में घर पे ले आते हैं
0: बिल्कुल
1: तो पोषण की दृष्टि से देखते हुए कि हमारे खुद को हमको स्वावलंबी हमारे पोषण के लिए बनना जरूरी है हमारा जो खेती है पोषण को लेके उसको स्वशासी बनाना जरूरी है और हमारा जो स्वराज है जो पोषण स्वराज है वो तभी कायम हो सकेगा जब हमारी अधिकतर जरूरत की चीजें हमारी खेती से निकलेगी और हमारा परिवार की पोषण की जरूरत है हमारी खेती बाड़ी से पूर्ण होगी
0: बिल्कुल सर
1: और इसी को ही हम पोषण संवेदी खेती कहेंगे
0: बिल्कुल सर तो सर ये तो आपने बताया कि पोषण संवेदी खेती होती क्या है यही हम आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे पोषण संवेदी खेती हमारे किसान भाई बहन करते हैं पोषण युक्त चीजें लगाते हैं तो उनको क्या लाभ हो सकता है
1: देखिए पोषण संवेदी खेती जो किसान करेगा एक तो सर्वप्रथम उसके खाने में विविधता बढ़ेगी
0: बिल्कुल सर
1: है ना
0: खाने में अच्छा रहेगा
1: बिल्कुल विविधता बढ़ेगी अलग अलग प्रकार का खाना खाएगा अनाज में भी वो ऐसा नहीं है कि सीजन वाइज अलग अलग अनाज खाएगा ठीक है उसको ज्यादा डाइवर्सिटी मिलेगी वो छोटा अनाज भी खाएगा बड़ा मोटा अनाज भी खाएगा है ना गेहूं भी खाएगा गेहूं के साथ में वो प्रोटीन के लिए दलहन भी मिला के खाएगा हरी सब्जियां भी मिलेगी कंदमूल फल वाली सब्जियां भी मिलेगी उसको हरे पत्तेदार सब्जियां भी मिलेगी और पौष्टिक सब्जियां जैसे गाजर वगैरह ये सारी चीजें हैं, विटामिन और प्रोटीन से भरपूर फल है, वो सारे मिलेंगे
0: जी।
1: तो उससे परिवार का स्वास्थ्य है अच्छा रहेगा और कम बीमार पड़ेंगे तो जो परिवार के स्वास्थ्य की लागत है वो कम हो जाएगी और जो लागत कम होना यानी कि परिवार की बचत।
0: बिल्कुल।
1: और इसके साथ ही जो वो बाजार में अपने पोषण के लिए खर्च जो करता था वो भी बचेगा, जैसे सब्जी लाने में, दाल लाने में, फल लाने में, ठीक है, या कोई दूसरा प्रकार का अनाज लाने में, तो इस प्रकार से जो है उनको इससे फायदा होगा। साथ ही पोषण संवेदी खेती तंत्र करने से जो जमीन है हमारी, जो धरती माता हम बोलते हैं, ठीक है, उसकी भी सुरक्षा होगी।
0: बिल्कुल, वो और बंजर होने से ही बचेगी।
1: हाँ, बंजर होने से बचेगी, क्योंकि हम उसके लिए हमारे घर पे खाने के हिसाब से हम प्लान करेंगे और क्योंकि हम पोषण के प्रति उसके ऊपर संवेदी होके खेती करेंगे तो हम ये ध्यान रखेंगे कि हमारे स्वास्थ्य का और साथ ही हम मृदा के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखेंगे।
0: बिल्कुल।
1: उसमें हम रासायनिक उर्वरक नहीं डालेंगे
0: जी जी।
1: हम देसी खाद का उपयोग करेंगे, हम जीवामृत का उपयोग करेंगे। मान लो कोई प्रकोप बीमारी का आया फसल पे तो भी हम उस पे 10 परणी का छिड़काव करेंगे,
0: है?
1: हम नीम पेस्ट का छिड़काव करेंगे
0: जी जी।
1: हम अलग अलग प्रकार की जैविक जो तकनीकी है उसका उपयोग करके और उसका रोकथाम करेंगे, न कि हम जो रहे रासायनिक दवाइयां छिड़क के और उनको कंट्रोल करेंगे।
0: बिल्कुल सर।
1: और साथ ही जैसे जो है बीमारियों से जो इनके ये जो रासायनिक खाद है या रासायनिक दवाइयां है, जहर है, यह अपने साथ में बीमारियां भरपूर लाता है
0: जी।
1: और आपने सबने सुना ही होगा कि कैंसर की ट्रेन है
0: जी।
1: वो पेस्टिसाइड का उपयोग ज्यादा करने से और फर्टिलाइजर का उपयोग ज्यादा करने से ही आज पंजाब से कैंसर की ट्रेन चलती है।
0: बिल्कुल।
1: और उस ट्रेन का नाम कैंसर की ट्रेन ही है।
0: कैंसर
1: तो ऐसा इन सब चीजों से बचने के लिए हमारी खेती का प्लानिंग हम पोषण संवेदी खेती तंत्र के अनुसार करें और सर्वप्रथम हमारे परिवार के लिए करें, फिर जो भी हमारा जो बचता है वो हम दूसरों को दे, हम एक चीज दूसरों को दे के उसके चीज के बदले में अनाज के बदले में अनाज ले सकते हैं, सब्जी के बदले में सब्जी ले सकते हैं, सब्जी के बदले में दूध ले सकते हैं, दही ले सकते हैं, वो इस तरह से। और उसमें जो उपयोग भी है वो देसी बीजों का, पोषण संवेदी खेती तंत्र में देसी बीजों का उपयोग होता है, ठीक है, हाइब्रिड बीजों का उपयोग नहीं होता है।

0: क्योंकि वो जेनेटिक मॉडिफाइड बीज है। अभी तक मतलब साइंटिफिकली ये चीज तो प्रूव नहीं हुई है कि वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन ये सोचना चाहिए कि जो उसकी जीन्स है उनके अंदर वो परिवर्तन करके और उस तरह से उन फसलों को या उन बीजों को बनाया गया है, तो वो निश्चित रूप से जो है जिनकी जेनेटिक्स के साथ खिलवाड़ हुआ है वो जरूर कहीं ना कहीं हमारे शरीर को भी नुकसान या हानिकारक हमारे लिए हो सकता है।
1: बिल्कुल सर। तो सर जैसा कि आपने पोषण संवेदी खेती के बारे में बताया कि पोषण संवेदी खेती क्या है और इसके क्या लाभ हो सकते हैं, आपने बताया कि अगर हमारे किसान भाई बहन पोषण संवेदी खेती करते हैं तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख सकते हैं, साथ ही वो अपनी जो भूमि है, अपनी जो धरती माता है, उसको बंजर होने से बचा सकते हैं और उन्हें तरह तरह की विविधता वाले खाने की थाली भी उनको मिल सकती है। और साथ ही हम कह सकते हैं कि अगर उन ज्यादा कुछ पक जाता है तो बाजार में जाकर इसको बेच सकते हैं, जिससे उनकी आजीविका भी चल सकती है।
0: आजीविका चल सकती है, साथ ही जिनको वो देंगे या जिनका वो उपयोग करेंगे उनके स्वास्थ्य के लिए भी वो चीजें अच्छी होगी।
1: बिल्कुल सर। तो सर जैसे कि पोषण संवेदी खेती के बारे में हम बात ही कर रहे हैं, तो आप अंत में हमारे किसान भाई बहनों को क्या कहना चाहेंगे?
0: मैं किसान भाइयों को एक ही संदेश देना चाहूंगा
1: जी,
0: कि हमारी जो खेती है हमको मतलब दृष्टि से सोचने की जरूरत है कि हम जो उगा रहे हैं क्या खा रहे हैं, क्या मैं उगा रहा हूँ वो मैं खा रहा हूँ या नहीं खा रहा हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो मैं उगा रहा हूँ वो बाजार में बेच रहा हूँ और जो मैं खा रहा हूँ वो मैं बाजार से खरीद के ला रहा हूँ।
1: बिल्कुल सर।
0: ऐसा कतई नहीं होना चाहिए
1: जी, जी।
0: क्योंकि किसान है वो अन्नदाता है और अन्नदाता को अपने लिए भी अन्न उगाना चाहिए और दूसरों के लिए भी अन्न उगाना अन्नदाता का दायित्व है।
1: बिल्कुल सर। तो सर जैसा कि आपने बहुत ही अच्छी बात बताई कि हमारे जो किसान भाई बहन हैं वो जो उगा रहे हैं वो कहीं बाजार में बेचकर और बाजार वाली चीजें वो ना खाए, उसके लिए आपने बताया कि जो हम उगा रहे हैं वही हमारे लिए स्वास्थ्यवर्धक है। तो आपने पोषण संवेदी खेती के बारे में बहुत अच्छी जानकारी हमारे किसान भाई बहनों को दी और आप हमारे स्टूडियो में आए, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद
1: किसान भाई बहन जिम के आज आप स्टूडियो में आया था सोहन सर, इन्हें आपने बताड़ियो पोषण संवेदी खेती ने बारे में। अब आप देखी रहो कि टाइम थे क्यों है कार्यक्रम थकी सूटा पड़वानो, तो सूटा तो पड़ा पर साथ साथ हम लीला एक और गीत।

0: दोस्तों, अगर चाहो तेज दिमाग और स्वस्थ जीवन तो आयरन युक्त तत्वों से भरपूर करें भोजन। खून में आयरन तत्वों की कमी होने पर एनीमिया रोग हो सकता है, जल्दी थकान होना, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, सांस फूलना, ये सभी एनीमिया के ही लक्षण हैं। लक्षण महसूस होने पर साथियों, अपने नजदीकी राजकीय स्वास्थ्य केंद्र में एनीमिया की निःशुल्क जाँच जरूर करवाएं। हीमोग्लोबिन का स्तर 7 से कम होना अति गंभीर स्थिति को दर्शाता है। ऐसी स्थिति में चिकित्सक को जरूर दिखाएं और उचित उपचार लें। वागर रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
1: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनबाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
2: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
1: आज ही अपनी नजदीकी आंगनबाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनबाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
3: भाई ने बोलो, आप एक कार्य विचार करियो है कि जैया पेड़ ने छाव में आपने रह हा? या आपने ने कितनी शांति मिले है, जीनी हवा में आपने हाल रह, ई भी आपड़ा थकी कई आश राके है। होवे अगर पेड़ ने रहेगा तो आपड़े हरते जीवंगा। प्रकृति आपड़ी जरूरत नहीं बल्कि आपड़ी जिम्मेदारी है। एक पेड़ लगाड़ंगा, पानी ने बचाड़ंगा ने आपड़ी धरती ने जीवन दान आलंगा। होवे प्रकृति ने बचावो, भविष्य ने हदारो। होवे

नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर। मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पारशर, लेकर हाजिर हो चुकी हूं साथियों कार्यक्रम सच्चा बचपन को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में। श्रोता साथियों, आज हमारी कार्यक्रम में आपसे बातचीत का विषय है स्वस्थ रहने के लिए केवल दवाइयों की नहीं बल्कि सही पोषण पौष्टिक भोजन की भी जरूरत होती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे घर के छोटे से आंगन में उगने वाली सब्जियां हमारे पूरे परिवार के स्वास्थ्य को बेहतर बना सकती है। आज हम बात करेंगे घर के आंगन की पोषण वाटिका और परिवार के स्वास्थ्य को लेकर। लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत में सुनते हैं इस प्यारे से गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर आपकी अपनी साथी अंजलि पारशर के साथ में।

0: साथियों, इस गीत के बाद फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि मैंने आपको गीत से पहले विषय से रूबरू कराया था कि आज हम बात करने वाले हैं घर के आंगन की पोषण वाटिका और परिवार के स्वास्थ्य को लेकर। तो श्रोता साथियों, हम बातचीत को आगे बढ़ाएं उससे पहले एक छोटी सी कहानी हम सुनते हैं जो कि सीमा और रीना नाम की महिला से जुड़ी हुई है।
1: अरे रीना, सुबह सुबह तुम आंगन में क्या कर रही हो?
2: अरे सीमा, आओ, मैं अपनी पोषण वाटिका में सब्जियों को पानी दे रही हूँ।
1: पोषण वाटिका, ये क्या नई चीज शुरू कर दी तुमने?
2: नई कहाँ है, घर के आंगन या आसपास की खाली जगह में जरूरत की सब्जियाँ और पौष्टिक चीजें उगाना ही तो पोषण वाटिका है।
1: लेकिन इससे क्या फायदा, बाजार में सब्जी खरीद लेंगे ना?
2: अरे खरीद तो सकते हैं सीमा, लेकिन सोचो अगर घर में ही ताजी हरी सब्जियाँ मिल जाए तो पैसे की भी कितनी बचत होगी और परिवार को पौष्टिक भोजन भी मिलेगा।
1: हाँ, ये बात तो सही है, लेकिन मेरे घर में तो ज्यादा जगह ही नहीं है।
2: अरे ज्यादा जगह होना जरूरी बिल्कुल नहीं है, बस छोटी सी जगह चाहिए। उस छोटी सी जगह पर गमले, पुराने डिब्बे या खाली जगह का उपयोग करके कई तरह की सब्जियाँ उगाई जा सकती है।
0: तो श्रोता साथियों, ये सीमा और रीना की हमने बातें सुनी। यहीं अब हम हमारे कार्यक्रम के माध्यम से विषय विशेषज्ञों को जोड़ते हैं और उनसे जानते हैं कि आखिर पोषण वाटिका हमारे स्वास्थ्य और परिवार के पोषण के लिए कितने जरूरी है। तो आइए इसी विषय पर एनएम विशेषज्ञ की राय से जानते हैं कि पोषण वाटिका का हमारे जीवन में क्या महत्व है।
3: नमस्कार।
4: नमस्ते,
3: आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं वागर रेडियो परिवार में। जैसा कि आज आप हमारे कार्यक्रम से जुड़ रही हैं, तो सबसे पहले मैं कार्यक्रम में आपका परिचय जानना चाहूंगी।
4: जी, मेरा नाम वीणा पटेल है, मैं उप स्वास्थ्य केंद्र कुपड़ा में कार्यरत हूँ।
3: बिल्कुल,
4: एनएम की पोस्ट पर।
3: बिल्कुल, तो जैसा कि आप एनएम की पोस्ट पर कार्यरत हैं, तो सबसे पहले मैं कार्यक्रम में ये जानना चाहूंगी कि पोषण वाटिका क्या होती है और किस तरीके से हमारी जो महिलाएं हैं वो घर पर इसे लगा सकती हैं।
4: पोषण वाटिका घर आंगन के किसी भी कोने में या गमलों में, छत पे किसी परिंडे में, बाल्टियों में, टब में ऐसे छोटे छोटे पौधे लगाकर सब्जियों को उगाए उसे अपने घर में उपयोग में ला सकते हैं।
3: बिल्कुल, तो जैसा कि आपने बताया कि पोषण वाटिका जो है वो हम हमारे घर के आंगन में कोई खाली जगह हो वहाँ पर लगा सकते हैं। तो हर घर में पोषण वाटिका क्यों होनी चाहिए?
4: हर घर में पोषण वाटिका का फायदा ये है कि इससे हमें पौष्टिक और ताज़ी सब्जियाँ घर में ही मिल सके, पास में ही मिल सके, हमें बार बार बाजार में जाने की जरूरत ना पड़े और इसकी जो गुणवत्ता है वो हमें पूरी तरह से मिल सके।
3: बिल्कुल, तो जैसा कि आपने बताया कि किस तरीके से अगर हम पोषण वाटिका अपने घर पर ही लगाते हैं तो रंग बिरंगी सब्जियाँ हमें हमारे घर पर ही मिल जाती है, बाजार पर हमें डिपेंड रहने की जरूरत नहीं रहती है और घर पर उगाई गई सब्जियाँ हम देखते हैं कि पौष्टिक भी होती है। तो कम जगह में कौन सी सब्जियाँ उगा सकते हैं हम?
4: जिस परिवार के पास अगर बड़ी जमीन ना हो और वे कम जगह में सब्जियाँ उगाना चाहता हो तो अपने छोटे से आंगन के किसी कोने में छत या गमलों का उपयोग करके उसमें पालक, मेथी, धनिया, हरी मिर्ची, टमाटर, बैंगन जैसी सब्जियाँ उगा सकते हैं। लौकी, तुरई और खीरे जैसी सब्जियाँ जो बेल में लगती हो वो बेलों को भी सहारा देकर चढ़ा सकते हैं, जिससे उससे ज़मीन कम गिरती है और उपलब्ध जगह का अच्छा उपयोग भी हो जाता है। सब्जियों का चुनाव करते समय हमें बस ये ध्यान रखना चाहिए कि उस मौसम में और उस मिट्टी में किस तरह की सब्जियां हम उगा सकते हैं।
3: बिल्कुल, तो बरसात के बाद कौन सी सब्जियां लगाना सही रहेगा?
4: हाँ, बरसात का ख़त्म होते जैसे हम मौसम बदलता रहता है, इसकी वजह से हमें उस समय कौन सी सब्जियां अनुकूल है स्थानीय मौसम के अनुसार उनका चयन करना पड़ेगा। जैसे कि हम इस समय हमारे क्षेत्र के अनुसार है पालक, मेथी, धनिया, मूली, गाजर, मटर जैसे सब्जियाँ लगाई जा सके। जैसे टमाटर, बैंगन, मिर्ची जैसे सब्जियाँ भी उपलब्ध होती है पर उनके लिए हमें थोड़ी ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत होती है। लेकिन हर क्षेत्र का मौसम और मिट्टी अलग होती है, इसलिए स्थानीय कृषि विशेषज्ञ या किसी कृषि विभाग से ही सलाह लेना हमारे लिए बेहतर होगा। बीज बोने से पहले भी मिट्टी को तैयार करना और जल की निकासी की व्यवस्था पहले से तैयार करनी पड़ती है।
3: बिल्कुल,
4: इस तरह मौसम के अनुसार फसल चुनने में पोषण वाटिका अच्छी पैदावार मिलने की संभावना भी बढ़ाता है।
3: बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया कि हम इस मौसम में कौन कौन सी सब्जियां उगा सकते हैं और किन विशेष बातों का हमें ध्यान रखने की जरूरत है, यही हम बच्चों को बागवानी से कैसे जोड़ें?
4: बच्चों को बागवानी से जोड़ना बहुत जरूरी है। और बच्चों को बागवानी से जुड़ने के लिए सबसे सीखने और आनंद लेने का एक अच्छा तरीका भी हो सकता है, एक अच्छा माध्यम होगा। उन्हें बीज बोने, पौधों को पानी देने और पौधों को बढ़ते हुए देखने में छोटे छोटे काम दिए जा सकते हैं। बच्चों को बताया जा सकता है कि कौन सा पौधा कौन सी सब्जी देगा हमें, उसे खाने से हमें क्या क्या फायदे होंगे, वो हमारे शरीर के लिए कैसे उपयोगी होगा।
5: जी।
4: स्कूल में भी अगर शिक्षक को बच्चों को थोड़ा पौधों के बारे में बताएं, उनकी ऊंचाई, पत्तियों के विकास और उनका रिकॉर्ड रखने की गतिविधियाँ दे करा सकते हैं, इससे बच्चों में प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी और पौष्टिक भोजन के प्रति रुचि भी बढ़ेगी।
5: बिल्कुल।
4: सबसे अच्छी बात है कि जब बच्चे खुद उन सब्जियों को उगाएंगे, उन्हें बढ़ता देखेंगे, तो उन्हें खाने में उनकी रुचि बढ़ेगी।
5: बिल्कुल। तो जैसा कि आपने बताया कि हम बच्चों की रुचि को कैसे बढ़ा सकते हैं और क्या हमें चीज़ें करने की ज़रूरत है, यही हम देखते हैं कि रासायनिक खाद की जगह हम कौन सी चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि पोषण वाटिका जब हम घर पर लगाते हैं तो हमें इनमें कुछ जैविक चीज़ों का कार्य करने की ज़रूरत होती है, तो क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनका हम उपयोग करें?
4: जैविक चीज़ों से हम बता सकते हैं कि हम जैसे घर से निकले वाले कचरे को उसका सही उपयोग करके उसकी अच्छी जैविक खाद तैयार करा सकते हैं, जैसे पेड़ पौधे के सूखे पत्ते हों, सब्जियों और फलों के छिलके हों, इन सब को हम जैविक पदार्थों में इसमें मिलाकर उसके कंपोस्ट बनाए जा सकते हैं। वर्मिंग कंपोस्ट का भी एक उपयोगी विकल्प हो सकता है।
5: बिल्कुल।
4: जिसे उचित तरीके से तैयार करके मिट्टी में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा गोबर से बनी अच्छी तरह से तैयार खाद का भी हम उपयोग कर सकते हैं।
5: जी।
4: लेकिन अगर किसी खाद या जैविक घोल का इस्तेमाल उसकी सही मात्रा और सही तरीके से करना जरूरी है। स्थानीय कृषि विशेषज्ञ से सलाह लेने के बाद ही हमें प्राकृतिक खाद का उपयोग करने से मिट्टी की गुणवत्ता बनाए रखने में भी मदद मिलती है।
5: बिल्कुल। तो जैसा कि आप हमें बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं, तो यही मैं जानना चाहूँगी कि आदिवासी क्षेत्रों में कौन सी पारंपरिक सब्जियाँ पौष्टिक हैं।
4: आदिवासी और ग्रामीण क्षेत्रों की पारंपरिक खाद्य और परंपराओं में कई स्थानीय पत्तेदार सब्जियां हैं, जैसे कंदमूल हैं, फलियां हैं, मौसमी खाद्य पदार्थ शामिल रहे। कई स्थानीय साग और हरी पत्तेदार सब्जियां भोजन के महत्वपूर्ण पोषक तत्वों को जोड़ सकते हैं, जैसे चौलाई, बथुआ, सहजन की पत्तियां, सहजन की फलियां। स्थानीय साग और क्षेत्र में प्रचलित दूसरी खाद्य वनस्पतियों का भी उपयोग परंपरागत रूप से कई जगह किया जाता रहा है।
5: बिल्कुल।
4: लेकिन किसी भी जंगली पौधे या साग को बिना पहचाने और जानकारी के खाना उचित नहीं है।
5: बिल्कुल।
4: स्थानीय रूप से पहचाने जाने वाले और सुरक्षित खाद्य पदार्थों को मौसम के अनुसार भोजन में शामिल करना चाहिए। इससे हमारे स्थानीय खाद्य परंपरा, जैविक विविधता और पोषण, ये तीनों ही हमें मजबूत करने में मदद मिलती है।
5: बिल्कुल। यही पोषण वाटिका अगर कोई परिवार लगा रहा है तो खर्च कितना कम हो सकता है?
4: हाँ, घर में अगर हम कुछ सब्जियाँ उगाने से बाजार से खरीदे जाने वाली सब्जियों की मात्रा कम हो सकती है और इससे हमारे परिवार के खर्च में बचत भी हो सकती है।
5: बिल्कुल।
4: लेकिन बचत की कोई एक निश्चित राशि हम बता नहीं सकते क्योंकि उस परिवार के आकार, वाटिका के क्षेत्रफल, फसल और मौसम के अनुसार बाजार की कीमतों के पर निर्भर करता है। अगर परिवार नियमित रूप से पालक, मेथी, धनिया, मिर्ची जैसी उपयोगी सब्जियां घर पर ही उगाता है तो छोटी छोटी खरीदारी कम हो सकती है। इसके साथ भी परिवार की ताज़ी सब्जियां घर के पास उपलब्ध हो जाती हैं और घर के जैविक कचरे का भी खाद्य में तैयार करने में उपयोग हो सकता है। बाद से खाद खरीदने का जो खर्चा होता है वो कम हो सकता है।
5: बिल्कुल।
4: इसलिए पोषण वाटिका को बचत के साथ साथ हम बेहतर भोजन की व्यवस्था के रूप में देखना अधिक उपयोगी है।
5: जी बिल्कुल। यही अब मैं जानना चाहूँगी कि आंगनबाड़ी और स्कूल में पोषण वाटिका का क्या महत्व है?
4: जी, आंगनबाड़ी और स्कूलों में पोषण वाटिका बच्चों के लिए एक तरह की जीवंत पाठशाला है। बच्चे किताबों में पढ़ने के साथ साथ अगर उसको आंखों से पौधों को बढ़ते देखें, जैसे प्रैक्टिकली देखेंगे, तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा।
5: बिल्कुल।
4: और उन्हें सब्जियां, स्थानीय खाद्य पदार्थों को संतुलित भोजन के बारे में व्यवहारिक जानकारी मिल सकती है। शिक्षक और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बच्चों को पौधों की देखभाल, छोटी गतिविधियों में शामिल कर सकते हैं। स्थानीय मौसम के अनुसार उगाई गई सब्जियों का उपयोग, उपलब्ध व्यवस्था और नियम के अनुरूप पोषण संबंधित गतिविधियों में किया जा सकता है।
5: जी जी।
4: इससे बच्चों में प्रकृति, स्वच्छता, पोषण और जिम्मेदारी के प्रति सकारात्मक सोच विकसित करने का अवसर मिलता है।
5: जी बिल्कुल। तो सरकार की कौन कौन सी योजनाएं जो इसमें मदद करती है?
4: देश में पोषण सुधार के लिए पोषण अभियान और आंगनवाड़ी केंद्रों में जुड़ी विविध गतिविधियों के माध्यम से पोषण वाटिका को बढ़ावा दिया गया है। आंगनवाड़ी केंद्रों, स्कूलों और समुदायों के स्तर पर पोषण वाटिका विकसित करने की पहल की जाती रही है। इसके अलावा कृषि विभाग, बागवानी विभाग और स्थानीय प्रशासन की ओर से समय समय पर बीज प्रशिक्षण, तकनीकी जानकारी या अन्य सहायता से जुड़ी योजनाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।
6: बिल्कुल,
4: इन योजनाओं की जानकारी राज्य और जिले के अनुसार अलग अलग हो सकती है, इसीलिए ग्रामीण परिवार अपने आंगनवाड़ी केंद्र, ग्राम पंचायत, कृषि विभाग या संबंधित सरकारी कार्यालय से वर्तमान सहायता और पात्रता की जानकारी ले सकते हैं। सरकारी योजना का लाभ लेने से पहले यह जरूर पता करें कि आपके क्षेत्र में उस समय कौन सी सुविधा उपलब्ध है, तभी हम उसका फायदा उठा सकेंगे।
6: बिल्कुल, तो क्या गमलों में भी पोषण वाटिका बनाई जा सकती है?
4: जी बिल्कुल, गमले, पुरानी बाल्टियाँ हों, टब हो या अन्य सुरक्षित कंटेनर हों, उनमें भी छोटी छोटी पोषण वाटिकाएँ बनाई जा सकती हैं, जिसे धनिया, मेथी, पालक, हरी मिर्ची जैसे फसलें छोटे कंटेनरों में उगाई जा सकती है और टमाटर और दूसरी अन्य सब्जियाँ के लिए अपेक्षित बड़े कंटेनरों की जरूरत पड़ती है, जो हम उन्हें बड़े कंटेनर का उपयोग कर सकते हैं।
6: बिल्कुल, तो जैसा कि आप कार्यक्रम में बहुत अच्छी जानकारी हमें दे रही हैं, तो अंत में आप हमारे श्रोता साथियों को क्या संदेश देना चाहेंगी?
4: मेरा बस यही संदेश है कि पोषण वाटिका शुरू करने के लिए बड़े खेत या बहुत अधिक पैसों की जरूरत नहीं पड़ती है। एक गमले से भी हम शुरुआत कर सकते हैं, आंगन की छोटी सी क्यारी भी लगा सकते हैं, यही बहुत महत्वपूर्ण, खाली महत्वपूर्ण यही है कि हमें पहले शुरुआत करनी है। मौसम के अनुसार स्थानीय पौष्टिक भोजन सब्जियाँ उगाएं, बच्चों को पौधों की देखभाल से जोड़ें, घर में उपलब्ध जैविक पदार्थों का सही उपयोग करें, यही हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। याद रखिए, एक छोटा सा पौधा जब हरा होकर हमारी थाली तक पहुंचता है तब वो एक सब्जी ही नहीं होता है, बल्कि वो हमें स्वावलंबन, प्रकृति से जुड़ाव और बेहतर पोषण का भी संदेश भी देता है। इसलिए आइए हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि हर घर में थोड़ी हरियाली हो, हर थाली में विविधता हो और हर परिवार में भोजन में पोषण हो।
6: बिल्कुल, तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगी कि आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े और आपका कीमती समय आपने हमें दिया।

0: ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि शुरुआत छोटी हो सकती है लेकिन फायदे तो पूरे परिवार को मिलेंगे।
1: हाँ रीना, ये तो तुमने बिल्कुल सही कहा। अपने घर के छोटी सी पोषण वाटिका परिवार के अच्छे स्वास्थ्य की शुरुआत भी बन सकती है।
0: हाँ बिल्कुल, तो चलो अब से संकल्प लेते हैं कि हम अपने घर के एक छोटे से हिस्से में पोषण वाटिका जरूर लगाएंगे।
1: हाँ जरूर लगाएंगे।
2: तो साथियों, आज की इस छोटी सी कहानी से हमने जाना कि घर के आंगन, छत या उपलब्ध छोटी जगह का उपयोग करके पोषण वाटिका तैयार की जा सकती है। ताजी और विविध सब्जियों को अपने भोजन में शामिल करके हम परिवार के पोषण और स्वास्थ्य को बेहतर बनाने की दिशा में एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण कदम उठा सकते हैं। याद रखिए कि स्वस्थ परिवार की शुरुआत पौष्टिक भोजन से होती है और पौष्टिक भोजन का एक अच्छा सहारा बन सकती है हमारे घर की पोषण वाटिका। तो आशा करते हैं कि आज कार्यक्रम की होने वाली सभी बातचीत आपको अवश्य पसंद आई होगी। अब समय हो चला है हमारे आज के इस कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लेंगे लेकिन जाने से पहले सुन लेते हैं एक और प्यारा सा गीत।

साथियों, इस गीत के साथ ही हम हमारे आज के कार्यक्रम सच्चा बचपन से विदा लेना चाहेंगे और आशा करेंगे कि आज कार्यक्रम में हमारी आपसे जो भी बातचीत रही है वो आपको अवश्य पसंद आई होगी। तो दोस्तों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें जरूर पहुँचाइएगा पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखें, कार्यक्रम सच्चा बचपन, वाकड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वाकथरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643। तो दोस्तों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपके अपनी साथी अंजलि पारेश्वर को कार्यक्रम सच्चा बचपन से जाने की अनुमति। इसी अनुमति के साथ नमस्कार।

0: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताजा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
0: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
2: हमरो घणी बोले पूछे हैं, जमी माते नाम हिरते आवे, कागज केने करने बनावो पड़े, सरकारी विभाग में जा या पसे गांव में स्वाद थई जाए।
3: तो हमरो बोनू अरे सब समस्या नो समाधान आपरे कने से है। ग्राम सभा तक की बात शुरू थाए है, पटवारी सचिव ने पंचायत आय तक की हर प्रक्रिया जुड़े है। एकलस ने हमरा ने हाथे मली में जावो है, फार्म भरो, जानकारी लो, जमी माते नाम लकड़वो काटो नती, जैवरे अधिकार हंग्रा अपनावे, जानकारी सबनु हाथ में अधिकार, आस है समाधान में राह।
2: होवे भाइयों ने बहनों, हक जानो, हक मांगो, जमीन का कागज माते अपनो नाम लकाड़ो।
4: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित

0: कार्यक्रम युवाओं की आवाज सुनने वाले हमारे सभी श्रोता साथियों को आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर
1: और आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट का प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM और आप सभी का तहे दिल से स्वागत है कार्यक्रम युवाओं की आवाज में।
1: जी हाँ साथियों, लेकर हाजिर है कार्यक्रम युवाओं की आवाज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बात रहने वाली है कि जब जंगल बोलते हैं तो युवा सुनते हैं।
0: बिल्कुल
1: कशिश, हमारे श्रोता साथियों को हम कहना चाहेंगे कि जंगल सिर्फ पेड़ों का समूह नहीं है बल्कि धरती की वो आवाज है श्रोताओं, जो बिना शब्दों के भी बहुत कुछ हमें कहती है। सवाल बस इतना है कि क्या हम युवा उस आवाज को सुनने के लिए तैयार हैं?
0: बिल्कुल,
1: जरा कल्पना कीजिए श्रोता साथियों कि सुबह की हल्की धूप, पेड़ों से छनकर आती रोशनी, पत्तों की सरसराहट, पक्षियों की चहचहाट और मिट्टी की सोंध खुशबू। जंगल में शायद कोई इंसान आपसे बात न करे, लेकिन श्रोताओं फिर भी जंगल बहुत कुछ हमसे कहता है। वो कहता है मुझे बचाओ क्योंकि मेरा अस्तित्व तुम्हारे अस्तित्व से ही जुड़ा है।
0: जी हाँ जागृति जी, तो आज के इस कार्यक्रम में इसी विषय को लेकर हम हमारे युवा साथियों से ढेर सारी बातें करेंगे।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन जैसा कि शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है, तो क्यों ना दोस्तों को पहले यहाँ एक प्यारा सा गीत सुनवा दे हम।
1: जी हाँ, तो आइए साथियों सुन लेते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप बने रहे कार्यक्रम युवाओं की आवाज में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।
0: जी हाँ

0: दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले कुछ बातें रही, उससे आप समझ चुके होंगे कि आज हम बात कर रहे हैं जब जंगल बोलते हैं तो क्या युवा सुनते हैं। जैसा कि जागृति जी आपने गीत से पहले हमारे युवा साथियों को बताया था कि जंगल सिर्फ पेड़ों का समूह नहीं बल्कि धरती की धड़कन होते हैं। सवाल श्रोता साथियों बस इतना है कि जब यह धड़कन धीमी पड़ती है तो क्या हम युवा साथी सुन पाते हैं। साथियों, जंगल कभी शब्दों में नहीं बोलते लेकिन उनकी अपनी एक भाषा होती है। पेड़ों की सरसराहट, पक्षियों की चहचहाहट, बहती नदी की आवाज, मिट्टी की खुशबू और बदलता मौसम, ये सब प्रकृति के ही संदेश हैं जागृति जी। लेकिन आज सवाल ये है कि क्या हमारी तेज रफ्तार जिंदगी में हम इन संदेशों को सुनने के लिए रुकते हैं। दोस्तों, हम अक्सर जंगल को केवल लकड़ी, फल, चारा या जमीन के रूप में देखते हैं।
1: जी हाँ।
0: लेकिन जंगल इससे भी कहीं ज्यादा अधिक है। जंगल हमारे पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे दोस्तों मिट्टी, पानी, जैव विविधता और स्थानीय जीवन से गहराई से जुड़े हुए हैं।
1: जी हाँ।
0: कई समुदायों की आजीविका और संस्कृति भी जंगलों से ही जुड़ी हुई है जागृति जी।
1: बिल्कुल कशिश, क्योंकि जब किसी इलाके में पेड़ कम होते हैं तो जंगल की पहली आवाज शायद गर्म होती धरती के रूप में हमें सुनाई देती है। कहीं पानी का स्तर प्रभावित होता है, कहीं मिट्टी का कटाव पड़ता है तो कहीं पक्षियों और दूसरे जीवों का आवाज कम होने लगता है। प्रकृति हमें लगातार संकेत देती है श्रोताओं, लेकिन हम अक्सर इन संकेतों को तब समझते हैं जब समस्या हमारे सामने आ जाती है।
0: जी जी।
1: साथियों, आपको समझना बहुत जरूरी है कि पर्यावरण संरक्षण केवल किसी एक विभाग, संस्था या पर्यावरण कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी नहीं है, यह हम सभी की साझा जिम्मेदारी है और युवाओं की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है।
0: बिल्कुल।
1: हम कहना चाहेंगे साथियों आपसे कि जंगल की आवाज सुनने का मतलब केवल जंगल में जाकर पेड़ों के बीच बैठना नहीं है। इसका अर्थ है कशिश कि हम अपने आसपास के पर्यावरण को किस तरह से समझते हैं।
0: बिल्कुल, क्योंकि हम देखते हैं कि एक युवा अपने गांव या शहर में देख सकता है कि पानी की स्थिति कैसी है, स्थानीय पेड़ पौधों की स्थिति क्या है, कौन से पक्षी दिखाई देते हैं, कचरे का निपटारा कैसे हो रहा है और गर्मी या बारिश के पैटर्न में क्या बदलाव महसूस हो रहे हैं।
1: बिल्कुल।
0: दोस्तों, सवाल पूछना भी प्रकृति की आवाज सुनने का एक तरीका ही है, जैसे कि तालाब क्यों सूख रहे हैं, स्थानीय पेड़ कम क्यों हो रहे हैं, आसपास का मौसम क्यों बदल रहा है और जो पक्षी है वो पहले जैसे क्यों नहीं दिखाई देते। इन सभी सवालों से जागरूकता शुरू हो सकती है जागृति जी। हम देखते हैं कि आज का युवा केवल सोशल मीडिया पर ही पर्यावरण से जुड़ी पोस्ट साझा करने तक सीमित न रहे बल्कि अपने आसपास छोटे कदम भी उठा सकता है।
1: बिल्कुल।
0: दोस्तों, स्थानीय पौधों का संरक्षण, पानी की बचत, प्लास्टिक के अनावश्यक उपयोग को कम करना, सार्वजनिक स्थानों पर स्वच्छता बनाए रखना, जैव विविधता के प्रति जागरूकता फैलाना और पर्यावरण से जुड़े अभियानों में भाग लेना जागृति जी, ये कुछ ऐसे छोटे कदम है जिनसे मिलकर बदलाव लाया जा सकता है।
1: बिल्कुल।
0: सबसे जरूरी बात ये कि पेड़ लगाना ही पर्याप्त नहीं है बल्कि लगाए गए पौधों की देखभाल करना भी उतना ही जरूरी होता है।
1: जी हाँ कशिश, क्योंकि हम कह सकते हैं कि एक पौधा लगातार उसकी जिम्मेदारी लेना प्रकृति के साथ हमारे रिश्ते को मजबूत करता है। श्रोताओं, जब हम जंगल की बात करते हैं तो केवल पेड़ों के बारे में सोचना अधूरा हो जाता है कशिश। जी जी। जंगल में पेड़ है, झाड़ियां है, घास है, पक्षी है, कीट है, छोटे बड़े जीव है, अनगिनत सूक्ष्म जीवन रूप है। ये पूरा संसार मिलकर एक पारिस्थितिक तंत्र बनाता है श्रोताओं।
0: बिल्कुल।
1: किसी एक प्रजाति में बदलाव भी पूरे प्राकृतिक संतुलन को प्रभावित कर सकता है। इसलिए जंगल को बचाना केवल हरियाली को बचाना नहीं, ये जीवन की विविधता को बचाना है।
0: जी हाँ।
1: हमारे ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में प्रकृति के साथ जीवन जीने की अपनी समृद्ध परंपरा है कशिश। स्थानीय लोग मौसम, पेड़ पौधे, जल स्रोत और जंगलों से जुड़े कई पारंपरिक अनुभव जानते हैं।
0: बिल्कुल।
1: युवा पीढ़ी के लिए बहुत जरूरी है कि वो आधुनिक शिक्षा और तकनीक के साथ साथ स्थानीय ज्ञान और अनुभव का भी सम्मान करें।
0: बिल्कुल जागृति जी। तो जैसा कि युवा साथियों से हम कार्यक्रम के माध्यम से बात कर ही रहे हैं कि अगर जंगल बोलते तो क्या युवा साथी उनकी बातों को सुन पाते, उनके संकेतों को समझ पाते, तो ये बातें हम आगे भी करते रहेंगे लेकिन अभी मनोरंजन कर लेते हैं एक और गीत के साथ में।
1: जी हाँ।

0: साथियों, इस गीत के बाद फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं और रुक करते हैं कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। और हमारी बातें चल रही थी जंगल बोलते हैं तो युवा साथी सुनते हैं क्या। कशिश, इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से हमने बात करी थी कि जंगल की आवाज आखिर हमें क्या कह रही है।
1: बिल्कुल,
0: युवा जंगल की आवाज कैसे सुन सकते हैं। साथ ही हमने जाना था कि युवाओं के पास है बदलाव की ताकत, यानी कि किस तरह से हमारे युवा साथी बदलाव कर सकते हैं।
1: बिल्कुल,
0: जंगल सिर्फ पेड़ों का घर नहीं है बल्कि वो हमारी पूरी दुनिया है। साथ ही हम स्थानीय ज्ञान के बारे में भी जान रहे थे, नहीं जानते हैं तकनीक भी बन सकती है जंगल की साथी को लेकर।
1: बिल्कुल, क्योंकि हम देखते हैं जागृति जी कि आज हमारे युवा साथियों के हाथ में स्मार्टफोन है और यही तकनीक जागरूकता का माध्यम बन सकती है। ऐसे में युवा साथी अपने क्षेत्र के पर्यावरण से जुड़े मुद्दों पर छोटे वीडियो बना सकते हैं, स्थानीय कहानियां रिकॉर्ड कर सकते हैं, लोगों से बातचीत कर सकते हैं साथियों आप, और रेडियो जैसे माध्यमों से पर्यावरण संरक्षण का संदेश पहुंचा सकते हैं।
0: बिल्कुल,
1: यानी कि दोस्तों तकनीक और प्रकृति एक दूसरे के विरोधी नहीं है। सही इस्तेमाल अगर हो तो तकनीक प्रकृति की आवाज को और दूर तक पहुंचा सकती है।
0: जी हां कशिश, अब सवाल हमसे ये है कि जब जंगल में पेड़ों की संख्या घटती है, जब जल स्रोत प्रभावित होते हैं, जब जैव विविधता कम होती है, जब मौसम में बदलाव महसूस होते हैं, तो क्या हम केवल खबर सुनकर आगे बढ़ जाते हैं या फिर रुककर सोचते हैं कि हम अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं।
1: बिल्कुल
0: श्रोताओं, युवा होना केवल भविष्य की जिम्मेदारी उठाना नहीं है, युवा होना वर्तमान में सही सवाल पूछने और सही कदम उठाने की क्षमता भी है।
1: बिल्कुल,
0: अगर आज का युवा प्रकृति की आवाज सुनना सीख जाए तो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर पर्यावरण छोड़ा जा सकता है।
1: जी हाँ, क्योंकि हम देखते हैं कि जंगल हमें बहुत कुछ सिखाते हैं दोस्तों।
0: बिल्कुल,
1: जंगल की सबसे बड़ी शिक्षा शायद ये है जागृति जी कि कोई भी जीवन अकेला नहीं होता। एक पेड़ है जो मिट्टी से जुड़ी हुई है, मिट्टी पानी से जुड़ी हुई है, पानी जीवन से जुड़ा हुआ है साथियों, और जीवन हमारे भविष्य से जुड़ा हुआ है। इसी तरह समाज में भी हर व्यक्ति दूसरे से जुड़ा हुआ है। इसलिए पर्यावरण संरक्षण केवल प्रकृति को बचाने की बात नहीं है बल्कि अपने भविष्य को सुरक्षित रखने की बात है।
0: बिल्कुल,
1: तो ऐसे में युवा साथियों, अगली बार जब किसी जंगल के पास से आप गुजरते हैं, किसी पेड़ की छांव में बैठते हैं या पक्षियों की आवाज सुनते हैं, तो कुछ पल वहां ठहरिए। शायद प्रकृति आपसे कुछ कह रही है कि मुझे सिर्फ देखो मत, मुझे समझो भी, मुझे सिर्फ उपयोग मत करो, मेरी रक्षा भी करो, क्योंकि मेरा भविष्य और तुम्हारा भविष्य अलग अलग नहीं है।
0: और आखिर में एक छोटी सी पंक्ति श्रोता साथियों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम ये कहना चाहेंगे कि जंगल की खामोशी को कमजोरी मत समझना, उसके हर सरसराहट में आने वाले कल की कहानी है। जो युवा आज प्रकृति की आवाज सुन लेगा वही कल को सुरक्षित बनाने की जिम्मेदारी भी निभा पाएगा।
1: बिल्कुल
0: श्रोता साथियों, और भी आपको कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से कि हमें जंगलों को केवल प्राकृतिक संपदा के रूप में नहीं लेना है बल्कि अपने जीवन के साथी के रूप में उसे देखना है, क्योंकि जंगल रहेंगे तो जैव विविधता बचेगी, प्राकृतिक संतुलन मजबूत होगा कशिश, और आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वस्थ पर्यावरण की संभावना बनी रहेगी। तो साथियों, आपके मन में पेड़ को लेकर किसी भी तरह की कोई भ्रांति ना पाले, क्योंकि पेड़ है तो हमारा जीवन है। और कहा भी गया है कि अगर जंगल सचमुच बोल पाते तो शायद युवा साथियों से वो बहुत सारा कुछ कह पाते। जैसे कि हमारे जंगल बोलते कि मेरे लिए सिर्फ चिंता मत करो, मेरे लिए कुछ करो, मेरी तस्वीरें खींचने से आगे बढ़ो, मेरी रक्षा करने की जिम्मेदारी समझो।
1: बिल्कुल,
0: मुझे बचाना केवल सरकार या किसी संस्था की जिम्मेदारी नहीं है, तुम्हारी छोटी सी जागरूकता भी मेरे भविष्य को बदल सकती है।
1: जी हाँ जागृति जी, युवा साथियों, जंगल हमसे कुछ नहीं मांगते बल्कि हर दिन हमें कुछ न कुछ देते रहते हैं। हवा, पानी, मिट्टी, जैव विविधता और जीवन का संतुलन, इन सबके पीछे प्रकृति की बहुत बड़ी भूमिका है।
0: बिल्कुल,
1: आज अब जरूरत है श्रोता साथियों, हम जंगलों की आवाज को केवल सुने ही नहीं, समझे भी और अपने व्यवहार में भी उतारे, क्योंकि एक पेड़ की देखभाल, पानी की बचत, प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता हमारी, और दूसरों को जागरूक करना, ये हमारे छोटे कदम है लेकिन बड़ा बदलाव ला सकते हैं। क्योंकि जागृति जी, अगर हमारे युवा साथी जागेंगे तो प्रकृति बचेगी।
0: बिल्कुल,
1: अगर प्रकृति बचेगी तो हमारे युवा साथियों का भविष्य भी बचेगा।
0: जी
1: याद रखिए दोस्तों कि जंगल की हर सरसराहट एक संदेश है, उसे सुनना आज युवा पीढ़ी की जिम्मेदारी है।
0: बिल्कुल, तो जैसा कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने बहुत सारी बातें की और अब देख पा रहे हैं कि समय हो चला है आज के इस कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा हम जरूर लेंगे पर जाते जाते सुन लेते हैं एक और गीत।
1: जी हाँ जागृति जी,

0: साथियों, इस गीत के साथ ही विदा लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से जो भी बातें रही वो आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: तो दोस्तों लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम युवाओं की आवाज, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागदरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643।
0: इसी के साथ साथियों, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो युवा साथियों, फिर से मुलाकात होगी हमारी आपसे इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को
0: और आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट को। नमस्कार।

0: भाई ने बोनो घर तक निकलते वक्त कोई आपरो इंतजार करी रू है। माँ ने दुआ, पिता ने उम्मीद, निसोरनी मुस्कान होवे। इटली गाड़ी धीरे सलावो, हेलमेट पहरो, सीट बेल्ट लगाड़ो। एक नानी सी सावधानी हित जिंदगी बचाड़ी लेगा। सड़क सुरक्षा अपनावो, क्योंकि घेरे कोई आपरो इंतजार करी रू है।
1: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम सच्चा स्वराज में आप सभी श्रोता साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट,
0: और मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा
0: नमस्कार। श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।
1: जी हाँ साथियों, लेकर हाजिर है कार्यक्रम सच्चा स्वराज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बातें रहने वाली है जल संरक्षण को लेकर, जल संरक्षण गांव की खुशहाली की नींव को लेकर। जैसा कि अंजलि, गांव की पगडंडी से लेकर खेत की मेड़ तक, हरियाली से लेकर घर की खुशहाली तक, हर जगह पानी की कहानी जुड़ी है। पानी है तो खेत है, खेत है तो अन्न है, और अन्न है तो जीवन है। इसीलिए जल की हर बूंद केवल पानी नहीं बल्कि हमारे गांव के भविष्य की पूंजी है। और कहा भी गया है कि जल है तो कल है, जल बचाएंगे तो गांव बचेगा, गांव बचाएंगे तो भविष्य संवरेगा।
0: जी हाँ जागृति जी, तो आज कार्यक्रम सच्चा स्वराज में हमारी श्रोता साथियों से इस विषय पर ढेर सारी बातें रहने वाली है, लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत में क्यों ना हम श्रोता साथियों को एक प्यारे से गीत के साथ में मनोरंजन करवा दें।
1: जी हाँ, तो आइए साथियों सुन लेते हैं यह गीत। आप बने रहे कार्यक्रम सच्चा स्वराज में।

0: साथियों, इस गीत के बाद फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। जैसा कि गीत से पहले विषय से अवगत करवाया था कि आज हम बात करने वाले हैं जल संरक्षण गांव की खुशहाली की नींव को लेकर।
1: बिल्कुल।
0: तो कहना चाहेंगे कि पानी प्रकृति का ऐसा अनमोल उपहार है जिसके बिना जीवन की कल्पना भी हम नहीं कर सकते हैं। मनुष्य, पशु पक्षी, पेड़ पौधे और कृषि सभी का अस्तित्व पानी से जुड़ा हुआ है अंजलि। विशेष रूप से हम देखते हैं कि गांव के लिए पानी का महत्व और भी अधिक है क्योंकि ग्रामीण जीवन का बड़ा हिस्सा खेती, पशुपालन और प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर करता है।
1: बिल्कुल।
0: इसीलिए जल संरक्षण गांव की खुशहाली की नींव केवल एक विषय नहीं श्रोताओं, बल्कि गांव के वर्तमान और भविष्य से जुड़ा संकल्प है।
1: बिल्कुल जागृति जी, भारत के गांवों में सदियों से जल संरक्षण की समृद्ध परंपरा रही है।
0: बिल्कुल।
1: गाँव में तालाब, कुएं, बावड़ियां, जोहर और छोटे छोटे जल स्रोत बनाए जाते थे। वर्षा के पानी को रोकने और जमीन में उतारने की ऐसी व्यवस्था थी कि पानी लंबे समय तक गांवों की जरूरतों को पूरा करता था। लेकिन समय के साथ बढ़ती आबादी, पानी की बढ़ती मांग, जल स्रोतों की उपेक्षा और भूजल के अत्यधिक दोहन ने जल संकट को गंभीर बना दिया है।
0: बिल्कुल।
1: आज जरूरत इस बात की है कि हम पानी को केवल उपयोग करने वाली वस्तु न समझे बल्कि सहेजने वाली प्राकृतिक संपदा माने।
0: जी हाँ अंजलि, क्योंकि गांव की खुशहाली का सीधा संबंध पानी से ही है। किसान के खेत में पानी होगा तो फसल होगी, फसल होगी तो परिवार की आय बढ़ेगी, पशुओं के लिए पानी और चारा उपलब्ध होगा, पशुपालन मजबूत होगा, खेती और पशुपालन मजबूत होंगे तो गाँव की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। इसके विपरीत श्रोताओं, अगर पानी की कमी हो जाएगी तो खेत प्रभावित होते हैं, पशुपालन कठिन होता है, परिवारों पर आर्थिक दबाव बढ़ जाता है, कई बार रोजगार की तलाश में लोगों को दूसरे स्थान पर जाना पड़ता है। इसीलिए जल संरक्षण केवल पर्यावरण का विषय नहीं है श्रोताओं, बल्कि रोजगार, आय और ग्रामीण विकास का विषय भी है।
1: जी हाँ जागृति जी, भारत में वर्षा के रूप में हर साल बड़ी मात्रा में पानी मिलता है, लेकिन उसका एक हिस्सा तेज बहाव के साथ गाँवों से बहकर निकल जाता है। यदि इसी पानी को तालाबों, खेतों, जल संरचनाओं और अन्य स्थानीय माध्यमों से रोका जाए तो इसका लाभ लंबे समय तक लिया जा सकता है। बारिश का पानी बहने न दें, उसे गांव की धरती में उतार दें, ये जो चीजें हैं वो हमें अपनाने की जरूरत है।
0: बिल्कुल।
1: वर्षा जल संरक्षण के लिए घरों और संस्थानों में वर्षा जल संचयन की व्यवस्था की जा सकती है। खेतों में मेड़बंदी, छोटे जल संग्रहण ढांचे और उचित भूमि प्रबंधन के माध्यम से पानी को रोकने का प्रयास भी किया जा सकता है।
0: बिल्कुल अंजलि, क्योंकि खेती वाले क्षेत्रों में पानी के तेज बहाव से मिट्टी का कटाव भी होता है और पानी खेत से बाहर निकल जाता है। खेतों की मेड़बंदी इस समस्या को कम करने में मदद करती है। मेड़ पानी की गति को रोकती है, मिट्टी को बचाती है और खेत में नमी बनाए रखने में सहायता करती है।
1: बिल्कुल।
0: इसलिए किसान के लिए मेड़ बचाओ, पानी बचाओ, मिट्टी बचाओ का संदेश भी बहुत जरूरी है। साथ में कहना चाहेंगे कि गांव का तालाब केवल पानी जमा करने की जगह नहीं है श्रोताओं, ये गांव के पर्यावरण, पशुपालन, भूजल और सामुदायिक जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा भी है।
1: जी हाँ।
0: कई पुराने तालाब गाद, कचरे और अतिक्रमण जैसी समस्याओं के कारण अपनी क्षमता खो चुके हैं अंजलि। अगर समुदाय मिलकर इन जल स्रोतों की स्थिति सुधारने का प्रयास करें तो बारिश के पानी को लंबे समय तक सुरक्षित भी रखा जा सकता है।
1: जी जी।
0: हमारे पूर्वजों ने स्थानीय परिस्थितियों को समझकर जल संरक्षण की व्यवस्थाएं विकसित की थी। आज आवश्यकता है श्रोताओं कि हम उस ज्ञान को आधुनिक तकनीक और वैज्ञानिक सोच के साथ जरूर जुड़े।
1: जी हाँ जागृति जी, गांव में पानी का सबसे बड़ा उपयोग कृषि में होता है, इसलिए खेती में पानी का कुशल उपयोग जल संरक्षण की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है।
0: बिल्कुल।
1: किसानों को खेत की आवश्यकता के अनुसार सिंचाई करने, पानी की बर्बादी कम करने और स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल फसल योजना बनाने पर ध्यान देना चाहिए। ड्रिप और स्प्रिंकलर जैसी सिंचाई तकनीकें भी कई परिस्थितियों में पानी के बेहतर उपयोग में मदद कर सकती है। इसलिए श्रोता साथियों, खेत में मिट्टी की नमी को बनाए रखना भी बहुत जरूरी है, इससे सिंचाई की आवश्यकता कम करने में सहायता मिल सकती है।
0: बिल्कुल अंजलि, तो जैसा कि हम बात कर रहे हैं आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से जल संरक्षण गांव की खुशहाली की नींव को लेकर, तो ये बातें निरंतर आज के इस कार्यक्रम में श्रोताओं आपसे बनी रहेंगी, लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और गीत।
1: बिल्कुल।

0: श्रोता साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। जैसा कि गीत से पहले हम ढेर सारी बातों को जान रहे थे कि वर्षा की हर बूंद को गांव में हम कैसे रोक सकते हैं, खेत की मेड़ में छिपा है बड़ा समाधान, साथ ही तालाबों और पारंपरिक जल स्रोतों का पुनर्जीवन हम कैसे कर सकते हैं, खेत में पानी का समझदारी से उपयोग कैसे करें, ये ढेर सारी बातों को हमने जाना।
1: बिल्कुल,
0: यही जागृति जी, इसमें महिलाओं की भागीदारी की बात करें तो श्रोता साथियों, जल प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका महिलाओं की होती है। ग्रामीण परिवारों में पानी के उपयोग और घरेलू जल प्रबंधन से जुड़े अनेक कार्य महिलाओं के अनुभव से जुड़े होते हैं।
1: बिल्कुल,
0: इसलिए गांव की जल योजना बनाते समय महिलाओं की आवाज अनुभव को महत्व दिया जाता है। जब महिलाएं, किसान, युवा और ग्राम सभा मिलकर निर्णय लेते हैं तो जल संरक्षण का प्रयास अधिक सामुदायिक और टिकाऊ बन सकता है।
1: बिल्कुल अंजलि, क्योंकि आज का युवा केवल भविष्य का नागरिक नहीं वर्तमान का परिवर्तनकारी भी है। जैसा कि आपने महिलाओं की भागीदारी के बारे में बताया था, यही हम युवाओं की जिम्मेदारी को लेकर भी बात करते हैं।
0: जी जी,
1: गांव के युवा जल संरक्षण को जन अभियान बना सकते हैं, जल स्रोतों की स्थिति का स्थानीय सर्वे कर सकते हैं, गाँव में जल जागरूकता अभियान चला सकते हैं, स्कूलों में जल बचत की गतिविधियां कर सकते हैं, साथ ही तालाब और अन्य जल स्रोतों की स्वच्छता के लिए सामुदायिक प्रयास भी कर सकते हैं, घरों में वर्षा जल संचयन के लिए जागरूकता बढ़ा सकते हैं, पानी की बर्बादी रोकने के लिए लोगों को प्रेरित भी कर सकते हैं। श्रोता साथियों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको ये कहना चाहेंगे कि मेरे गांव की एक बूंद भी व्यर्थ नहीं जाएगी, ऐसा हमें सोचना होगा। ये सोच एक बड़े जन आंदोलन का रूप ले सकती है।
0: बिल्कुल जागृति जी, जल संरक्षण के लिए हमेशा बड़े प्रोजेक्ट की जरूरत नहीं होती।
1: बिल्कुल,
0: शुरुआत हम हमारे घर से भी कर सकते हैं। नल को आवश्यकता से अधिक खुला न छोड़ना, पाइप और टंकियों की दिशाओं को ठीक करना, जरूरत के अनुसार पानी लेना और घरेलू पानी के उचित पुनः उपयोग पर ध्यान देना, ये छोटी छोटी आदतें श्रोता साथियों, लेकिन सामूहिक रूप से इनका बड़ा प्रभाव हो सकता है।
1: बिल्कुल,
0: बूंद बूंद बचाकर ही घड़ा भरता है और घर घर की बचत से गांव का जल भंडार मजबूत होता है।
1: बिल्कुल,
0: कहना चाहेंगे जागृति जी श्रोता साथियों से कि जल संरक्षण किसी एक व्यक्ति का काम नहीं है, न केवल किसान, न केवल महिला, न केवल युवा और न केवल सरकार, बल्कि पूरे गाँव की भागीदारी आवश्यक है। ग्राम सभा में गाँव की जल समस्या पर चर्चा होनी चाहिए, कहाँ पानी जमा हो सकता है, कौन सा तालाब सुधारना जरूरी है, कहाँ जल बहाव को रोकने की आवश्यकता है, भूजल की स्थिति कैसी है, खेती में पानी का उपयोग कैसे बेहतर किया जा सकता है, ऐसे प्रश्नों पर सामूहिक विचार होना चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: जब गांव अपनी पानी की समस्या को समझकर स्वयं समाधान की दिशा में कदम बढ़ाता है तो जल संरक्षण केवल योजना

0: में दिखाई देता है।
1: बिल्कुल,
0: खेती को सहारा मिलता है, पशुपालन मजबूत होता है, पेड़ पौधों को पानी मिलता है, स्थानीय रोजगार के अवसर बढ़ते हैं और परिवार को पानी की कमी से जुड़ी जो कठिनाइयां हैं उनसे राहत मिलती है। इस प्रकार जल संरक्षण वास्तव में गांव की खुशहाली, आत्मनिर्भरता और मजबूत भविष्य की नींव बन सकता है।
1: बिल्कुल,
0: याद रखिए श्रोता साथियों कि जल केवल प्राकृतिक संसाधन नहीं बल्कि जीवन की आधारशिला है। गांव की समृद्धि का रास्ता खेतों से होकर गुजरता है और खेतों की समृद्धि का रास्ता पानी से होकर।
1: बिल्कुल अंजलि, तो हमारे श्रोता साथियों को हम कहना चाहेंगे कि न पानी को व्यर्थ बहने दो, न जल स्रोतों को सूखने दो, हर बूंद को सहेजो, अपने गांव का भविष्य संवारो। जल संरक्षण की शुरुआत किसी बड़े अवसर का इंतजार नहीं करती है श्रोताओं, एक घर से, एक खेत से, एक तालाब से और एक बूंद से इसकी शुरुआत हो सकती है।
0: बिल्कुल,
1: जब गांव का हर परिवार पानी की कीमत समझेगा, जब युवा जल प्रहरी बनेंगे, जब महिला निर्णयों में भागीदारी बनेगी, जब किसान पानी का विवेकपूर्ण उपयोग करेंगे और जब ग्राम सभा जल संरक्षण को प्राथमिकता देगी, तभी हमारा गांव वास्तव में खुशहाल और आत्मनिर्भर बनेगा। क्योंकि पानी बचेगा तो गांव सजेगा, हर बूंद सहेजेंगे खुशहाली आएगी। जल की रक्षा केवल आज की जरूरत नहीं श्रोताओं, आने वाली पीढ़ियों के प्रति हमारी जिम्मेदारी भी है।
0: बिल्कुल जागृति जी, तो इस तरीके से कार्यक्रम में हमने ढेर सारी बातों को जाना। आज हम कार्यक्रम में जान पाए कि जल संरक्षण गांव की खुशहाली की नींव किस तरीके से है।
1: बिल्कुल,
0: आशा करते हैं कि ये सभी बातें श्रोता साथियों को अवश्य पसंद आई होगी, क्योंकि अब समय हो चला है हमारे आज के इस कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लेंगे लेकिन जाने से पहले कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
1: बिल्कुल।

0: साथियों, इस गीत के साथ ही विदा लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि आज जो भी बातें रही कार्यक्रम सच्चा स्वराज के माध्यम से, वो बातें आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा स्वराज, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागथरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 3270001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643।
0: इसी के साथ साथियों, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में, इसी समय, एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर
0: और आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट को।
1: नमस्कार।

0: थारी में पासो लावो जोनू हवाद, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी, नमक का ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। बारती नु खवानो सोड़ो, देशी अनाज तकी नातू जोड़ो।
1: मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राकंगा। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। नमस्कार साथियों, आप सभी सुन रहे हैं वागड़ की आवाज और आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
0: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।

0: पप्पा मारे भी भणवा जावू है, सोपड़ा थकी दोस्ती करवी है।
1: बस यही तो शुरुआत है बदलाव की। जब हर बेटी बेटा पढ़ेगा तभी तो गांव गांव आगे बढ़ेगा। होवे न कोई गरीबी रोके न कोई हालात रोके, शिक्षा तक इस बदलेगा हर एक दाड़ो निरातर।
0: हिंडो स्कूल जा, अपने अपना भी अपना पूरा करो।
1: याद रखिए, कलम की ताकत हर मुश्किल पर भारी है। हर बच्चे की पढ़ाई हम सबकी जिम्मेदारी है।
2: होवे जयवरे सब सोरा भड़ेगा, तारे तो देश अगाड़ी बढ़ेगा।
1: शिक्षा नहीं तो सपना अधूरा, शिक्षा है हर बच्चे का पूरा हक।
3: वाघ रेडियो वाग्धारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य सुनने वाले सभी श्रोता साथियों को आपके अपने साथी मनीषा पटेल
1: और आपके अपने साथी अंजलि पारेश्वर का प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाग रेडियो 90.8 FM और आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लेकर हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में। श्रोता साथियों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जिसकी जानकारी हर व्यक्ति के पास होना बहुत जरूरी है। ये जानकारी कभी भी कहीं भी किसी भी समय किसी की जान बचाने में मदद कर सकती है।
0: जी हाँ,
1: हमारा आज का विषय है मनीषा, प्राथमिक उपचार की जानकारी जरूरत के समय काम आए। जी हाँ श्रोता साथियों, हम सभी अपने जीवन में कभी न कभी ऐसी परिस्थितियों का सामना करते हैं जब अचानक किसी व्यक्ति को चोट लग जाती है, वह जल जाता है, बेहोश हो जाता है, सांप या किसी कीड़े के काटने की घटना हो जाती है, सड़क दुर्घटना हो जाती है या अचानक तबीयत बिगड़ जाती है। ऐसे समय में डॉक्टर अस्पताल तक पहुंचने में कुछ समय लगा सकता है।
0: जी हाँ,
1: यही वह समय होता है मनीषा जब प्राथमिक उपचार यानी कि फर्स्ट एड की सही जानकारी बहुत उपयोगी साबित हो सकती है।
0: जी हाँ,
1: कई बार हम सोचते हैं कि प्राथमिक उपचार केवल डॉक्टर नर्स या स्वास्थ्य कर्मी को ही आता है, लेकिन वास्तव में परिवार के हर सदस्य, शिक्षक, युवा, ग्रामीण, माता पिता, समुदाय के जिम्मेदार लोगों को प्राथमिक उपचार की सामान्य जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि सही समय पर किया गया छोटा सा प्रयास भी किसी व्यक्ति की जान बचाने में मदद कर सकता है और चोट या बीमारी को गंभीर होने से रोक सकता है।
0: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से इस विषय को लेकर हमारे श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें रहेंगी।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है, तो क्यों ना उसी दस्तूर को निभाते हुए श्रोता साथियों को कार्यक्रम का पहला गीत हम सुनवा दी।
1: जी हाँ, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। जैसा कि श्रोता साथियों, गीत से पहले विषय तो बता ही चुके हैं कि आज हम बात करने वाले हैं प्राथमिक उपचार की जानकारी जरूरत के समय काम आए। जी हाँ श्रोता साथियों, किसी व्यक्ति को अचानक चोट लगने या स्वास्थ्य संबंधित परेशानी होने पर डॉक्टर या अस्पताल तक पहुँचाने से पहले श्रोता साथियों तुरंत और जरूरती सहायता दी जाती है, उसे ही प्राथमिक उपचार हम कहते हैं।
1: बिल्कुल।
0: उदाहरण के लिए श्रोता साथियों, अगर किसी व्यक्ति को हल्की सी चोट लग गई हो तो घाव साफ करने के लिए गर्म पानी या साफ कपड़े से पट्टी करना भी इसमें शामिल किया जा सकता है। इस तरह श्रोता साथियों, अगर किसी व्यक्ति को मामूली जलन हुई है तो जले हुए हिस्से को कुछ समय तक साफ बहते हुए पानी से साफ करना भी इसमें शामिल है। लेकिन श्रोता साथियों, हमें यह समझना जरूरी है कि प्राथमिक उपचार डॉक्टर के इलाज का विकल्प नहीं है। गंभीर चोट या बीमारी के समय श्रोता साथियों, व्यक्ति को जल्दी से जल्दी अस्पताल पहुंचाना या स्वास्थ्य केंद्र ले जाना हमारे लिए बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा। यही बात करते हैं कि दुर्घटना कभी बताकर नहीं आती। श्रोता साथियों, हमारे घर, खेत, सड़क, स्कूल, बाजार और कार्यस्थल कहीं भी दुर्घटना हो सकती है। उदाहरण के लिए, बच्चा खेलते खेलते गिर सकता है, रसोई में हाथ जल सकता है, खेत में काम करते समय चोट लग सकती है, सड़क पर दुर्घटना हो सकती है, किसी व्यक्ति को अचानक चक्कर आ सकता है, भोजन गले में फंस सकता है, सांप या कीड़े के काटने की घटना हो सकती है। ऐसी स्थिति में लोग घबरा जाते हैं। कुछ लोग बिना सही जानकारी के घरेलू नुस्खे अपनाने लगते हैं, इससे व्यक्ति और घबरा जाता है। इसलिए प्राथमिक उपचार के साथ साथ क्या नहीं करना चाहिए, इसकी भी जानकारी उतनी ही महत्वपूर्ण है।
0: बिल्कुल।
1: यही बात करें प्राथमिक उपचार के तीन उद्देश्य की, तो श्रोता साथियों, पहला उद्देश्य है जीवन की रक्षा करना। सबसे पहले ये देखना जरूरी है कि व्यक्ति सुरक्षित है या नहीं। यदि स्थिति गंभीर है तो तुरंत हमें डॉक्टर के पास ले जाना है, स्थिति को बिगड़ने से रोकना है। यानी कि उदाहरण के लिए, चोट लगने पर घाव को गंदगी से बचाना, खून बहने की स्थिति में सुरक्षित तरीके से दबाव देना या घायल व्यक्ति को अनावश्यक रूप से हिलाने डुलाने से बचना, स्वस्थ होने पर मदद करना। यानी कि प्राथमिक उपचार व्यक्ति को डॉक्टर तक पहुंचाने से पहले सहारा देता है और आगे के इलाज के लिए स्थिति को संभालने में भी मदद कर सकता है।
0: जी बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि घर या खेत में काम करते समय चोट लग सकती है, तो इसमें श्रोता साथियों, अगर चोट छोटी सी है तो सबसे पहले हाथ साफ करें, फिर घाव को हल्के पानी से धोने का प्रयास करें। इसे श्रोता साथियों, हम देखते हैं कि मिट्टी और गंदगी को हटाने में हमें मदद मिल सकती है। अगर श्रोता साथियों, खून निकल रहा है तो साफ कपड़े या गांज से थोड़ा सा हल्का सा हम दबा कर रख सकते हैं। खून रुकने के बाद श्रोता साथियों, घाव को साफ पट्टी से ढक ले। लेकिन श्रोता साथियों, अगर घाव है वो बहुत गहरा है, खून लगातार निकल रहा है या चोट गंभीर है, तो ऐसे में श्रोता साथियों, हमें स्वास्थ्य केंद्र या अस्पताल जाने की जरूरत है। घाव पर मिट्टी, राब, गोबर या कोई गंदगी है तो उसे साफ करना हमारे लिए सबसे जरूरी है।
1: बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा। तो जैसा कि कार्यक्रम में हम ढेर सारी बातों को जान पा रहे हैं, आगे भी निरंतर ये बातें यूं ही बनी रहेंगी, लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
0: जी बिल्कुल अंजलि जी, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा वाघ रेडियो 90.8 FM पर।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। जैसा कि गीत से पहले हम ढेर सारी बातों को जान पा रहे थे, यही बात करी कि प्राथमिक उपचार देने से पहले क्या करें। तो श्रोता साथियों, किसी भी घायल व्यक्ति की सहायता करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें ध्यान रखनी चाहिए। सबसे पहले अपनी सुरक्षा। यदि सड़क दुर्घटना हुई है, आग लगी है, बिजली का करंट लगा है या कोई अन्य खतरा मौजूद है तो बिना सोचे समझे घायल व्यक्ति की ओर दौड़ना उचित नहीं है। सबसे पहले देखें कि आसपास कोई खतरा तो नहीं है, बिजली का तार तो नहीं है, आग या धुआं तो नहीं है, सड़क पर वाहन तो नहीं आ रहे, कोई जहरीला पदार्थ तो नहीं फैला है। सहायता करने वाला व्यक्ति स्वयं सुरक्षित रहेगा तभी वह दूसरों की मदद कर पाएगा।
1: जी हाँ।
0: इसी के साथ घबराहट नहीं, समझदारी जरूरी है। दुर्घटना के समय अक्सर आसपास भीड़ इकट्ठा हो जाती है, हर व्यक्ति अपनी राय देने लगता है। कोई पानी पिलाने को कहता है तो कोई तुरंत उठाने को कहता है तो कोई घरेलू उपचार करने लगता है।
1: जी हाँ।
0: लेकिन याद रखें कि हर घायल व्यक्ति को तुरंत पानी पिलाना जरूरी नहीं है, हर बेहोश व्यक्ति को झकझोरना सही नहीं है, हर चोट पर तेल घी या कोई अन्य पदार्थ लगाना उचित नहीं है। इसलिए स्थिति को समझना बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल।
0: इसी के साथ काटने या चोट लगने पर प्राथमिक उपचार करें। घर में काम करते समय, खेत, स्कूल में, किसी अन्य स्थान पर कटने या चोट लगने की घटनाएं हो सकती हैं। यदि चोट सामान्य है तो हाथ साफ करके सहायता करें। घाव को, जैसा कि मनीषा आपने बताया, उस अनुसार हमें पानी से सावधानी पूर्वक साफ करना है, साफ कपड़े से उसे ढकना है और यदि खून बह रहा है तो साफ कपड़े या ड्रेसिंग से हल्का और लगातार दबाव देने की आवश्यकता है। गंभीर चोट या ज्यादा खून बहने की स्थिति में तुरंत स्वास्थ्य सेवा लें। घाव पर मिट्टी, राख, तेल, हल्दी या अन्य अस्वस्थ पदार्थ लगाने से संक्रमण का खतरा श्रोता साथियों बढ़ सकता है, इसलिए ऐसी चीजें ना करें।
1: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ कभी कभी हम देखते हैं कि किसी व्यक्ति को नाक से खून आने लगता है। ऐसे समय में श्रोता साथियों, व्यक्ति को हमें शांत रखना है, उसे बैठा कर रखें और थोड़ी देर उसे झुका कर रखें। नाक के श्रोता साथियों मुलायम हिस्से को कुछ मिनट तक हल्के से हम दबाकर भी रख सकते हैं। सिर को श्रोता साथियों ज्यादा पीछे नहीं झुकाना है हमें। अगर खून लंबे समय तक नहीं रुकता है, बहुत ज्यादा खून आता है या चोट लगने के बाद नाक में खून आ रहा है तो ऐसे में श्रोता साथियों हमें डॉक्टर से संपर्क करने की भी जरूरत है।
0: बिल्कुल मनीषा, अगर यही बात करें कि रसोई में आग, गर्म तेल, गर्म पानी या अन्य कारणों से जलने की घटना आम हो जाती है, जलने की स्थिति में सबसे पहले व्यक्ति को जलने के स्रोत से दूर करें और प्राथमिक हिस्से को सामान्य ठंडे बहते पानी के नीचे कुछ समय तक ठंडा किया जा सकता है। लेकिन कुछ गलतियां बिल्कुल नहीं करनी होती है, जैसे कि जली हुई जगह पर टूथपेस्ट नहीं लगाएं, मिट्टी या राख नहीं लगाएं, तेल या घी लगाने से बचें, फफोले को नहीं फोड़ें, जलते हुए कपड़े को जबरदस्ती न खींचें यदि वह त्वचा से चिपक गया हो। इसी के साथ श्रोता साथियों, यदि जलन गंभीर है, चेहरा या शरीर का बड़ा हिस्सा प्रभावित है या व्यक्ति की स्थिति खराब है तो तुरंत अस्पताल ले जाना चाहिए। यही बात आती है कि जब खाना गले में फंस जाए तब हमें क्या करना चाहिए। तो कभी कभी मनीषा, खाना खाते समय भोजन का टुकड़ा गले में फंस सकता है। यदि व्यक्ति बोल पा रहा है या खांस रहा है तो उसे खांसने का मौका देना चाहिए। लेकिन यदि व्यक्ति सांस नहीं ले पा रहा, बोल नहीं पा रहा, उसी स्थिति गंभीर हो रही है तो आपातकालीन स्थिति हो सकती है और तुरंत प्रशिक्षित सहायता और चिकित्सा सेवा की आवश्यकता होती है। समुदाय में लोगों को सही तरीके से प्राथमिक उपचार, जीवन रक्षक तकनीकों का प्रशिक्षण मिलना चाहिए ताकि जरूरत पड़ने पर सही सहायता दी जा सके।
1: बिल्कुल अंजलि जी, यही अगर बात करें कि सांप के काटने पर हमें क्या करना चाहिए इसकी, तो श्रोता साथियों हम देखते हैं कि गांव और खेतों में सांप दिखाई देना एक सामान्य सी बात है। सांप के काटने की घटना हो तो हमें डरने के बजाय श्रोता साथियों जल्दी से जल्दी हमें चिकित्सा जाना चाहिए। व्यक्ति को शांत रखें, उसे ज्यादा चलने न दें। काटे हुए स्थान पर श्रोता साथियों हमें काटना या चूसना नहीं चाहिए। घावों पर मिट्टी, तेल या घरेलू पदार्थ भी हमें नहीं लगाने हैं। कसकर रस्सी बांधने की जो बोलते हैं कि पुरानी तरकीबें हैं वो भी श्रोता साथियों हमें नहीं अपनानी है। अंजलि जी, हम देखते हैं कि कई बार गांव के लोग बोलते हैं और सोशल मीडिया पर भी ज्यादातर बातें करते हैं कि अगर सांप या कोई ऐसा कुछ काट लेता है तो अगर हम उस जगह पर चूसते हैं या काट लेते हैं तो उसका जहर बाहर निकल जाता है। तो श्रोता साथियों, अक्सर हम देखते हैं कि ये धारणा है वो गलत होती है। वैसी बातें हमें नहीं माननी है और जल्दी से जल्दी हमें अस्पताल या स्वास्थ्य केंद्र उस व्यक्ति को पहुंचाना बहुत जरूरी है।
0: जी हाँ मनीषा, हर परिवार को पहले से कुछ तैयारी करनी चाहिए। उन्हें घर में प्राथमिक उपचार बॉक्स रखना चाहिए। परिवार के सदस्यों को उसका स्थान पता हो। महत्वपूर्ण फोन नंबर सुरक्षित रखें। बच्चों को आपात स्थिति में सहायता मांगना सिखाएं। संभव हो तो प्राथमिक उपचार का प्रशिक्षण लें। घर में आग, बिजली और फिसलन से बचाव की व्यवस्था करें। दुर्घटना होने के बाद तैयार होने से बेहतर है कि पहले से तैयारी की जाए। श्रोता साथियों, आपातकालीन स्थिति में

0: श्रोता साथियों, इस गीत के साथ ही हमारा आज का कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य और हमारे स्वास्थ्य प्रद बातें अब यहीं समाप्त होती है। उम्मीद करते हैं कि आज के कार्यक्रम में हमारी आपसे जो भी बातें रही, गीत संगीत रही, वो आप सभी को जरूर पसंद आए होंगे। तो श्रोता साथियों, आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643।
0: इसी के साथ श्रोता साथियों, आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में, इसी समय, एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपके अपने साथी अंजलि पारेश्वर
0: और आपके अपने साथी मनीषा पटेल को।
1: नमस्कार।

0: जागृति बुन आपे कारे सोचू है अगर आप बूंदे रुकी जाएंगा तो हूँ था
1: नाना अंजलि बोन हूँ था का
0: अरे जागृति बोन आपड़ी जे नदिया है ये हुकी जाएंगा खेतर बंजर थे ही जाएंगा ने आपड़ो जीवन जे है ये भी रुकी जागा
1: ओ अंजलि बोन इटलेस मन का कहे कि पानी तो काल है पानी थकीस आपड़ो जीवन है
0: होवे जागृति बोन हर बूंद में आपड़ो जीवन है ने आज धरती माता नु संबल है
1: होवे अंजलि बोन आपड़े भाई बोन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नी राखो बारिश ने पानी नु संग्रह करवो आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी जागा
0: होवे होवे जागृति बोन आपड़े भाई बोनों ने कहो कि पानी बचाओ पानी बचाओ ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है हर बूंद नु मोल आपड़े जानो
2: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित
3: आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाग रेडियो 90.8 FM।

0: कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ सुनने वाले सभी दोस्तों को आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर
1: और आपके अपनी साथी अंजलि पाराशर का प्यार भरा नमस्कार।
0: जी हाँ श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।

0: और आप सभी का तहे दिल से स्वागत है कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लेकर हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में। श्रोता साथियों, आज हमारी कार्यक्रम में आपसे बातचीत का विषय है कि सरकारी योजनाओं की जानकारी सही व्यक्ति तक पहुंच रही है, वो लाभ उठा पा रहे हैं या नहीं।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि हम देखते हैं कशिश के हमारे देश में सरकार द्वारा आम नागरिकों के विकास और कल्याण के लिए योजनाएं चलाई जाती हैं। किसी योजना का उद्देश्य गरीब परिवार को आर्थिक सहायता देना है
0: जी,
1: तो
0: जी।
1: किसी का लक्ष्य किसानों की आय बढ़ाना है, कहीं महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश की जा रही है, तो कहीं बच्चों की पढ़ाई, युवाओं के रोजगार, बुजुर्गों के पेंशन और जरूरतमंद परिवार के स्वास्थ्य की चिंता की जा रही है।
0: बिल्कुल,
1: लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है कि क्या सरकारी योजनाओं की जानकारी वास्तव में उन लोगों तक पहुँच रही है जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। और दूसरा सवाल है, क्या योजनाओं का लाभ सही और पात्र व्यक्ति तक पहुंच रहा है। आज के इस कार्यक्रम में इसी विषय पर हमारी विस्तार से बातचीत रहेगी कि सरकारी योजनाओं की जानकारी, जागरूकता की कमी, लाभ पाने में आने वाली कठिनाइयां और सही व्यक्ति तक योजना पहुंचाने में समुदाय की क्या भूमिका है।
0: जी बिल्कुल अंजलि जी, तो इन सभी विषयों को लेकर ढेर सारी बातें कार्यक्रम के माध्यम से आज हमारी होंगी, लेकिन जैसा कि शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है,
1: जी हाँ,
0: तो क्यों ना श्रोता साथियों को पहले यहाँ एक प्यारा सा गीत हम सुनवा दें।
1: बिल्कुल, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय तो आपको बता ही चुके हैं कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं कि सरकारी योजनाओं की जानकारी का लाभ सही व्यक्ति तक पहुंच पा रहा है या नहीं, ये हमारे लिए एक सवाल है।
1: बिल्कुल
0: अंजलि जी, हम देखते हैं कि देश में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा समय समय पर अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जाती हैं और इन योजनाओं का जो उद्देश्य है वो समाज के अलग अलग वर्गों को आर्थिक सहायता, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, खाद्य सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा और कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुविधाएं उपलब्ध कराना है।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल हम सभी के सामने ये भी आता है कि क्या इन योजनाओं की जानकारी वास्तव में उस व्यक्ति तक पहुँच रही है जिसके लिए ये योजना बनाई गई है। दोस्तों, सरकार द्वारा गरीब और जरूरतमंद व्यक्ति के लिए ढेर सारी योजनाएं संचालित हैं, जैसे कि किसानों के लिए सहायता योजनाएं हैं, विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति योजनाएं हैं, तो महिलाओं के लिए स्वरोजगार और आर्थिक सहायता से जुड़ी कई योजनाएं हैं। वहीं जो श्रमिक होते हैं अंजलि जी, उनके लिए सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं भी बनाई गई हैं। गरीब परिवारों के लिए आवास, राशन या स्वास्थ्य से जुड़ी योजनाएं बनाई गई हैं। हम कह सकते हैं कि कागज पर योजनाओं की संख्या और उनका दायरा काफी बड़ा दिखाई देता है।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन किसी योजना का वास्तविक लाभ तभी संभव है जब पात्र व्यक्ति को तीन चीजें मिले। पहली ये कि योजना की सही जानकारी हो, दूसरे ये साथियों की आवेदन करने की उचित प्रक्रिया की जानकारी हो, और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण, समय पर सहायता। अंजलि जी, यदि किसी व्यक्ति को यह पता नहीं है कि वह किस योजना के लिए पात्र है तो वह उसका लाभ कैसे उठा पा सकता है?
1: जी हाँ कशिश, अब यही बात आती है कि सरकारी योजनाएं क्यों बनाई जाती हैं। श्रोता साथियों, सरकार की योजनाओं का मुख्य उद्देश्य समाज के उन लोगों तक सहायता पहुंचाना है जो आर्थिक, सामाजिक और अन्य परिस्थितियों के कारण पीछे रह गए हैं। हमारे गाँव में ऐसे कई परिवार होते हैं जिनके पास सीमित आय होती है। किसी किसान को खेती के लिए सहायता की जरूरत होती है, किसी महिला को रोजगार शुरू करने के लिए आर्थिक सहयोग चाहिए होता है, किसी बुजुर्ग को नियमित आय का सहारा चाहिए होता है, तो किसी विद्यार्थी को पढ़ाई जारी रखने के लिए छात्रवृत्ति की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार बच्चों के पोषण, गर्भवती महिलाओं की देखभाल, स्वास्थ्य सेवाओं, आवास, स्वच्छता, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा के लिए अलग अलग योजनाएं बनाई जाती है। योजना बनाना एक महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन केवल योजना बना देना ही पर्याप्त नहीं है। किसी भी योजना की असली सफलता तब होती है जब उसकी जानकारी जरूरतमंद व्यक्ति तक पहुंचे और पात्र व्यक्ति को समय पर उसका लाभ मिल सके। कल्पना कीजिए श्रोता साथियों कि किसी गांव में एक ऐसी योजना है जिससे गरीब परिवार को बड़ा लाभ मिल सकता है, लेकिन उस परिवार को योजना के बारे में जानकारी ही नहीं है। ऐसे में वह व्यक्ति पात्र होते हुए भी आवेदन नहीं करेगा और योजना का लाभ नहीं ले पाएगा। इसलिए कहा जा सकता है कि योजना की जानकारी योजना के लाभ का पहला कदम होती है।
0: जी हाँ अंजलि जी, आपने सही कहा। साथ ही अगर बात करें तो हमारे देश में आज भी ऐसे कई ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्र हैं जहाँ लोगों को सरकारी योजनाओं की पूरी जानकारी नहीं मिल पाती।
1: बिल्कुल,
0: कई बार साथियों लोगों को केवल योजना का नाम सुनाई देता है, लेकिन ये जानकारी नहीं होती कि योजना का लाभ कौन ले सकता है, आवेदन कहाँ करना है, कौन कौन से दस्तावेज जरूरी होंगे और आवेदन की अंतिम तिथि क्या है। बात करें विशेषकर बुजुर्गों की, अशिक्षित व्यक्तियों की, दिव्यांगजनों की या डिजिटल माध्यमों से परिचित न होने वाले नागरिकों की, श्रोता साथियों इन सभी को ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया कठिन लग सकती है। कई लोग ये सोचकर भी आवेदन नहीं करते कि सरकारी कार्यालय में जाने पर उन्हें बहुत परेशानी होगी, तो कुछ लोगों को ये डर रहता है कि कहीं उनके दस्तावेज गलत न हो जाए या उनका आवेदन जो है वो अस्वीकार न हो जाए। दोस्तों, इस प्रकार जानकारी का अभाव पात्र व्यक्ति और सरकारी योजनाओं के बीच एक दीवार बन जाता है।
1: बिल्कुल, यही बात करें कशिशुता साथियों से कि हमारे ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में आज भी जानकारी की कमी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। कई बार गांव में योजना के बारे में सूचना तो पहुंचती है, लेकिन वह सभी लोगों तक समान रूप से नहीं पहुंचती। कुछ लोगों को जानकारी जल्दी मिल जाती है, जबकि कई परिवारों को तब तक पता नहीं चलता है जब आवेदन की अंतिम तारीख निकल चुकी होती है। कुछ लोग पंचायत कार्यालय या सरकारी विभागों के संपर्क में रहते हैं, इसलिए उन्हें योजनाओं जानकारी आसानी से मिल जाती है, लेकिन गांव के दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले परिवार, मजदूरी करने वाले लोग, बुजुर्ग महिलाएं और कम पढ़े लिखे लोग कई बार जानकारी से वंचित रह जाते हैं। आज मोबाइल फोन और इंटरनेट का उपयोग बढ़ा है, लेकिन हर व्यक्ति डिजिटल माध्यमों का सही उपयोग नहीं कर पाता। किसी के पास स्मार्टफोन नहीं है तो किसी को ऑनलाइन आवेदन करना नहीं आता। कई बुजुर्ग लोग मोबाइल पर आने वाली सरकारी जानकारी को समझ नहीं पाते। ऐसे में सवाल है कि यदि योजना की जानकारी केवल इंटरनेट या मोबाइल तक सीमित रह जाए तो उन लोगों का क्या होगा जिनके पास इन सुविधाओं तक पूरी पहुंच नहीं है। इसलिए जरूरी है कि सरकारी योजनाओं की जानकारी सरल भाषा में स्थानीय स्तर पर लोगों की समझ के अनुसार पहुँचाई जाए।
0: जी बिल्कुल अंजलि जी, तो जैसा कि श्रोता साथियों से कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बहुत अच्छी बातें चल रही हैं सरकारी योजनाओं की जानकारी को लेकर, तो ये बातें हम आगे भी करते रहेंगे, लेकिन अभी क्यों ना साथियों को यहाँ पर एक और गीत हम सुनवा दें।
1: जी हाँ, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि श्रोता साथियों, सरकारी योजनाओं और उनकी लाभ पात्र जो व्यक्ति होते हैं उसको लेकर हम बातचीत कर रहे हैं, और गीत से पहले हम जान पाए थे अंजलि जी कि किस प्रकार से हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग और अन्य जो लोग होते हैं उनके लिए जानकारी की कमी जो है वो एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाती है।
1: बिल्कुल।
0: यही श्रोता साथियों, अगर बात करें तो क्या केवल इंटरनेट से जानकारी पहुंचाना पर्याप्त है, ये भी एक प्रश्न है। क्योंकि आज के समय में इंटरनेट और मोबाइल फोन सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बन चुके हैं अंजलि जी।
1: जी बिल्कुल।
0: जैसे कि सरकारी वेबसाइट, मोबाइल एप्स, सोशल मीडिया, ऑनलाइन पोर्टल और डिजिटल सेवाओं के माध्यम से लोग घर बैठे योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
1: जी हाँ।
0: लेकिन साथ ही हमें ये भी समझना होगा कि हर व्यक्ति के पास स्मार्टफोन है, इंटरनेट या डिजिटल जानकारी समान रूप से उपलब्ध है या नहीं, ये भी एक कह सकते हैं कि बात है जो जानने की है।
1: बिल्कुल।
0: एक शहर में रहने वाला युवा इंटरनेट पर योजना की जानकारी आसानी से खोज सकता है, लेकिन किसी दूरदराज के गांव में रहने वाले बुजुर्ग किसान के लिए ये उतना आसान नहीं हो सकता।
1: जी हाँ कशिश।
0: इसलिए सरकारी योजनाओं की जानकारी केवल डिजिटल माध्यम से सीमित नहीं होनी चाहिए। ये श्रोता साथियों, रेडियो के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से, समाचार पत्र के माध्यम से, या फिर ग्राम पंचायत, आंगनवाड़ी केंद्र, विद्यालय, स्वास्थ्य केंद्र, स्वयं सहायता समूह और स्थानीय प्रशासन जैसे कई ऐसे माध्यम है जिससे ये जो जानकारी है वो पहुंचाई जा सकती है लोगों तक।
1: बिल्कुल कशिश। कई बार लोगों को यह तो पता होता है कि कोई सरकारी योजना चल रही है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता कि योजना का उद्देश्य क्या है, कौन व्यक्ति इसके लिए पात्र है, आवेदन कहाँ करना है, कौन से दस्तावेज लगेंगे, आवेदन की अंतिम तिथि क्या है, लाभ और कैसे मिलेगा, किस समस्या की शिकायत कहाँ की जा सकती है। यही पर जानकारी और समझ के बीच का अंतर सामने आता है। मान लीजिए कि किसी गांव में घोषणा कर दी गई कि एक नई योजना शुरू हुई है, लेकिन अगर ग्रामीणों को यह नहीं बताया गया कि आवेदन कैसे करना है, तो केवल घोषणा सुन लेने से कोई व्यक्ति लाभार्थी नहीं बन पाएगा।
0: जी बिल्कुल।
1: इसलिए योजना की जानकारी केवल प्रचार नहीं बल्कि जन जागरूकता का विषय है। जब किसी व्यक्ति को उसकी भाषा में समझाया जाएगा, उसकी शंकाओं का समाधान किया जाएगा और आवेदन की प्रक्रिया के बारे में बताया जाएगा,
0: तभी
1: वो योजना का लाभ लेने के लिए आगे आएगा। प्रश्न ये आता है कि क्या सही व्यक्ति तक लाभ पहुंच रहा है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। सरकारी योजनाओं का उद्देश्य आमतौर पर जरूरतमंद और पात्र लोगों के मदद करने के लिए होता है, लेकिन कई बार जानकारी की कमी, दस्तावेजों की समस्या, आवेदन प्रक्रिया की जटिलता और स्थानीय स्तर पर जागरूकता की कमी के कारण पात्र व्यक्ति योजना से बाहर रह जाता है। कभी कभी एक परिवार पात्र होते हुए भी आवेदन नहीं कर पाता क्योंकि उनके आवश्यक दस्तावेज पूरे नहीं होते। किसी व्यक्ति का नाम सूची में नहीं होता, किसी का बैंक खाता संबंधित प्रक्रिया से नहीं जुड़ा होता, तो किसी को आवेदन की जानकारी समय पर नहीं मिलती। दूसरी ओर कई बार ऐसे लोग भी लाभ प्राप्त कर लेते हैं जिन्हें वास्तव में उस सहायता की उतनी आवश्यकता नहीं होती। ऐसी स्थिति में सबसे

0: अधिक नुकसान उस गरीब और जरूरतमंद व्यक्ति का होता है श्रोता साथियों, जिसके लिए योजना बनाई गई थी। इसलिए लाभार्थी की पहचान में पारदर्शिता और सही जानकारी बहुत जरूरी है।
1: जी
0: आज
1: जी।
0: हम देखते हैं कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जाती हैं उसके लाभार्थी होते ही नहीं है, फिर भी वो उसमें अलग अलग तरीके से अलग अलग चीजें इधर उधर से करवा कर उसका लाभ उठाने की कोशिश करते हैं। तो उन व्यक्ति को सोचना चाहिए कि अगर आप अभी इन सारी चीजों को इधर उधर से कर लेंगे, लेकिन एक गरीब व्यक्ति जिसे उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है वो इस योजना से वंचित रह जाएगा।
1: जी हाँ।
0: तो उसका जीवन जो है वो खराब भी हो सकता है।
1: बिल्कुल।
0: सोचिए किसी परिवार में दो परिवार रहते हैं, किसी गांव में दो परिवार रहते हैं। पहला परिवार अपेक्षाकृत जागरूक है, घर के सदस्य पढ़े लिखे हैं, मोबाइल और इंटरनेट का उपयोग करते हैं और पंचायत कार्यालय की गतिविधियों से जुड़ी होती है।
1: बिल्कुल।
0: उन्हें नई योजना की जानकारी जल्दी मिल जाती है और वे समय पर आवेदन कर देते हैं। दूसरी ओर परिवार कशिश मजबूत मजदूरी करने वाला होता है और अपना जीवन मजदूरी से ही चलाता है।
1: जी हाँ।
0: परिवार सुबह काम पर चला जाता है और शाम को वापस लौटता है। घर में बुजुर्ग सदस्य हैं और महिलाएं सरकारी योजनाओं की जानकारी से पूरी तरह परिचित है।
1: जी जी।
0: यदि योजना की जानकारी केवल एक सूचना पट या ऑनलाइन पोर्टल तक सीमित रह जाए तो पहला परिवार तो जानकारी प्राप्त कर लेगा, लेकिन दूसरा परिवार पीछे रह सकता है। यही वह अंतर है जिसे कम करने की जरूरत है। सरकारी योजनाओं की जानकारी हर व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए, न कि केवल उन लोगों तक जो पहले से जागरूक हैं।
1: बिल्कुल अंजलि जी, आपने सही कहा। इसी के साथ अगर बात करें श्रोता साथियों, तो इस जो चीजें हैं उसके अंदर रेडियो की भूमिका काफी महत्वपूर्ण होती है। जैसे कि रेडियो आज भी एक ऐसा माध्यम है अंजलि जी, जो कम लागत में बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंच सकता है। गांव में खेत पर काम करते हुए, दुकान पर बैठे हुए, यात्रा करते समय या घर के काम करते हुए लोग रेडियो सुन सकते हैं। यदि श्रोता साथियों रेडियो कार्यक्रमों में सरकारी योजनाओं की जानकारी सरल भाषा और स्थानीय बोली में दी जाए, जैसा कि हम कर ही रहे हैं, तो इन सभी का प्रभाव बहुत अधिक पड़ सकता है।
0: बिल्कुल।
1: उदाहरण के लिए दोस्तों, केवल ये कह देना कि इस योजना का ऑनलाइन पोर्टल उपलब्ध है यह पर्याप्त नहीं है, बल्कि ये समझाना भी जरूरी है अंजलि जी कि इस योजना का लाभ किन लोगों को मिलेगा, आवेदन कहाँ करना चाहिए, कौन से दस्तावेज चाहिए, आवेदन करने में कोई शुल्क है या नहीं, साथ ही सहायता के लिए किस कार्यालय या हेल्पलाइन से संपर्क हमें करना है। जब श्रोता साथियों इस प्रकार की जानकारी दी जाती है तो आम नागरिक के लिए उसे समझना और उसका लाभ लेना काफी आसान हो जाता है।
0: जी हाँ कशिश, आपने सही कहा। तो इस तरीके से कार्यक्रम में हम ढेर सारी बातों को जान रहे हैं। ये बातें निरंतर आगे और भी कार्यक्रम में यूं ही बनी रहेंगी, लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
1: बिल्कुल अंजलि जी।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि गीत से पहले हमने ढेर सारी बातों को जाना, यही कशिश श्रोता साथियों से कहना चाहेंगे कि महिलाओं तक जानकारी पहुंचना क्यों जरूरी है। श्रोता साथियों, हमारे ग्रामीण समाज में महिलाओं की भूमिका परिवार की मजबूती में बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बावजूद कई महिलाएं सरकारी योजनाओं की पूरी जानकारी से वंचित रह जाती है। महिलाओं के लिए रोजगार, स्वरोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और सामाजिक सुरक्षा से संबंधित कई उपलब्ध होती है, लेकिन जानकारी की कमी के कारण अनेक महिलाएं उनका लाभ नहीं उठा पाती।
1: बिल्कुल,
0: कई महिलाएं घर के काम और परिवार की जिम्मेदारियों में इतनी व्यस्त रहती हैं कि सरकारी कार्यालयों तक जाकर जानकारी प्राप्त करना उनके लिए आसान नहीं होता। ऐसे में महिला समूह, स्वयं सहायता समूह, आंगनबाड़ी केंद्र, ग्राम सभा और सामुदायिक रेडियो जैसे माध्यम बहुत उपयोगी हो सकते हैं।
1: बिल्कुल,
0: यदि महिलाओं को उनकी भाषा में बताया जाए कि कौन सी योजना उनके लिए है और उनका लाभ कैसे लिया जा सकता है, तो न केवल वे स्वयं जागरूक होंगी बल्कि अपने परिवार और अन्य महिलाओं तक भी जानकारी पहुंचा सकेंगी।
1: बिल्कुल,
0: आज का युवा वर्ग मोबाइल, इंटरनेट और सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है। युवाओं के पास कई जानकारी जल्दी पहुंच सकती है। यदि युवा सरकारी योजना की सही जानकारी प्राप्त करें और उसे अपने गाँव के लोगों तक पहुँचाएं तो जागरूकता का दायरा काफी बढ़ सकता है। कई बार बुजुर्ग व्यक्ति ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पाते, लेकिन गांव के युवा उसकी सहायता कर सकते हैं।
1: बिल्कुल,
0: कोई बुजुर्ग पेंशन से संबंधित जानकारी चाहता है तो कोई महिला आवेदन प्रक्रिया समझना चाहती है, कोई विद्यार्थी छात्रवृत्ति के बारे में जानना चाहता है। ऐसे में जागरूक युवा महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
1: जी हाँ,
0: लेकिन यहाँ एक बात और ध्यान रखने के लिए जरूरी है कि अधूरी या गलत जानकारी फैलाने से बचना चाहिए। योजना से संबंधित जानकारी हमेशा विश्वसनीय सरकारी स्रोत, संबंधित विभाग और पंचायत और अधिकृत अधिकारी से ही सत्यापित करनी चाहिए।
1: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ अगर बात करें श्रोता साथियों, तो आज का युवा तकनीकी से जुड़ा हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर युवा को हर सरकारी योजनाओं की जानकारी होती ही होगी। अंजलि जी,
0: बिल्कुल,
1: रोजगार, कौशल विकास, स्वरोजगार, प्रतियोगी परीक्षाएं, छात्रवृत्ति और उद्यमिता से जुड़ी जो अनेक योजनाएं हैं वो युवाओं के लिए काफी उपयोगी हो सकती हैं। ऐसे में विद्यालयों, महाविद्यालयों, रोजगार मेलों और डिजिटल माध्यमों के साथ साथ कई अन्य गतिविधियों के जरिए भी युवाओं को इन अवसरों के बारे में बताया जाना चाहिए। सही जानकारी मिलने पर युवा नौकरी खोजने वाले व्यक्ति से आगे बढ़कर स्वरोजगार और उद्यमिता की दिशा में भी कदम उठा सकते हैं।
0: जी जी।
1: साथ ही अगर बात करें कि योजनाओं का लाभ पाने में कौन कौन सी बाधाएं आती हैं, तो जैसा कि हमने पहले भी बताया साथियों को कि जानकारी का अभाव जो है वो सबसे बड़ी बाधा है।
0: बिल्कुल।
1: और दोस्तों बताना चाहेंगे कि दूसरी बाधा होती है जटिल प्रक्रिया की। यदि आवेदन प्रक्रिया बहुत कठिन है या व्यक्ति को बार बार अलग अलग कार्यालयों में चक्कर लगाने पड़ते हैं तो वह निराश हो जाता है।
0: जी हाँ।
1: और तीसरी बाधा होती है दस्तावेजों की समस्या। कई बार अंजलि जी, पात्र व्यक्ति के पास आवश्यक दस्तावेज नहीं होते, जैसे कि दस्तावेजों में नाम, पता या फिर अन्य विवरण में अंतर होता है, जिसके कारण वह सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाता। कई बार लोग अस्पष्ट स्रोतों से मिलकर जानकारी पर विश्वास कर लेते हैं, इससे वे गलत प्रक्रिया अपना लेते हैं और ठगी का भी शिकार हो जाते हैं।
0: जी हाँ।
1: तो ऐसे में दोस्तों, जब हम किसी सरकारी योजना में लाभान्वित होने के लिए पात्रता रखते हैं या फिर आवेदन करते हैं, तो हमें ढेर सारी बातों का ध्यान रखना होता है। हमें अपने दस्तावेजों का ध्यान रखना होता है, वह आवेदन हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं इस बात का भी हमें ध्यान रखना होता है। साथ ही पात्रता होने पर सही जो स्थान होता है वहां पर अगर हम आवेदन करते हैं अंजलि जी, तो ढेर सारी समस्याओं से हम बच सकते हैं।
0: बिल्कुल कशिश, यही कहना चाहेंगे श्रोता साथियों से कि ग्राम सभा ग्रामीण विकास की महत्वपूर्ण व्यवस्था है। गांव के लोगों को एक साथ बैठकर अपनी समस्याओं और विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने का अवसर मिलता है।
1: बिल्कुल।
0: सरकारी योजनाओं की जानकारी देने और पात्र लोगों की पहचान में भी ग्राम सभा महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। ग्राम सभा में लोगों को यह बताया जा सकता है कि गांव में कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं और कौन व्यक्ति उसके लिए पात्र हो सकता है। यदि गांव के लोग सक्रिय रूप से बैठकों में भाग लेंगे, सवाल पूछेंगे और जानकारी प्राप्त करेंगे, तो योजनाओं के प्रति जागरूकता सहायता बढ़ेगी। ग्राम सभा में ये भी जरूरी है कि कमजोर और जरूरतमंद परिवारों की आवाज सुनी जाए।
1: बिल्कुल,
0: कई बार गरीब व्यक्ति अपनी बात खुलकर नहीं रख पाता, ऐसे लोगों को बोलने का अवसर देना और उनकी समस्याओं को समझना भी समाज की जिम्मेदारी है।
1: बिल्कुल
0: साथियों, सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुँचाने में सामुदायिक रेडियो की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। सामुदायिक रेडियो स्थानीय लोगों की भाषा और उनकी समस्याओं को समझते हुए कार्यक्रम तैयार कर सकते हैं। रेडियो के माध्यम से योजनाओं की जानकारी सरल शब्दों में बताई जा सकती है। उदाहरण के लिए, यह योजना किसके लिए है, लाभ लेने के लिए क्या करना होगा, आवेदन कहाँ होंगे, कौन कौन से दस्तावेज जरूरी हैं, किस अधिकारी से संपर्क किया जा सकता है।
1: बिल्कुल,
0: जब यही जानकारी गांव की भाषा और स्थानीय उदाहरणों के साथ दी जाती है कशिश, तो लोग उसे आसानी से समझ पाते हैं। सामुदायिक रेडियो केवल सूचना देने का माध्यम नहीं, बल्कि यह लोगों और प्रशासन के बीच संवाद का एक मजबूत माध्यम भी बन सकता है।
1: बिल्कुल,
0: रेडियो पर लोगों के सवाल लिए जा सकते हैं, अधिकारियों से बातचीत करवाई जा सकती है, वास्तविक लाभार्थी के अनुभव साझा किए जा सकते हैं। जब कोई ग्रामीण अपने ही जैसे व्यक्ति की कहानी सुनता है कि उसने किसी योजना का लाभ लेकर अपना जीवन बेहतर बनाया, तो अन्य लोगों को भी प्रेरणा मिलती है।
1: बिल्कुल
0: साथियों, जानकारी तभी प्रभावी है जब वह लोगों की जरूरत और समझ के अनुसार पहुंचाई जाए। आज हम ऐसे समय में जी रहे हैं कशिश, जहां सूचना के कई साधन मौजूद हैं। मोबाइल फोन है, इंटरनेट है, सोशल मीडिया है, टेलीविजन है, समाचार पत्र है और सरकारी कार्यालय है। लेकिन इसके बावजूद यदि कोई जरूरतमंद व्यक्ति योजना से वंचित है, तो हमें यह समझना होगा कि सूचना उपलब्ध होने और सूचना तक पहुंचने में क्या अंतर है।
1: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ अगर बात करें श्रोता साथियों, तो हमें एक नागरिक होने के नाते हमारी जिम्मेदारियों को भी निभाना चाहिए, क्योंकि अंजलि जी, सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं होती।
0: बिल्कुल,
1: नागरिकों की भी महत्वपूर्ण इसमें भूमिका है। जैसे कि हमें अपने आसपास के लोगों को सही और सत्यापित जानकारी देनी चाहिए। यदि किसी बुजुर्ग व्यक्ति को किसी योजना की जानकारी नहीं हो, तो हम उसे जानकारी प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं साथियों।
0: बिल्कुल,
1: यदि किसी महिलाओं को ऑनलाइन आवेदन करना नहीं आता, तो हम उसे जो जरूरी केंद्र है, अधिकृत जो केंद्र होता है, वहाँ पहुँचने में सहायता कर सकते हैं। लेकिन इन सभी बातों में एक बात विशेष ध्यान में रखनी चाहिए कि किसी भी योजना के नाम पर अनजान व्यक्ति को पैसे, बैंक विवरण, OTP या अन्य संवेदनशील जानकारी साझा नहीं करनी है।
0: बिल्कुल,
1: सरकारी योजना की जानकारी हमेशा आधिकारिक और विश्वसनीय माध्यम से ही प्राप्त करनी चाहिए।
0: जी हाँ, तो जैसा कि कशिश कार्यक्रम में ढेर सारी बातों से हम रूबरू हो पाए हैं, आगे भी कुछ बातें हैं जो यूं ही बनी रहेंगी, लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
1: बिल्कुल अंजलि जी, तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं इस गीत को।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि गीत से पहले हमने ढेर सारी बातों को जाना, यही कशिश दस्तावेजों की समस्या के बारे में बात करी। तो दोस्तों, कई जरूरतमंद लोगों के सामने सबसे बड़ी समस्या आवश्यक दस्तावेजों की होती है। किसी योजना के लिए पहचान पत्र, बैंक खाता, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, अन्य दस्तावेजों की आवश्यकता हो सकती है।
1: लेकिन
0: ग्रामीण क्षेत्रों में कई परिवार ऐसे होते हैं जिसके दस्तावेज अधूरे होते हैं या उनमें कोई त्रुटि होती है। कई बार नाम की वर्तनी अलग होती है, जन्म तिथि में गलती होती है या परिवार के दस्तावेजों में जानकारी एक जैसी नहीं होती। छोटी सी गलती भी आवेदन में समस्या पैदा कर सकती है।
1: बिल्कुल,
0: इसलिए गांव स्तर पर लोगों को दस्तावेजों की जानकारी देना भी जरूरी है। लोगों को समय समय पर अपने जरूरी दस्तावेजों की जांच करना चाहिए और यदि कोई गलती है तो उससे सही करवाने की प्रक्रिया के बारे में भी जानकारी लेनी चाहिए।
1: जी हाँ,
0: आज बहुत सी सेवाएं ऑनलाइन हो चुकी है। आवेदन प्रमाण पत्र, पंजीकरण और जानकारी के लिए डिजिटल माध्यमों का उपयोग बढ़ रहा है।
1: बिल्कुल,
0: एक अच्छी बात है क्योंकि इसे प्रक्रिया को आसान और तेज बनाने में मदद मिलती है। लेकिन हमें यह भी समझना होगा श्रोता साथियों कि हर व्यक्ति डिजिटल रूप से सक्षम नहीं है।
1: जी
0: कुछ लोग स्मार्टफोन चलाना नहीं जानते, कुछ लोग इंटरनेट की सुविधा नहीं जान पाते, कुछ लोगों को ऑनलाइन फॉर्म भरने में कठिनाई होती है।
1: बिल्कुल,
0: ऐसे लोगों को पीछे नहीं छोड़ा जाना चाहिए। डिजिटल सुविधा के साथ साथ मानवीय सहायता भी जरूरी है।
1: जी।
0: पंचायत स्तर, संबंधित विभाग, सेवा केंद्र और जागरूक नागरिकों की मदद से लोगों को आवेदन प्रक्रिया समझाई जा सकती है।
1: बिल्कुल,
0: सरकारी योजना की जानकारी सही व्यक्ति पर पहुंचने की जिम्मेदारी केवल सरकार की नहीं बल्कि पूरे समाज की भी है। इसमें सरकारी विभागों, पंचायत प्रतिनिधियों, ग्राम सेवकों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, आशा कार्यकर्ताओं, स्वयं सहायता समूह, शिक्षकों, युवाओं, सामाजिक संगठनों और सामुदायिक रेडियो सभी की भूमिका हो सकती है।
1: जी हाँ,
0: जब सभी मिलकर गाँव में काम करेंगे तब कोई जरूरतमंद व्यक्ति केवल जानकारी के अभाव में पीछे नहीं रहेगा।
1: बिल्कुल अंजलि जी, आपने सही कहा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं दोस्तों कि सरकारी योजनाएं तभी सफल मानी जाएगी जब उनकी जानकारी और उनका लाभ दोनों सही व्यक्ति तक पहुंचेगा।
0: बिल्कुल,
1: सरकार योजनाएं बनाती है, प्रशासन उन्हें लागू करते हैं अंजलि जी, लेकिन जानकारी का प्रभावी प्रसार इन दोनों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी है। साथियों, हमें ऐसी व्यवस्था की जरूरत है जिसमें कोई पात्र व्यक्ति केवल जानकारी के अभाव में सरकारी सुविधाओं से वंचित न रहे।
0: बिल्कुल,
1: इसके लिए डिजिटल माध्यमों के साथ साथ ग्राम पंचायत, स्थानीय संस्थानों, स्वयं सहायता समूह और जन प्रतिनिधियों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। हमें ऐसे में संकल्प लेना चाहिए अंजलि जी कि हम सही जानकारी देंगे, सही जानकारी लेंगे भी और जरूरतमंद व्यक्ति का सरकारी योजनाओं की सही जानकारी पहुंचाने में सहयोग करेंगे।
0: बिल्कुल,
1: योजनाएं तभी सफल है साथियों जब उसका लाभ सही व्यक्ति तक पहुंचे और जानकारी तभी सार्थक है जब वह किसी के जीवन में बदलाव ला सके।
0: जी हाँ कशिश, यदि हम अपने गांव और समाज को वास्तव में मजबूत बनाना चाहते हैं तो हमें केवल अपने लाभ के बारे में नहीं सोचना चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: यदि हमें किसी योजना की जानकारी मिलती है, हमें पता है कि हमारे पड़ोस का कोई व्यक्ति उसके लिए पात्र है तो हमें उसे जानकारी देना चाहिए।
1: जी हाँ,
0: किसी बुजुर्ग को पेंशन से संबंधित सहायता की जरूरत है, किसी विद्यार्थी को छात्रवृत्ति की जानकारी चाहिए या किसी महिला को स्वरोजगार योजना के बारे में जानना है तो हम उसकी मदद कर सकते हैं। याद रखिए कि एक सही जानकारी किसी व्यक्ति का जीवन बदल सकती है।
1: जी हाँ,
0: हो सकता है कि हमारी बताई हुई किसी जानकारी से किसी बच्चे की पढ़ाई आगे बढ़ जाए, किसी परिवार को रोजगार मिल जाए, किसी किसान को सहायता मिल जाए या किसी गरीब परिवार को जरूरी सुविधा प्राप्त हो जाए। कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि किसी योजना की सफलता केवल इस बात से नहीं मापी जानी चाहिए कि उसके लिए कितना बजट बनाया गया है या कितने लोगों ने आवेदन किया है।
1: जी हाँ,
0: असली सवाल यह होना चाहिए कि क्या सबसे जरूरतमंद व्यक्ति तक लाभ पहुंचा, क्या पात्र व्यक्ति जानकारी के अभाव में पीछे तो नहीं रह गया, क्या महिलाओं और बुजुर्गों को दूर दराज के लोगों तक सूचना पहुंची या नहीं पहुंची, क्या आवेदन प्रक्रिया लोगों के लिए समझने योग्य थी, क्या लोगों की समस्याओं का समाधान हुआ। जब इन सवालों के जवाब सकारात्मक होंगे तभी समाज तभी कहा जा सकता है कशिश कि योजना वास्तव में अपने उद्देश्य में सफल हुई है। सरकारी योजना हमारे समाज के विकास का एक महत्वपूर्ण माध्यम है, लेकिन कोई भी योजना तभी सफल हो सकती है जब उसकी जानकारी हर जरूरतमंद व्यक्ति तक पहुंचे
1: और
0: पात्र व्यक्ति बिना आवश्यक कठिनाई के उसका लाभ प्राप्त कर सके। जरूरत है कि जानकारी को केवल कागजों, कार्यालय और इंटरनेट तक सीमित नहीं रखा जाए, बल्कि उसे गाँव की चौपाल, महिला के समूह, युवाओं, स्कूल और सामुदायिक रेडियो के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया भी जाए।
1: जी हाँ,
0: साथियों, हम स्वयं सरकारी योजनाओं की सही जानकारी प्राप्त करेंगे, जरूरतमंद लोगों तक सही सूचना पहुंचाएंगे, गलत जानकारी और अफवाहों से बचेंगे और अपने गांव के हर पात्र व्यक्ति को उसके अधिकार और सुविधाओं से जोड़ने में सहयोग करेंगे।
1: बिल्कुल अंजलि जी, तो जैसा कि बातें आज के इस कार्यक्रम में हमारे श्रोता साथियों से हमारी ढेर सारी हो चुकी हैं और अब जैसा कि हम देख रहे हैं कि समय भी हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का।
0: बिल्कुल,
1: तो विदा तो हम जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले क्यों ना हमारे कार्यक्रम का पता हम हमारे दोस्तों को बता दें।
0: जी हाँ, तो श्रोता साथियों लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान।
1: जी हाँ,
0: हमारा पिन कोड नंबर है 327001 और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर।
1: बिल्कुल,
0: हमारा फोन नंबर है 9414082643।
1: इसी के साथ दोस्तों आप हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
0: तो दोस्तों फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में, इसी समय, एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर
1: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को। नमस्कार।

0: भाई न बोनो, घर तक निकलते वक्त कोई आपरो इंतजार करी रू है। माँ नी दुआ, पिता नी उम्मीद, निसोरनी मुस्कान होवे। इटली गाड़ी धीरे सलावो, हेलमेट पहरो, सीट बेल्ट लगाड़ो। एक नानी सी सावधानी हित जिंदगी बचाड़ी लेगा। सड़क सुरक्षा अपनावो, क्योंकि घेरे कोई आपरो इंतजार करी रू है।
1: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

नमस्कार श्रोता साथियों, मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी मनीषा पटेल। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाग रेडियो 90.8 FM और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। जैसा कि श्रोता साथियों आप सभी जानते हैं कि कार्यक्रम आपकी फरमाइश सोमवार से शनिवार सुबह 11 से 1 बजे तक आता है, तो इसी बीच आप अपने फरमाइश के गीतों के लिए हमें व्हाट्सएप SMS करते हैं हमारे इस नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643। तो श्रोता साथियों आप भी हमारे कार्यक्रम से नए नए जुड़ रहे हैं और आप भी आपकी फरमाइश के गीतों को सुनना चाहते हैं, तो आप भी आपकी फरमाइश हम तक पहुंचा सकते हैं हमारे इस नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643। तो श्रोता साथियों अब हमारे फरमाइश के सिलसिले को शुरू करते हैं और बढ़ते हैं पहली फरमाइश की ओर। पहली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है पंडियापुर सिटी से। फिल्म का नाम है कुछ कुछ होता है, गीत के बोल हैं लड़की बड़ी अनजानी है। इस गीत को आवाज़ दी है अलका जी ने और कुमार सोनू जी ने। इस गीत के अनुरोध करता है प्रशांत सिंधी, सुनीता सिंधी, यशराज सिंधी, ऋषि सिंधी, कृष्णा घोड़के जी। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू भाटिया, तमन्ना जी भाटिया। इस गीत के अनुरोध करता है भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरा मणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा, नोखीलाल जी वर्मा। इसे भी जुड़ना चाह रहे हैं जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी गर्वी जी। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को, गीत के बोल ही लड़की बड़ी अनजानी है। इस गीत को आवाज दी है अलका जी ने और कुमार सोनू जी ने। तो आइए साथियों सुनते हैं श्रोता साथियों की फरमाइश के इस गीत को। तब तक आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वाग रेडियो 90.8 FM पर।

आइए श्रोता साथियों, इस प्यारे से गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुके हैं नेपानगर मध्य प्रदेश से। फिल्म का नाम है गाइड, गीत के बोल हैं गाता रहे मेरा दिल। इस गीत को आवाज दी है किशोर कुमार जी ने और लता जी ने। इस गीत के अनुरोध करता है सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नितिन शाह, शुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगलाबेन शाह और राजेंद्र जी शाह। इसे भी जुड़ना चाह रहे मलियाना सरधाना मेरठ से अनिल जैन, संयम जैन, मुस्कान जैन, मास्टर जी वीएम जी जैन। सरधाना मेरठ से जुड़ रहे हैं आदि जैन, अंश जैन और भव्य जी जैन। इस गीत के अनुरोध करता है छत्तीसगढ़ से फनीश कुमार चंदन, सावित्र देवी चंदन, मोहित कुमार चंदन, देविका रानी चंदन, गजेंद्र कुमार चंदन, हिमांश कुमार चंगन और सोगा धमतरी जी। बिलासपुर छत्तीसगढ़ से जुड़ना चाह रहे हैं गुणवत श्रीवास, श्रीमती करुणा श्रीवास, आयुष श्रीवास, विवेक जी श्रीवास, बेबी आयुष श्रीवास। बेलतारा छत्तीसगढ़ से जुड़ रहे हैं मोहन सिंह राज, अनिता राज, सोमी सोमो और मानस सिंह राज। तो आइए श्रोता साथियों, सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं गाता रहे दिल मेरा। इस गीत को आवाज़ दी है कुमार सोनू जी ने और लता जी ने। तो आइए साथियों, सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को।

श्रोता साथियों, अभी हमने बहुत ही प्यारा गीत सुना। गीत की बोल थी गाता रही दिल मेरा। इस प्यारे से गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है चोरी छत्तीसगढ़ जिला कोरबा से। फिल्म का नाम है मुस्कान, गीत के बोल हैं जिस दिन तेरी मेरी बात। इस गीत को आवाज दी है उदित नारायण जी ने और अलका जी ने। इस गीत के अनुरोध करता है लक्ष्मण सिंह ठाकुर, सावित्री देवी ठाकुर, माला ठाकुर, कमल सिंह ठाकुर, ईश्वर सिंह ठाकुर, मानुषानु बब्बन मीनू, काना हरिप्रिया जी ठाकुर। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रही हैं। एकता कोहली ने रोहतक से, सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट, निखिल कांगड़ा, तन्वी बोट, अंकित जी कांगड़ा। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रही हैं पंजाब से, सुभाष गोद्रा, बिमला गोद्रा, इंदु पार्वती, हिमांशु जी गोद्रा। इस गीत के अनुरोध करता है उत्तराखंड से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेरा आप जहां जी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं कलानौर से नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन शर्मा, मयंक जी शर्मा। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल ही जिस दिन तेरी मेरी बात नहीं होती। तब तक आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में, आपकी अपनी साथी मनीषा पटेल के साथ में।

श्रोता साथियों, अभी हमने उदित नारायण जी और अनुराधा जी की आवाज़ में बहुत ही प्यारा गीत सुना। गीत के बोल थे, जिस दिन तेरी मेरी बात नहीं होती। इस प्यारे से गीत की बात बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है मजनू का टीला सी। फिल्म का नाम है तवायफ, गीत के बोल हैं तेरी मेरी प्यार की तमन्ना। इस गीत की फरमाइश करता है कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा। सताना एमपी से जुड़ रहे हैं उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक, माही जी मलिक। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजलि ज्योति वर्मा, प्रसाद राजेंद्र जी वर्मा। इस गीत के अनुरोध करता है जनकपुरी सहारनपुर से जोन डिकिस्टो, रोजे डिकिस्टो, पल डिकिस्टो, विलिस डिकिस्टो। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे

श्रोता साथियों, इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है धनोरी तेलीवाला से। फिल्म का नाम है क्रांति, गीत के बोल ही जिंदगी की ना टूटी लड़ी। इस गीत को आवाज दी है लता मंगेशकर जी ने और नितिन मुकेश जी ने। इस गीत के अनुरोध करता है निसार सलमानी, नौसाद सलमानी, बेबी आलिया, आयन बाबू। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं भेड़ और महाराष्ट्र से नंदकिशोर घटी, संगीता घटी, साक्षी घटी, अंजलि करवा, बाल प्रसाद करवा, जयश्री मेलेत्री, रामनिवास अग्रवाल, धनजय बिट्टू और बीबी गुदलेश जी। इसे भी जुड़ना चाह रही है अमरावती से सिद्धार्थ गुड़ाने, अर्चना गुड़ाने, प्रणी प्रसिद्धि, हीरामन शिंडे और प्रतिभाजी गुड़ाने। इस गीत का अनुरोध करता है वासिम महाराष्ट्र से मास्टर विठल सुरेशी, सुषमा सुरेशी, परिधि सुरेशी, मायराजी सुरेशी। टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से जुड़ना चाह रहे हैं बजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली विश्वकर्मा, सोनम विश्वकर्मा, आशीष जी विश्वकर्मा। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। फिल्म का नाम है क्रांति, गीत के बोल ही जिंदगी की ना टूटे लड़ी। इस गीत को आवाज दी है लता मंगेशकर जी ने और नितिन मुकेश जी ने। तो आइए साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। तब तक आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में, आपके अपने साथी मनीषा पटेल के साथ में।

आइए श्रोता साथियों, इस प्यारे से गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है रतलाम एमपी से। फिल्म का नाम है हीरा पन्ना, गीत के बोल हैं, पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए। इस गीत को आवाज़ दी है किशोर कुमार जी ने और लता मंगेशकर जी ने। इस गीत के अनुरोध करता है जगदीश धाकड़, श्रीमती रंजूबाई धाकड़, युवराज सिंह और शिवांगी जी। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं। रघुवीर नगर दिल्ली से दिलावर खान, हसीना बानो, एलिसा नायाब और लड्डू जी। इस गीत के अनुरोध करता है भागपत से जगमोहन सिंह प्रजापत, श्रीमती मुनीश जीवी, अर्जुन भारती, बिटिया अंजलि, नितिन जगमोहन, सुधीर न्यूतन, प्यारी पोती भुवनेश्वरी देवी और रामनाथ कश्यप जी। दिल्ली से जुड़ना चाह रहे हैं रामनाथ प्रजापति, श्रीमती सुमन देवी जी। नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से जुड़ना चाह रहे हैं महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मण देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी गोस्वामी, टिंकल डिंपल, मीनाक्षी निशा, तुलसी और दिशाजी गोस्वामी। इसे भी जुड़ना चाह रहे हैं पंजाब से बब्बल मल्होत्रा, ओम प्रकाश जी मल्होत्रा। तो आइए श्रोता साथियों, सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। फिल्म का नाम है हीरा पन्ना, गीत के बोल हैं, पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए। इस गीत को आवाज़ दी है किशोर कुमार जी ने और लता मंगेशकर जी ने। तो आइए साथियों, सुनते हैं श्रोता साथियों की फरमाइश के इस गीत को। तब तक आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वाकर रेडियो 90.8 FM पर।

आइए साथियों इस गीत की बात बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है, खेल बाजार पानीपत से। फिल्म का नाम है खलनायक, गीत की बोल है पालकी में होके सवार चली रहे। इस गीत को आवाज दी है अलका जी ने। इस गीत के अनुरोध करता है नरेश मल्होत्रा, नीटू लक्ष्मी मल्होत्रा, लाडू कोयर मल्होत्रा, पापा जी नानक चंद मल्होत्रा, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से जुड़ना चाह रहे हैं पीयू सिक्का, कुनिका सिक्का, डुग्गू सिक्का, कोयल सिक्का, भाविका जी सिक्का, भाविक जी सिक्का। झारखंड से जुड़ना चाह रहे मोहम्मद यासीन अंजान, साइना नवाज, हसन नवाज, बाबू अहमद, मिफरा नवाज, बीबी चाहत जी। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं भोपालगढ़ राजस्थान से, धर्मेंद्र चिपा, कपिल चिपा, पूजा परिहार जी। दुलापुर उत्तर प्रदेश से जुड़ना चाह रहे हैं मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राज पंकज, काजल सीमा, मानवी तन्वी, मोहिनी, ऋतिक, बलवीर सिंह जी। तो आइए साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। फिल्म का नाम है खलनायक और गीत के बोल हैं पालकी में होके सवार चली रहे। तब तक आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में, आपके अपने साथी मनीषा पटेल के साथ में।

आइए श्रोता साथियों इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है उत्तर प्रदेश से। फिल्म का नाम है मेरे जीवन साथी, गीत के बोल हैं ओ मेरे दिल के चैन। इस गीत को आवाज दी किशोर कुमार जी ने। इस गीत के अनुरोध करता है मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इजरा, नरगिस जी खातून। होता है मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इजरा, नरगिस जी खातून। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं डाबकी रोड अकोला से शशिला देवी मधुरकर, सदानंद मधुरकर, कुमार गौरव जी मधुरकर। इस गीत के अनुरोध करता है भाटापारा छत्तीसगढ़ से अब्दुल गफा डावर जी, अब्दुल हक डावर जी, जिया हक डावर जी, मोहम्मद उमर डावर जी और राजेंद्र कटारा जी छत्तीसगढ़ से जुड़ रहे हैं सोहन जोशी। तो आइए साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं ओ मेरे दिल के चैन।

हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर। स्वागत है साथियों आप सभी का फिर से आज के कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि फरमाइशों का सिलसिला कार्यक्रम के माध्यम से हमारा आपके साथ रोज़ाना बना रहता है, सोमवार से शनिवार सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक। तो आज भी जैसा कि ये सिलसिला सुबह 11 बजे से बना हुआ था, जिसे आप सभी सुन रहे थे प्रस्तुतकर्ता मनीषा पटेल के साथ में, और अब आप इसे आगे सुनने वाले हैं मेरे साथ यानी कि आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर के साथ में। तो दोस्तों फरमाइशों के सिलसिले को यूं ही आगे बढ़ाते हुए मैं बढ़ना चाहूँगी हमारी अगली फरमाइश की गीत की ओर। अगली फरमाइश का गीत हमारे बीच आया है, फिल्म का नाम है साथियों पत्थर के फूल। गीत के बोल हैं, कभी तो छलिया लगता है कभी दीवाना लगता है। फरमाइशकर्ता जुड़ना चाह रहे हैं महाराष्ट्र से, मंडो लोहार पोपलगढ़, चंद्रकला पोपलगढ़, देवीदास पोपलगढ़, हरीश कुमार बिड़वे जी। इसी बीच हमारे और भी साथी हैं जो इसी गीत के साथ अपना मनोरंजन करना चाह रहे हैं। नाम आपको मैं बताना चाहूँगी, जजे हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, रजत भाटिया, मयंक भाटिया। इसी बीच और भी श्रोता साथी हैं जो इसी गीत के साथ अपना मनोरंजन करना चाह रहे हैं। दोस्त जुड़ रहे हैं चचेड़ी छत्तीसगढ़ से, कमलकांत मरावी, प्रमिला मरावी, नेहा पुष्पराज, ऋषभ मरावी जी। तो आइए साथियों मनोरंजन करते हैं दोस्तों की फरमाइश के गीत के साथ में। गीत के बोल हैं, कभी तू छलिया लगता है। तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

श्रोता साथियों, जैसा कि बहुत ही प्यारा सा गीत था, कभी तू छलिया लगता है कभी दीवाना लगता है, इसी गीत के बाद हम फिर से बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश के गीत की ओर। दोस्तों, अगली फरमाइश का गीत हमारे बीच आया है, मैं आपको बताना चाहूँगी। बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से ये फरमाइश आई है। फिल्म का नाम है लूटमार गीत के बोल हैं जब छाए मेरा जादू। फरमाइश करता जुड़ना चाह रहे रामचंद्र विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू रजना, बदना प्रियाल और दिव्यांशी विश्वकर्मा जी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं मारवाड़ बिलर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी गर्वी जी। और भी साथी जुड़ना चाह रहे हैं, तरुण प्रतीक चौहान जी भी जुड़ रहे हैं। सहारनपुर से जुड़ना चाह रहे हैं सैयद मसूर, साना असा असन और अक्षा जी, अदीब नाजम, आफिया इब्राहिम, सद्दाम जी। और भी दोस्त जुड़ना चाह रहे हैं इसी गीत के साथ में। अनुरोध करते हैं सफराबाद से सुधाकर राजे यादव, प्रशांत राजे यादव, जगुताई राजे यादव, देशमुख, संचित देशमुख, प्रणय देशमुख, सर्वत देशमुख, सानवी और प्रथमेश सर्वत देशमुख। तो आइए श्रोता साथियों, सुनते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं जब छाए मेरा जादू। तब तक आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

श्रोता साथियों, जैसा कि बहुत ही प्यारा सा गीत था और इस गीत के बाद हम फिर से बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश की गीत की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आई है जाफराबाद से। फिल्म का नाम है श्रोता साथियों सौतन, गीत के बोल हैं शायद मेरी शादी का ख्याल। फरमाइशकर्ता जुड़ना चाह रहे हैं सुधाकर राजे यादव, प्रशांत राजे यादव, जगुताई राजे यादव, देशमुख जी, संचित देशमुख, सलवरी देशमुख और समस्त राजे यादव परिवार सदस्यगण भी जुड़ रहे हैं। जाकोद राजस्थान से हैं शमुदायल खटक, विमला देवी, अमरजीत खटक, सुंदरलाल खटक, योगेश कुमार खटक, दीपक कुमार खटक, कुमारी पूजा खटक। और भी साथी जुड़ना चाह रहे हैं करेली बरेली से हैं आमिर अंसारी, शमीम अंसारी, नसीन अंसारी, शमा अंसारी, माहिनूर अंसारी जी। और भी दोस्त हैं जो इसी गीत के साथ अपना मनोरंजन करना चाहते हैं। आपको नाम बताना चाहूँगी, नरवेल महाराष्ट्र से हैं पी एस नवाड़कर, नेहा नवाड़कर, विशाल नवाकर। मलकापुर से हैं नारायण इंगले, सोपान तायडे, आशीष मोहेरकर जी। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को, गीत के बोल हैं शायद मेरी शादी का ख्याल। तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में और सुनते रहिएगा आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।

0: बिल्कुल नहीं, तेरी कसम आऊंगा।
1: श्रोता साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश की गीत की। और अगली फरमाइश आई है कुम्भार गली कोलगांव से। फिल्म का नाम है श्रोता साथियों बताना चाहूंगी जुल्म। गीत के बोल हैं, जब कोई बात बिगड़ जाए। फरमाइश करता जुड़ना चाह रहे हैं पांडु चंदन, उषा चंदन, रानी प्रतीक्षा चंदन, अभिषेक सार्थक, प्रथमेश चंदन और पांडुरंग कुम्हार जी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल किरण, कपिल कुणाल मेहरा। और भी साथी जुड़ना चाह रहे हैं। आपको नाम बताना चाहूंगी, नवाशहर पंजाब से हैं गंगदीप थाटी, तिमदा कुमारी थांडी, प्रियंका थांडी, प्रशांत थांडी, प्रियम वामिका और वाणी थांडी जी। छत्तीसगढ़ से हैं नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग टेलर जी, पुनाराम देवांगन, कृष्णा देवांगन जी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं मुरादाबाद से अजित कसाना, माया देवी, ऋतिक आदित्य कसाना, लदावली मुरादाबाद से हैं ये। तो आइए श्रोता साथियों सुन लेते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं, जब कोई बात बिगड़ जाए। तब तक आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर, कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

श्रोता साथियों, जैसा कि बहुत ही प्यारा सा गीत था, जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, इसी गीत के बाद हम फिर से बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश की गीत की ओर। साथियों, अगली फरमाइश का गीत हमारे बीच आया है, मैं आपको बताना चाहूँगी। फिल्म का नाम है मोहब्बतें, गीत के बोल हैं, चलते चलते यूं ही रुक जाता हूँ मैं। फरमाइशकर्ता जुड़ना चाह रहे हैं श्रोता साथी, आपको नाम बताना चाहूँगी। पथरिया से हैं नरेंद्र नेताम, कुसुम नेताम, और भी दोस्त जुड़ना चाह रहे हैं इसी गीत के साथ में, मनोरंजन करना चाह रहे हैं। गनगोला दातागंज बदायूं से हैं इसरत खान, शारा बेगम, शहबाज खान, साहिन खान, शबरीन बेगम, शहबाज खान, शेफ खान, ईशान खान, और भी हमारे दोस्त हैं जो इसी गीत के साथ अपना मनोरंजन करना चाहते हैं। आपको नाम बताना चाहूँगी। महाराष्ट्र से हैं रुपेश सिंगे, महस प्रिगेस, प्रीतेश संगे, पूरा संगे परिवार, और भी दोस्त जुड़ रहे हैं। येतला महाराष्ट्र से हैं शंकरलाल जयसवाल, गणेशलाल जयसवाल, शुभम प्रसाद जयसवाल, अन्नय जयसवाल, दुर्गेश्वरी जयसवाल, राखी जयसवाल, तृप्ति जयसवाल जी। तो आइए साथियों, मनोरंजन करते हैं दोस्तों की फरमाइश के गीत के साथ में। गीत के बोल हैं, चलते चलते यूं ही रुक जाता हूं मैं। तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में, आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर के साथ में।

श्रोता साथियों, इस गीत के बाद फिर से बढ़ते हैं अगली फरमाइश के गीत की ओर। अगली फरमाइश का गीत हमारे बीच आया है, मैं आपको बताना चाहूँगी। फिल्म का नाम है हाँ मैंने भी प्यार किया। गीत के बोले हैं, हम प्यार है तुम्हारे, दिलदार है तुम्हारे। ये फरमाइश हमारे बीच आई है शिवाजी नोक कटनी से। फरमाइश करता है अनिल ताम्रकर, अमर ताम्रकर, दिलीप वर्मा, संजय सोनी, अरुण कनौजिया, पवन यादव, संजीव वर्मा, विपिन गुप्ता जी, रंजन रजक, लालू, सोना, मोना और हरी और यश जी, और भी हमारे साथी हैं जो सरगांव छत्तीसगढ़ से जुड़ रहे हैं, मनोरंजन इस गीत के साथ करना चाहते हैं। दीपेश वर्मा जी, पूनम वर्मा, ज्योति शिवांश वर्मा जी और भी साथी हैं नेहरू चौक पैटर्न से, सुरेश यादव, अनिता यादव, आरती प्रसाद यादव, सोनल यादव, बेबी सिया यादव, जलाना शहर से सोमनाथ यादव, गीता यादव, ओम सुभाष चंदन, एकनाथ यादव, संगीता यादव जी इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं। यवतमाल महाराष्ट्र से राहुल मनवर, सरला मनवर, विशाल जी, चेतन, रोशनी मनवर, प्रियांशी जी। तो आइए साथियों सुनते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं, हम प्यार है तुम्हारे, दिलदार है तुम्हारे। तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

श्रोता साथियों, इस गीत के बाद फिर से बढ़ते हैं अगली फरमाइश की गीत की। और अगली फरमाइश का गीत हमारे पीछे आया है कुरावली से। फिल्म का नाम है श्रोता साथियों बजरंगी भाईजान। गीत के बोल हैं भर दो झोली मेरी मोहम्मद। फरमाइश करता जुड़ना चाह रहे हैं, आपको नाम बताना चाहूँगी। राशिद हुसैन अंसारी, नसीन अंसारी, नौरीन अंसारी, आसना मोहम्मद कैफ अंसारी जी। और भी हमारे श्रोता साथी हैं जो इसी गीत के साथ अपना मनोरंजन करना चाहते हैं। गंजद्वारा से शमशुल कमर राही, शाहीन फातिमा, अदनान खान, फैजान खान, अनु अंसारी, कलीम अंसारी जी। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गंगनेदा, पुन्नम गंगनेदा, विशाल प्रिया, दिशा नियमित आहूजा जी। और भी दोस्त अनिल जैन, संयम जैन, मुस्तान मास्टर, जीवीएम जैन, आदि जैन, भव्य जैन, अंशिका जैन, ये मेरठ से जुड़ना चाह रहे हैं। बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हैं गुणवंत श्रीवास, करुणा श्रीवास, आयुष श्रीवास, विवेक श्रीवास, बीबी आयुष श्रीवास। छत्तीसगढ़ से हैं मोहन सिंह राज, अनिता राज, सुमित सोमवानस राज। उत्तर प्रदेश से सुरस चौरसिया, सरोज चौरसिया, सोलोनी चौरसिया, लल्ला संजू, पूजा पिंकी चौरसिया जी, शिवा शिवानी चौरसिया, पवन गौड़ और योगेंद्र नायक जी। नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा, स्वीटी छाबड़ा जी। इसी बीच और भी अनुरोध करता है जो इसी गीत के साथ अपना मनोरंजन करना चाहते हैं। बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हैं हेमंत नामदेव, नंदिनी नामदेव, निशा नामदेव जी। साथी जुड़ना चाह रहे हैं, आपको नाम बताना चाहूँगी। भाटापारा छत्तीसगढ़ से हैं सोहन जोशी, अर्चना जोशी, लोकेश जोशी, पायल जोशी, हरमिंदर सिंह जबानी चावला, अंकिता जोशी, लक्ष्मी ध्रुव, वेदही जोशी, हंसिका जोशी। जगदलपुर बस्तर से पूनम नायडू जी। छत्तीसगढ़ बिलासपुर से हैं छनोलाल श्रीवास, अनिता पुष्पा श्रीवास, अंजू योगिता श्रीवास, रंजन साहू, हेमंत नामदेव, धर्मदास वाधवानी जी। और भी साथी जुड़ना चाह रहे हैं इसी गीत के साथ में, आपको नाम बताना चाहूँगी। मेरठ से नील जैन, सैम जैन, मुस्कान मास्टर, जीवम जैन, आदि जैन, भव्य जैन, अंशिका जैन। जुड़ना चाह रहे हैं लोनमी चिचड़ी छत्तीसगढ़ से कमलकांत मरावी, प्रमिला मरावी, नेहा पुष्पराज, ऋषभ मरावी जी। और भी साथी हैं जुड़ रहे हैं राहुल बंसोर, सम्यक बंसोर, शरण बंसोर, मीरा बंसोर, लुम्बिनी नगर अकोला से जुड़ना चाह रहे हैं। इसी बीच और भी साथी हैं जो इसी गीत के साथ अपना मनोरंजन करना चाहते हैं, लुम्बिनी नगर से ही हैं। बताना चाहूँगी श्याम कीटे, मन्ना कीटे, भाविका कीटे, समस्त कीटे परिवार सदस्यगण। गंजुडवारा उत्तर प्रदेश से मास्टर खिल्लू परवेज, बेगम इमराना नार, नाजी शेख, दानिश शेख, अमर आफरीदी, राना नामदेव जी। तो आइए श्रोता साथियों मनोरंजन कर लेते हैं दोस्तों की फरमाइश के गीत के साथ में। गीत के बोल हैं भर दो झोली मेरी।

श्रोता साथियों, आपको बताना चाहूंगी कि यही हमारे आज के कार्यक्रम आपकी फरमाइश का अंतिम गीत है। साथियों, आपसे हमारी फिर से मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम में कुछ नई फरमाइश गीतों के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर को। इसी अनुमति के साथ नमस्कार।

बहन बोनो, आ तो हती अमारी आज की सभा। हमें आशा कर हूँ कि आज की सभा में प्रसारित थावा वाला कार्यक्रम गीत संगीत आपने पसंद आई हुआ होगा। आपने हमारा आज ना कार्यक्रम केवा लग्या इन्हें बल्ले आप मने राय सुझाव आली शको हमारे अणपता माते। अमरु पतु है वागड़ रेडियो 90.8 FM मुकाम पोस्ट कोपड़ा वागथरा कैंपस बांसवाड़ा राजस्थान। अमरु पिन कोड नंबर है 327001। अजी वधारे जानकारी बल्ले आप मने फोन करी शको अमारे अणा फोन नंबर माते। अमरु फोन नंबर है 9414082643। तो भाईन बोनु, आ तो हती आपने आसनी सभा। बीजी सभा में फेरी मुलाकात थागा। तारुदी आपनी बोन अंजलि नू राम राम राम राम।

श्रेष्ठता का क्या अर्थ है? श्रेष्ठता का अर्थ है दूसरों से अधिक ज्ञान प्राप्त करना। अर्थात मूल्य इस बात का नहीं कि स्वयं कितना ज्ञान प्राप्त किया, मूल्य इस बात का है कि प्राप्त किया हुआ ज्ञान अन्य लोगों से कितना अधिक है। अर्थात श्रेष्ठता की इच्छा ज्ञान प्राप्ति को भी एक स्पर्धा बना देती है। और स्पर्धा में विजय अंतिम कब होती है? कुछ समय के लिए तो श्रेष्ठ बना जा सकता है, किंतु सदा के लिए कोई श्रेष्ठ नहीं रह पाता। फिर वही असंतोष, पीड़ा और संघर्ष जन्म लेता है। किंतु श्रेष्ठ बनने के बदले यदि उत्तम बनने का प्रयत्न करें तो क्या होगा? उत्तम का अर्थ है कि जितना प्राप्त करने योग्य है वो सब प्राप्त करना, किसी से अधिक पाने की इच्छा से नहीं, मात्र आत्मा की तृप्ति हेतु कुछ प्राप्त करना। उत्तम के मार्ग पर किसी अन्य से स्पर्धा नहीं होती, स्वयं अपने आप से स्पर्धा होती है। अर्थात उत्तम बनने का प्रयत्न करने वाले को देर अबेर सारा ज्ञान प्राप्त हो जाता है, बिना प्रयत्न के ही वो श्रेष्ठ बन जाता है। किंतु जो श्रेष्ठ बनने का प्रयत्न करता है वो श्रेष्ठ बने या ना बने, उत्तम कभी नहीं बन पाता।

0: और पूर्वाभासों के आधार पर हम भविष्य के सुख दुख की कल्पना करते हैं। भविष्य के दुख का कारण दूर करने के लिए हम आज योजना बनाते हैं, किंतु कल के संकट को आज निर्मूल करने से हमें लाभ मिलता है या हानि पहुंचती है, ये प्रश्न हम कभी नहीं करते। सत्य तो ये है कि संकट और उसका निवारण सात जन से, व्यक्ति के लिए भी और सृष्टि के लिए भी। नहीं, आप अपने भूतकाल का स्मरण कीजिए, इतिहास को देखिए, आप तुरंत ही ये जान पाएंगे कि जब जब संकट आता है तब तब उसका निवारण करने वाली शक्ति भी जन्म लेती। यही तो जगत का चलन है।
1: वस्तुतः संकट ही शक्ति के जन्म का कारण है।
0: प्रत्येक व्यक्ति जब संकट से निकलता है तो एक पद आगे बढ़ा होता है, अधिक चमकता है, आत्मविश्वास से अधिक भरा होता है, ना केवल अपने लिए अपितु विश्व के लिए भी। क्या ये सत्य नहीं? वास्तव में संकट का जन्म है एक अवसर का जन्म, अपने आप को बदलने का, अपने विचारों को ऊंचाई पर करने का अवसर, अपनी आत्मा को बलवान और ज्ञान मंडित बनाने का। जो ये कर पाता है उसे कोई संकट नहीं होता, किंतु जो ये नहीं कर पाता वो तो स्वयं एक संकट है विश्व के लिए। विचार कीजिए।

0: कार्यक्रम युवाओं की आवाज सुनने वाले हमारे सभी श्रोता साथियों को आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर
1: और आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट का प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM और आप सभी का तहे दिल से स्वागत है कार्यक्रम युवाओं की आवाज में।
1: जी हाँ साथियों, लेकर हाजिर है कार्यक्रम युवाओं की आवाज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बात रहने वाली है कि जब जंगल बोलते हैं तो युवा सुनते हैं।
0: बिल्कुल
1: कशिश, हमारे श्रोता साथियों को हम कहना चाहेंगे कि जंगल सिर्फ पेड़ों का समूह नहीं है बल्कि धरती की वो आवाज है श्रोताओं, जो बिना शब्दों के भी बहुत कुछ हमें कहती है। सवाल बस इतना है कि क्या हम युवा उस आवाज को सुनने के लिए तैयार हैं?
0: बिल्कुल,
1: जरा कल्पना कीजिए श्रोता साथियों कि सुबह की हल्की धूप, पेड़ों से छनकर आती रोशनी, पत्तों की सरसराहट, पक्षियों की चहचहाट और मिट्टी की सोंध खुशबू। जंगल में शायद कोई इंसान आपसे बात न करे, लेकिन श्रोताओं फिर भी जंगल बहुत कुछ हमसे कहता है। वो कहता है मुझे बचाओ क्योंकि मेरा अस्तित्व तुम्हारे अस्तित्व से ही जुड़ा है।
0: जी हाँ जागृति जी, तो आज के इस कार्यक्रम में इसी विषय को लेकर हम हमारे युवा साथियों से ढेर सारी बातें करेंगे।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन जैसा कि शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है, तो क्यों ना दोस्तों को पहले यहाँ एक प्यारा सा गीत सुनवा दे हम।
1: जी हाँ, तो आइए साथियों सुन लेते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप बने रहे कार्यक्रम युवाओं की आवाज में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।
0: जी हाँ,

0: हैं, स्थानीय पेड़ कम क्यों हो रहे हैं, आसपास का मौसम क्यों बदल रहा है और जो पक्षी है वो पहले जैसे क्यों नहीं दिखाई देते। इन सभी सवालों से जागरूकता शुरू हो सकती है। जागृति जी, हम देखते हैं कि आज का युवा केवल सोशल मीडिया पर ही पर्यावरण से जुड़ी पोस्ट साझा करने तक सीमित न रहे बल्कि अपने आसपास छोटे कदम भी उठा सकता है।
1: बिल्कुल
0: दोस्तों, स्थानीय पौधों का संरक्षण, पानी की बचत, प्लास्टिक के अनावश्यक उपयोग को कम करना, सार्वजनिक स्थानों पर स्वच्छता बनाए रखना, जैव विविधता के प्रति जागरूकता फैलाना और पर्यावरण से जुड़े अभियानों में भाग लेना, जागृति जी, ये कुछ ऐसे छोटे कदम हैं जिनसे मिलकर बदलाव लाया जा सकता है।
1: बिल्कुल।
0: और सबसे जरूरी बात ये कि पेड़ लगाना ही पर्याप्त नहीं है बल्कि लगाए गए पौधों की देखभाल करना भी उतना ही जरूरी होता है।
1: जी हाँ कशिश, क्योंकि हम कह सकते हैं कि एक पौधा लगातार उसकी जिम्मेदारी लेना प्रकृति के साथ हमारे रिश्ते को मजबूत करता है। श्रोताओं, जब हम जंगल की बात करते हैं तो केवल पेड़ों के बारे में सोचना अधूरा हो जाता है कशिश। जी जी। जंगल में पेड़ है, झाड़ियां है, घास है, पक्षी है, कीट है, छोटे बड़े जीव है, अनगिनत सूक्ष्म जीवन रूप है। ये पूरा संसार मिलकर एक पारिस्थितिक तंत्र बनाता है। श्रोताओं,
0: बिल्कुल
1: किसी एक प्रजाति में बदलाव भी पूरे प्राकृतिक संतुलन को प्रभावित कर सकता है। इसलिए जंगल को बचाना केवल हरियाली को बचाना नहीं, ये जीवन की विविधता को बचाना है।
0: जी हाँ,
1: हमारे ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में प्रकृति के साथ जीवन जीने की अपनी समृद्ध परंपरा है कशिश। स्थानीय लोग मौसम, पेड़ पौधे, जल स्रोत और जंगलों से जुड़े कई पारंपरिक अनुभव जानते हैं।
0: बिल्कुल,
1: युवा पीढ़ी के लिए बहुत जरूरी है कि वो आधुनिक शिक्षा और तकनीक के साथ साथ स्थानीय ज्ञान और अनुभव का भी सम्मान करें।
0: बिल्कुल जागृति जी, तो जैसा कि युवा साथियों से हम कार्यक्रम के माध्यम से बात कर ही रहे हैं कि अगर जंगल बोलते तो क्या युवा साथी उनकी बातों को सुन पाते, उनके संकेतों को समझ पाते, तो ये बातें हम आगे भी करते रहेंगे, लेकिन अभी मनोरंजन कर लेते हैं एक और गीत के साथ में।
1: जी हाँ,

0: खाद का उपयोग करने से मिट्टी की गुणवत्ता बनाए रखने में भी मदद मिलती है।
1: बिल्कुल, तो जैसा कि आप हमें बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं, तो यही मैं जानना चाहूँगी कि आदिवासी क्षेत्रों में कौन सी पारंपरिक सब्जियाँ पौष्टिक हैं।
0: आदिवासी और ग्रामीण क्षेत्रों की पारंपरिक खाद्य और परंपराओं में कई स्थानीय पत्तेदार सब्जियां हैं, जैसे कंदमूल हैं, फलियां हैं, मौसमी खाद्य पदार्थ शामिल रहे। कई स्थानीय साग और हरी पत्तेदार सब्जियां भोजन के महत्वपूर्ण पोषक तत्वों को जोड़ सकते हैं, जैसे चौलाई, बथुआ, सहजन की पत्तियां, सहजन की फलियां। स्थानीय साग और क्षेत्र में प्रचलित दूसरी खाद्य वनस्पतियों का भी उपयोग परंपरागत रूप से कई जगह किया जाता रहा है।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन किसी भी जंगली पौधे या साग को बिना पहचाने और जानकारी के खाना उचित नहीं है।
1: बिल्कुल,
0: स्थानीय रूप से पहचाने जाने वाले और सुरक्षित खाद्य पदार्थों को मौसम के अनुसार भोजन में शामिल करना चाहिए। इससे हमारे स्थानीय खाद्य परंपरा, जैविक विविधता और पोषण, ये तीनों ही हमें मजबूत करने में मदद मिलती है।
1: बिल्कुल, यही पोषण वाटिका अगर कोई परिवार लगा रहा है तो खर्च कितना कम हो सकता है।
0: हाँ, घर में अगर हम कुछ सब्जियाँ उगाने से बाजार से खरीदे जाने वाली सब्जियों की मात्रा कम हो सकती है और इससे हमारे परिवार के खर्च में बचत भी हो सकती है।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन बचत की कोई एक निश्चित राशि हम बता नहीं सकते क्योंकि उस परिवार के आकार, वाटिका के क्षेत्रफल, फसल और मौसम के अनुसार बाजार की कीमतों के पर निर्भर करता है। अगर परिवार नियमित रूप से पालक, मेथी, धनिया, मिर्ची जैसी उपयोगी सब्जियां घर पर ही उगाता है तो छोटी छोटी खरीदारी कम हो सकती है। इसके साथ भी परिवार की ताज़ी सब्जियां घर के पास उपलब्ध हो जाती हैं और घर के जैविक कचरे का भी खाद्य में तैयार करने में उपयोग हो सकता है। बाद से खाद खरीदने का जो खर्चा होता है वो कम हो सकता है।
1: बिल्कुल,
0: इसलिए पोषण वाटिका को बचत के साथ साथ हम बेहतर भोजन की व्यवस्था के रूप में देखना अधिक उपयोगी है।
1: जी बिल्कुल, यही अब मैं जानना चाहूँगी कि आंगनबाड़ी और स्कूल में पोषण वाटिका का क्या महत्व है।
0: जी, आंगनबाड़ी और स्कूलों में पोषण वाटिका बच्चों के लिए एक तरह की जीवंत पाठशाला है। बच्चे किताबों में पढ़ने के साथ साथ अगर उसको आंखों से पौधों को बढ़ते देखें, जैसे प्रैक्टिकली देखेंगे तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा।
1: बिल्कुल,
0: और उन्हें सब्जियां, स्थानीय खाद्य पदार्थों को संतुलित भोजन के बारे में व्यवहारिक जानकारी मिल सकती है। शिक्षक और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बच्चों को पौधों की देखभाल, छोटी गतिविधियों में शामिल कर सकते हैं। स्थानीय मौसम के अनुसार उगाई गई सब्जियों का उपयोग, उपलब्ध व्यवस्था और नियम के अनुरूप पोषण संबंधित गतिविधियों में किया जा सकता है।
1: जी जी,
0: इससे बच्चों में प्रकृति, स्वच्छता, पोषण और जिम्मेदारी के प्रति सकारात्मक सोच विकसित करने का अवसर मिलता है।
1: जी बिल्कुल, तो सरकार की कौन कौन सी योजनाएं जो इसमें मदद करती है।
0: देश में पोषण सुधार के लिए पोषण अभियान और आंगनवाड़ी केंद्रों में जुड़ी विविध गतिविधियों के माध्यम से पोषण वाटिका को बढ़ावा दिया गया है। आंगनवाड़ी केंद्रों, स्कूलों और समुदायों के स्तर पर पोषण वाटिका विकसित करने की पहल की जाती रही है। इसके अलावा कृषि विभाग, बागवानी विभाग और स्थानीय प्रशासन की ओर से समय समय पर बीज प्रशिक्षण, तकनीकी जानकारी या अन्य सहायता से जुड़ी योजनाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।
1: बिल्कुल,
0: इन योजनाओं की जानकारी राज्य और जिले के अनुसार अलग अलग हो सकती है, इसीलिए ग्रामीण परिवार अपने आंगनवाड़ी केंद्र, ग्राम पंचायत, कृषि विभाग या संबंधित सरकारी कार्यालय से वर्तमान सहायता और पात्रता की जानकारी ले सकते हैं। सरकारी योजना का लाभ लेने से पहले यह जरूर पता करें कि आपके क्षेत्र में उस समय कौन सी सुविधा उपलब्ध है, तभी हम उसका फायदा उठा सकेंगे।
1: बिल्कुल, तो क्या गमलों में भी पोषण वाटिका बनाई जा सकती है।
0: जी बिल्कुल, गमले, पुरानी बाल्टियाँ हों, टब हो या अन्य सुरक्षित कंटेनर हों, उनमें भी छोटी छोटी पोषण वाटिकाएँ बनाई जा सकती हैं, जैसे धनिया, मेथी, पालक, हरी मिर्ची जैसे फसलें छोटे कंटेनरों में उगाई जा सकती है और टमाटर और दूसरी अन्य सब्जियां के लिए अपेक्षित बड़े कंटेनरों की जरूरत पड़ती है, जो हम उन्हें बड़े कंटेनर का उपयोग कर सकते हैं।
1: बिल्कुल, तो जैसा कि आप कार्यक्रम में बहुत अच्छी जानकारी हमें दे रही हैं, तो अंत में आप हमारे श्रोता साथियों को क्या संदेश देना चाहेंगी।
0: मेरा बस यही संदेश है कि पोषण वाटिका शुरू करने के लिए बड़े खेत या बहुत अधिक पैसों की जरूरत नहीं पड़ती है। एक गमले से भी हम शुरुआत कर सकते हैं, आंगन की छोटी सी क्यारी भी लगा सकते हैं। यही बहुत महत्वपूर्ण, खाली महत्वपूर्ण यही है कि हमें पहले शुरुआत करनी है। मौसम के अनुसार स्थानीय पौष्टिक भोजन सब्जियाँ उगाएं, बच्चों को पौधों की देखभाल से जोड़े, घर में उपलब्ध जैविक पदार्थों का सही उपयोग करें, यही हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
1: जी जी,
0: याद रखिए, एक छोटा सा पौधा जब हरा होकर हमारी थाली तक पहुंचता है तब वो एक सब्जी ही नहीं होता है, बल्कि वो हमें

0: स्वावलंबन, प्रकृति से जुड़ाव और बेहतर पोषण का भी संदेश भी देते हैं। इसलिए आइए हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि हर घर में थोड़ी हरियाली हो, हर थाली में विविधता हो और हर परिवार में भोजन में पोषण हो।
1: बिल्कुल, तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगी कि आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े और आपका कीमती समय आपने हमें दिया।
0: जी धन्यवाद।
2: रीना, विशेषज्ञ की बात सुनकर मुझे समझ में आ गया कि पोषण वाटिका सिर्फ सब्जी उगाने का नाम नहीं है बल्कि परिवार के स्वास्थ्य का ध्यान रखने का एक अच्छा तरीका भी है।
3: बिल्कुल, हमने बहुत अच्छी बातों को जाना, क्योंकि जब घर में अलग अलग तरह की सब्जियां होंगी ना, तो बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी को अलग अलग पोषक तत्व मिलेंगे, है ना?
2: हाँ, और बच्चों को भी रोज हरी सब्जियां खाने की आदत पड़ेगी।
3: हाँ, खासकर बच्चों, महिलाओं और पूरे परिवार के लिए संतुलित और विविध भोजन बहुत जरूरी होता है।
2: हाँ रीना, अब तो मैं भी अपने घर में खाली आंगन में कुछ पौधे जरूर लगाऊंगी।
3: हाँ बिल्कुल लगाना, ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि शुरुआत छोटी हो सकती है लेकिन फायदे तो पूरे परिवार को मिलेंगे।
2: हाँ रीना, ये तो तुमने बिल्कुल सही कहा। अपने घर के छोटी सी पोषण वाटिका परिवार के अच्छे स्वास्थ्य की शुरुआत भी बन सकती है।
3: हाँ बिल्कुल, तो चलो अब से संकल्प लेते हैं कि हम अपने घर के एक छोटे से हिस्से में पोषण वाटिका जरूर लगाएंगे।
2: हाँ जरूर लगाएंगे।
4: तो साथियों, आज की इस छोटी सी कहानी से हमने जाना कि घर के आंगन, छत या उपलब्ध छोटी जगह का उपयोग करके पोषण वाटिका तैयार की जा सकती है। ताजी और विविध सब्जियों को अपने भोजन में शामिल करके हम परिवार के पोषण और स्वास्थ्य को बेहतर बनाने की दिशा में एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण कदम उठा सकते हैं। याद रखिए कि स्वस्थ परिवार की शुरुआत पौष्टिक भोजन से होती है और पौष्टिक भोजन का एक अच्छा सहारा बन सकती है हमारे घर की पोषण वाटिका। तो आशा करते हैं कि आज कार्यक्रम की होने वाली सभी बातचीत आपको अवश्य पसंद आई होगी। अब समय हो चला है हमारे आज के इस कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले सुन लेते हैं एक और प्यारा सा गीत।
5: चिटकिटा

साथियों, इस गीत के साथ ही हम हमारे आज के कार्यक्रम सच्चा बचपन से विदा लेना चाहेंगे और आशा करेंगे कि आज कार्यक्रम में हमारी आपसे जो भी बातचीत रही है वो आपको अवश्य पसंद आई होगी। तो दोस्तों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें जरूर पहुँचाइएगा पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखें, कार्यक्रम सच्चा बचपन, वाकड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वाकथरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001 और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643। तो दोस्तों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपके अपने साथी अंजलि पारेश्वर को कार्यक्रम सच्चा बचपन से जाने की अनुमति। इसी अनुमति के साथ नमस्कार।

भाई ने बोनो घर तक निकलते वक्त कोई आपरो इंतजार करी रू है। माँ ने दुआ, पिता ने उम्मीद, निसोरनी मुस्कान होवे। इटली गाड़ी धीरे सलावो, हेलमेट पहरो, सीट बेल्ट लगाड़ो। एक नानी सी सावधानी हित जिंदगी बचाड़ी लेगा। सड़क सुरक्षा अपनावो,

कार्यक्रम खेतीबाड़ी हम रवा र हंगरे किसान भाई बोना ने आपनी बोन जागृति नु राम राम। आप सब हमरे रहो आपड़ो सामुदायिक रेडियो वाग रेडियो 90.8 FM माते ने आप सब नु स्वागत करा हूं अपने आज ने कार्यक्रम खेतीबाड़ी में। जिम के किसान भाई बोन अपने रोज ए कार्यक्रम खेतीबाड़ी ने लेने हाजिर थे सा एक नया विषय ने हाते तो आज नु एक नव विषय जुड़ाई रू है। आज नु विषय है पोषण समिति खेती हूं केवाय ने आनु हूं महत्व है। तो आ सब बातें आज आपड़े करंगा पण कार्यक्रम की शुरुआत में आपड़े हमरेला गीत ने मोरे करा आपड़ी बातें। आप हमर तरो आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें वागर रेडियो 90.8 FM माते।

0: दोस्तों, अगर चाहो तेज दिमाग और स्वस्थ जीवन तो आयरन युक्त तत्वों से भरपूर करें भोजन। खून में आयरन तत्वों की कमी होने पर एनीमिया रोग हो सकता है, जल्दी थकान होना, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, सांस फूलना, ये सभी एनीमिया के ही लक्षण हैं। लक्षण महसूस होने पर साथियों, अपने नजदीकी राजकीय स्वास्थ्य केंद्र में एनीमिया की निःशुल्क जाँच जरूर करवाएं। हीमोग्लोबिन का स्तर 7 से कम होना अति गंभीर स्थिति को दर्शाता है। ऐसी स्थिति में चिकित्सक को जरूर दिखाएं और उचित उपचार लें। वागर रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
1: सेहत नु राज हूं है बोन, असल आदत ने सही खुराक है बोन। जिम की परबात में शुरुआत पानी तकी करो, थोड़ू सू व्यायाम ने तात काढ़ी ने जीवन जीवा, फल सब्जी रोजे खा बीमारी ने दूर भगावा, जंक फूड तकी दूर रह नींदर पूरी ला ने खुश रह। होवे सेहत है असली धन आपरू, आज जीवन नो सहारो है, आज थकीस आ राज ने अपनावंगा ने जीवन ने स्वस्थ बनावंगा। होवे स्वस्थ रो खुश रो, क्योंकि आज है सेहत नो असली राज। वागर रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: जागृति बुन, आपने कारे सोचू है, अगर आप बुंदे रुके जाएंगा तो हूँ था है?
3: नाना अंजलि बुन, हूँ था का?
2: अरे जागृति बुन, आपड़ी जे नदिया है ये हुके जाएंगा, खेतर बंजर थे ही जाएंगा ने आपड़ो जीवन जे है ये भी रुकी जागा।
3: ओ अंजलि बुन, एटलेस मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ू जीवन है।
2: होवे जागृति पूर्ण, हर बूंद में आपड़ू जीवन है, ने आज धरती माता नु संबल है।
3: होवे अंजलि पूर्ण, आपड़े भाई बहन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नी राखो, बारिश ने पानी नु संग्रह करो, आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ू ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी जागा।
2: होवे होवे जागृति पूर्ण, आपड़े भाई बहनों ने कहो कि पानी बचाओ, पानी बचाओ ने अपनी धरती ने हरी भरी राखो, जल जीवन है आ अपनी पहचान है, हर बूंद नु मोल आपड़े जानो।
1: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम सच्चा स्वराज में आप सभी श्रोता साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट,
0: और मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा
0: नमस्कार। श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।
1: जी हाँ साथियों, लेकर हाजिर एक कार्यक्रम सच्चा स्वराज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बातें रहने वाली है जल संरक्षण को लेकर, जल संरक्षण गांव की खुशहाली की नींव को लेकर। जैसा कि अंजलि, गांव की पगडंडी से लेकर खेत की मेड़ तक, हरियाली से लेकर घर की खुशहाली तक, हर जगह पानी की कहानी जुड़ी है। पानी है तो खेत है, खेत है तो अन्न है, और अन्न है तो जीवन है। इसीलिए जल की हर बूंद केवल पानी नहीं बल्कि हमारे गांव के भविष्य की पूंजी है। और कहा भी गया है कि जल है तो कल है, जल बचाएंगे तो गांव बचेगा, गांव बचाएंगे तो भविष्य संवरेगा।
0: जी हाँ जागृति जी, तो आज कार्यक्रम सच्चा स्वराज में हमारी श्रोता साथियों से इस विषय पर ढेर सारी बातें रहने वाली है, लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत में क्यों ना हम श्रोता साथियों को एक प्यारे से गीत के साथ में मनोरंजन करवा दें।
1: जी हाँ, तो आइए साथियों सुन लेते हैं यह गीत, आप बने रहें कार्यक्रम सच्चा स्वराज में।

0: साथियों, इस गीत के बाद फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। जैसा कि गीत से पहले विषय से अवगत करवाया था कि आज हम बात करने वाले हैं जल संरक्षण गांव की खुशहाली की नींव को लेकर। तो कहना चाहेंगे कि पानी प्रकृति का ऐसा अनमोल उपहार है जिसके बिना जीवन की कल्पना भी हम नहीं कर सकते हैं। मनुष्य, पशु पक्षी, पेड़ पौधे और कृषि, सभी का अस्तित्व पानी से जुड़ा हुआ है। अंजलि, विशेष रूप से हम देखते हैं कि गाँव के लिए पानी का महत्व और भी अधिक है, क्योंकि ग्रामीण जीवन का बड़ा हिस्सा खेती, पशुपालन और प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर करता है।
1: बिल्कुल,
0: इसीलिए जल संरक्षण गांव की खुशहाली की नींव केवल एक विषय नहीं श्रोताओं, बल्कि गांव के वर्तमान और भविष्य से जुड़ा संकल्प है।
1: बिल्कुल जागृति जी, भारत के गांवों में सदियों से जल संरक्षण की समृद्ध परंपरा रही है।
0: बिल्कुल,
1: गाँव में तालाब, कुएं, बावड़ियां, जोहर और छोटे छोटे जल स्रोत बनाए जाते थे। वर्षा के पानी को रोकने और जमीन में उतारने की ऐसी व्यवस्था थी कि पानी लंबे समय तक गांवों की जरूरतों को पूरा करता था। लेकिन समय के साथ बढ़ती आबादी, पानी की बढ़ती मांग, जल स्रोतों की उपेक्षा और भूजल के अत्यधिक दोहन ने जल संकट को गंभीर बना दिया है।
0: बिल्कुल,
1: आज जरूरत इस बात की है कि हम पानी को केवल उपयोग करने वाली वस्तु न समझे, बल्कि सहेजने वाली प्राकृतिक संपदा माने।
0: जी हाँ अंजलि, क्योंकि गांव की खुशहाली का सीधा संबंध पानी से ही है। किसान के खेत में पानी होगा तो फसल होगी, फसल होगी तो परिवार की आय बढ़ेगी, पशुओं के लिए पानी और चारा उपलब्ध होगा, पशुपालन मजबूत होगा, खेती और पशुपालन मजबूत होंगे तो गाँव की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। इसके विपरीत श्रोताओं, अगर पानी की कमी हो जाएगी तो खेत प्रभावित होते हैं, पशुपालन कठिन होता है, परिवारों पर आर्थिक दबाव बढ़ जाता है, कई बार रोजगार की तलाश में लोगों को दूसरे स्थान पर जाना पड़ता है। इसीलिए जल संरक्षण केवल पर्यावरण का विषय नहीं है श्रोताओं, बल्कि रोजगार, आय और ग्रामीण विकास का विषय भी है।
1: जी हाँ जागृति जी, भारत में वर्षा के रूप में हर साल बड़ी मात्रा में पानी मिलता है, लेकिन उसका एक हिस्सा तेज बहाव के साथ गाँव से बहकर निकल जाता है। यदि इसी पानी को तालाबों, खेतों, जल संरचनाओं और अन्य स्थानीय माध्यमों से रोका जाए तो इसका लाभ लंबे समय तक लिया जा सकता है। बारिश का पानी बहने न दें, उसे गांव की धरती में उतार दें, ये जो चीजें हैं वो हमें अपनाने की जरूरत है।
0: बिल्कुल,
1: वर्षा जल संरक्षण के लिए घरों और संस्थानों में वर्षा जल संचयन की व्यवस्था की जा सकती है। खेतों में मेड़बंदी, छोटे जल संग्रहण ढांचे और उचित भूमि प्रबंधन के माध्यम से पानी को रोकने का प्रयास भी किया जा सकता है।
0: बिल्कुल अंजलि, क्योंकि खेती वाले क्षेत्रों में पानी के तेज बहाव से मिट्टी का कटाव भी होता है और पानी खेत से बाहर निकल जाता है। खेतों की मेड़बंदी समस्या को कम करने में मदद करती है। मेड़ पानी की गति को रोकती है, मिट्टी को बचाती है और खेत में नमी बनाए रखने में सहायता करती है।
1: बिल्कुल,
0: इसलिए किसान के लिए मेड़ बचाओ, पानी बचाओ, मिट्टी बचाओ का संदेश भी बहुत जरूरी है। साथ में कहना चाहेंगे कि गांव का तालाब केवल पानी जमा करने की जगह नहीं है श्रोताओं, ये गांव के पर्यावरण, पशुपालन, भूजल और सामुदायिक जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा भी है।
1: जी हाँ,
0: कई पुराने तालाब गाद, कचरे और अतिक्रमण जैसी समस्याओं के कारण अपनी क्षमता खो चुके हैं अंजलि। अगर समुदाय मिलकर इन जल स्रोतों की स्थिति सुधारने का प्रयास करें तो बारिश के पानी को लंबे समय तक सुरक्षित भी रखा जा सकता है।
1: जी जी,
0: हमारे पूर्वजों ने स्थानीय परिस्थितियों को समझकर जल संरक्षण की व्यवस्थाएं विकसित की थी। आज आवश्यकता है श्रोताओं कि हम उस ज्ञान को आधुनिक तकनीक और वैज्ञानिक सोच के साथ जरूर जुड़े।
1: जी हाँ जागृति जी, गांव में पानी का सबसे बड़ा उपयोग कृषि में होता है, इसलिए खेती में पानी का कुशल उपयोग जल संरक्षण की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है।
0: बिल्कुल,
1: किसानों को खेत की आवश्यकता के अनुसार सिंचाई करने, पानी की बर्बादी कम करने और स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल फसल योजना बनाने पर ध्यान देना चाहिए। ड्रिप और स्प्रिंकलर जैसे सिंचाई तकनीकें भी कई परिस्थितियों में पानी के बेहतर उपयोग में मदद कर सकती है। इसलिए श्रोता साथियों, खेत में मिट्टी की नमी को बनाए रखना भी बहुत जरूरी है, इससे सिंचाई की आवश्यकता कम करने में सहायता मिल सकती है।
0: बिल्कुल अंजलि, तो जैसा कि हम बात कर रहे हैं आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से जल संरक्षण गांव की खुशहाली की नींव को लेकर, तो ये बातें निरंतर आज के इस कार्यक्रम में श्रोताओं आपसे बनी रहेंगी, लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और गीत।
1: बिल्कुल।

0: श्रोता साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। जैसा कि गीत से पहले हम ढेर सारी बातों को जान रहे थे कि वर्षा की हर बूंद को गांव में हम कैसे रोक सकते हैं, खेत की मेड़ में छिपा है बड़ा समाधान, साथ ही तालाबों और पारंपरिक जल स्रोतों का पुनर्जीवन हम कैसे कर सकते हैं, खेत में पानी का समझदारी से उपयोग कैसे करें, ये ढेर सारी बातों को हमने जाना।
1: बिल्कुल
0: यही जागृति जी, इसमें महिलाओं की भागीदारी की बात करें तो श्रोता साथियों, जल प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका महिलाओं की होती है। ग्रामीण परिवारों में पानी के उपयोग और घरेलू जल प्रबंधन से जुड़े अनेक कार्य महिलाओं के अनुभव से जुड़े होते हैं।
1: बिल्कुल,
0: इसलिए गांव की जल योजना बनाते समय महिलाओं की आवाज अनुभव को महत्व दिया जाता है। जब महिलाएं, किसान, युवा और ग्राम सभा मिलकर निर्णय लेते हैं तो जल संरक्षण का प्रयास अधिक सामुदायिक और टिकाऊ बन सकता है।
1: बिल्कुल अंजलि, क्योंकि आज का युवा केवल भविष्य का नागरिक नहीं वर्तमान का परिवर्तनकारी भी है। जैसा कि आपने महिलाओं की भागीदारी के बारे में बताया था, यही हम युवाओं की जिम्मेदारी को लेकर भी बात करते हैं।
0: जी जी,
1: गांव के युवा जल संरक्षण को जन अभियान बना सकते हैं, जल स्रोतों की स्थिति का स्थानीय सर्वे कर सकते हैं, गाँव में जल जागरूकता अभियान चला सकते हैं, स्कूलों में जल बचत की गतिविधियाँ कर सकते हैं, साथ ही तालाब और अन्य जल स्रोतों की स्वच्छता के लिए सामुदायिक प्रयास भी कर सकते हैं, घरों में वर्षा जल संचयन के लिए जागरूकता बढ़ा सकते हैं, पानी की बर्बादी रोकने के लिए लोगों को प्रेरित भी कर सकते हैं। श्रोता साथियों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको ये कहना चाहेंगे कि मेरे गांव की एक बूंद भी व्यर्थ नहीं जाएगी, ऐसा हमें सोचना होगा। ये सोच एक बड़े जन आंदोलन का रूप ले सकती है।
0: बिल्कुल जागृति जी, जल संरक्षण के लिए हमेशा बड़े प्रोजेक्ट की जरूरत नहीं होती।
1: बिल्कुल,
0: शुरुआत हम हमारे घर से भी कर सकते हैं। नल को आवश्यकता से अधिक खुला न छोड़ना, पाइप और टंकियों के रिसाव को ठीक करना, जरूरत के अनुसार पानी लेना और घरेलू पानी के उचित पुनः उपयोग पर ध्यान देना, ये छोटी छोटी आदतें श्रोता साथियों, लेकिन सामूहिक रूप से इनका बड़ा प्रभाव हो सकता है।
1: बिल्कुल,
0: बूंद बूंद बचाकर ही घड़ा भरता है और घर घर की बचत से गांव का जल भंडार मजबूत होता है।
1: बिल्कुल,
0: कहना चाहेंगे जागृति जी श्रोता साथियों से कि जल संरक्षण किसी एक व्यक्ति का काम नहीं है, न केवल किसान, न केवल महिला, न केवल युवा और न केवल सरकार, बल्कि पूरे गाँव की भागीदारी आवश्यक है। ग्राम सभा में गाँव की जल समस्या पर चर्चा होनी चाहिए, कहाँ पानी जमा हो सकता है, कौन सा तालाब सुधारना जरूरी है, कहाँ जल बहाव को रोकने की आवश्यकता है, भूजल की स्थिति कैसी है, खेती में पानी का उपयोग कैसे बेहतर किया जा सकता है, ऐसे प्रश्नों पर सामूहिक विचार होना चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: जब गांव अपनी पानी की समस्या को समझकर स्वयं समाधान की दिशा में कदम बढ़ाता है तो जल संरक्षण केवल योजना नहीं रहता बल्कि ग्राम स्वराज की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बन जाता है।
1: बिल्कुल अंजलि, क्योंकि जल संरक्षण का संबंध पर्यावरण से भी गहराई से जुड़ा हुआ है। पर्याप्त पानी उपलब्ध होने पर पेड़ पौधे, पशु पक्षी और स्थानीय पारिस्थिति को भी लाभ मिलता है। जल स्रोतों का संरक्षण गांव के प्राकृतिक संतुलन को मजबूत कर सकता है।
0: बिल्कुल,
1: पेड़ लगाना, मिट्टी को बचाना, वर्षा जल को रोकना और जल स्रोतों को स्वच्छ रखना, ये सारे प्रयास एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हम देखते हैं कि अक्सर जल संरक्षण को केवल तालाब बनाने या वर्षा जल संग्रह करने से जोड़ते हैं, लेकिन पानी की बर्बादी रोकना भी उतना ही जरूरी है।
0: जी जी।
1: अगर एक तरफ हम जल स्रोत बना रहे हैं और दूसरी तरफ पानी का अनावश्यक उपयोग कर रहे हैं तो हमारा प्रयास अधूरा रहेगा। इसीलिए जल संरक्षण के साथ जल अनुशासन भी बहुत जरूरी है।
0: जी हाँ जागृति जी, जब गाँव में पानी उपलब्ध रहता है तो उसका सकारात्मक प्रभाव जीवन की कई क्षेत्रों में दिखाई देता है।
1: बिल्कुल,
0: खेती को सहारा मिलता है, पशुपालन मजबूत होता है, पेड़ पौधों को पानी मिलता है, स्थानीय रोजगार के अवसर बढ़ते हैं और परिवार को पानी की कमी से जुड़ी जो कठिनाइयां हैं उनसे राहत मिलती है। इस प्रकार जल संरक्षण वास्तव में गांव की खुशहाली, आत्मनिर्भरता और मजबूत भविष्य की नींव बन सकता है।
1: बिल्कुल,
0: याद रखिए श्रोता साथियों कि जल केवल प्राकृतिक संसाधन नहीं बल्कि जीवन की आधारशिला है। गाँव की समृद्धि का रास्ता खेतों से होकर गुजरता है और खेतों की समृद्धि का रास्ता पानी से होकर।
1: बिल्कुल अंजलि, तो हमारे श्रोता साथियों को हम कहना चाहेंगे कि न पानी को व्यर्थ बहने दो, न जल स्रोतों को सूखने दो, हर बूंद को सहेजो, अपने गांव का भविष्य संवारो। जल संरक्षण की शुरुआत किसी बड़े अवसर का इंतजार नहीं करती है श्रोताओं, एक घर से, एक खेत से, एक तालाब से और एक बूंद से इसकी शुरुआत हो सकती है।
0: बिल्कुल,
1: जब गाँव का हर परिवार पानी की कीमत समझेगा, जब युवा जल प्रहरी बनेंगे, जब महिला निर्णयों में भागीदारी बनेगी, जब किसान पानी का विवेकपूर्ण उपयोग करेंगे और जब ग्राम सभा जल संरक्षण को प्राथमिकता देगी, तभी हमारा गांव वास्तव में खुशहाल और आत्मनिर्भर बनेगा। क्योंकि पानी बचेगा तो गांव सजेगा, हर बूंद सहेजेंगे खुशहाली आएगी। जल की रक्षा केवल आज की जरूरत नहीं श्रोताओं, आने वाली पीढ़ियों के प्रति हमारी जिम्मेदारी भी है।
0: बिल्कुल जागृति जी, तो इस तरीके से कार्यक्रम में हमने ढेर सारी बातों को जाना। आज हम कार्यक्रम में जान पाए कि जल संरक्षण गांव की खुशहाली की नींव किस तरीके से है।
1: बिल्कुल,
0: आशा करते हैं कि ये सभी बातें श्रोता साथियों को अवश्य पसंद आई होगी, क्योंकि अब समय हो चला है हमारे आज के इस कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
1: बिल्कुल।

0: साथियों, इस गीत के साथ ही विदा लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि आज जो भी बातें रही कार्यक्रम सच्चा स्वराज के माध्यम से, वो बातें आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा स्वराज, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागथरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 3270001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643।
0: इसी के साथ साथियों, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में, इसी समय, एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर
0: और आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट को।
1: नमस्कार।

0: कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य सुनने वाले सभी श्रोता साथियों को आपके अपने साथी मनीषा पटेल
1: और आपके अपने साथी अंजलि पारेश्वर का प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाग रेडियो 90.8 FM और आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लेकर हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में। श्रोता साथियों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जिसकी जानकारी हर व्यक्ति के पास होना बहुत जरूरी है। ये जानकारी कभी भी कहीं भी किसी भी समय किसी की जान बचाने में मदद कर सकती है।
0: जी हाँ,
1: हमारा आज का विषय है मनीषा, प्राथमिक उपचार की जानकारी जरूरत के समय काम आए। जी हाँ श्रोता साथियों, हम सभी अपने जीवन में कभी न कभी ऐसी परिस्थितियों का सामना करते हैं जब अचानक किसी व्यक्ति को चोट लग जाती है, वह जल जाता है, बेहोश हो जाता है, सांप या किसी कीड़े के काटने की घटना हो जाती है, सड़क दुर्घटना हो जाती है या अचानक तबीयत बिगड़ जाती है। ऐसे समय में डॉक्टर अस्पताल तक पहुंचने में कुछ समय लगा सकता है।
0: जी हाँ,
1: यही वह समय होता है मनीषा जब प्राथमिक उपचार यानी कि फर्स्ट एड की सही जानकारी बहुत उपयोगी साबित हो सकती है।
0: जी हाँ,
1: कई बार हम सोचते हैं कि प्राथमिक उपचार केवल डॉक्टर, नर्स या स्वास्थ्य कर्मी को ही आता है, लेकिन वास्तव में परिवार के हर सदस्य, शिक्षक, युवा, ग्रामीण, माता पिता, समुदाय के जिम्मेदार लोगों को प्राथमिक उपचार की सामान्य जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि सही समय पर किया गया छोटा सा प्रयास भी किसी व्यक्ति की जान बचाने में मदद कर सकता है और चोट या बीमारी को गंभीर होने से रोक सकता है।
0: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से इस विषय को लेकर हमारे श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें रहेंगी।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है, तो क्यों ना उसी दस्तूर को निभाते हुए श्रोता साथियों को कार्यक्रम का पहला गीत हम सुनवा दी।
1: जी हाँ, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। जैसा कि श्रोता साथियों, गीत से पहले विषय तो बता ही चुके हैं कि आज हम बात करने वाले हैं प्राथमिक उपचार की जानकारी जरूरत के समय काम आए। जी हाँ श्रोता साथियों, किसी व्यक्ति को अचानक चोट लगने या स्वास्थ्य संबंधित परेशानी होने पर डॉक्टर या अस्पताल तक पहुँचाने से पहले श्रोता साथियों तुरंत और जरूरती सहायता दी जाती है, उसे ही प्राथमिक उपचार हम कहते हैं।
1: बिल्कुल।
0: उदाहरण के लिए श्रोता साथियों, अगर किसी व्यक्ति को हल्की सी चोट लग गई हो तो घाव साफ करने के लिए गर्म पानी या साफ कपड़े से पट्टी करना भी इसमें शामिल किया जा सकता है। इस तरह श्रोता साथियों, अगर किसी व्यक्ति को मामूली जलन हुई है तो जले हुए हिस्से को कुछ समय तक साफ बहते हुए पानी से साफ करना भी इसमें शामिल है। लेकिन श्रोता साथियों, हमें यह समझना जरूरी है कि प्राथमिक उपचार डॉक्टर के इलाज का विकल्प नहीं है। गंभीर चोट या बीमारी के समय श्रोता साथियों, व्यक्ति को जल्दी से जल्दी अस्पताल पहुंचाना या स्वास्थ्य केंद्र ले जाना हमारे लिए बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा। यही बात करते हैं कि दुर्घटना कभी बताकर नहीं आती। श्रोता साथियों, हमारे घर, खेत, सड़क, स्कूल, बाजार और कार्यस्थल कहीं भी दुर्घटना हो सकती है। उदाहरण के लिए, बच्चा खेलते खेलते गिर सकता है, रसोई में हाथ जल सकता है, खेत में काम करते समय चोट लग सकती है, सड़क पर दुर्घटना हो सकती है, किसी व्यक्ति को अचानक चक्कर आ सकता है, भोजन गले में फंस सकता है, सांप या कीड़े के काटने की घटना हो सकती है। ऐसे स्थिति में लोग घबरा जाते हैं। कुछ लोग बिना सही जानकारी के घरेलू नुस्खे अपनाने लगते हैं, इससे व्यक्ति और घबरा जाता है। इसलिए प्राथमिक उपचार के साथ साथ क्या नहीं करना चाहिए, इसकी भी जानकारी उतनी ही महत्वपूर्ण है।
0: बिल्कुल।
1: यही बात करें प्राथमिक उपचार के तीन उद्देश्य की, तो श्रोता साथियों, पहला उद्देश्य है जीवन की रक्षा करना। सबसे पहले ये देखना जरूरी है कि व्यक्ति सुरक्षित है या नहीं। यदि स्थिति गंभीर है तो तुरंत हमें डॉक्टर के पास ले जाना है, स्थिति को बिगड़ने से रोकना है। यानी कि उदाहरण के लिए, चोट लगने पर घाव को गंदगी से बचाना, खून बहने की स्थिति में सुरक्षित तरीके से दबाव देना या घायल व्यक्ति को अनावश्यक रूप से हिलाने डुलाने से बचना, स्वस्थ होने पर मदद करना। यानी कि प्राथमिक उपचार व्यक्ति को डॉक्टर तक पहुंचाने से पहले सहारा देता है और आगे के इलाज के लिए स्थिति को संभालने में भी मदद कर सकता है।
0: जी बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि घर या खेत में काम करते समय चोट लग सकती है, तो इसमें श्रोता साथियों, अगर चोट छोटी सी है तो सबसे पहले हाथ साफ करें, फिर घाव को हल्के पानी से धोने का प्रयास करें। इसे श्रोता साथियों, हम देखते हैं कि मिट्टी और गंदगी को हटाने में हमें मदद मिल सकती है। अगर श्रोता साथियों, खून निकल रहा है तो साफ कपड़े या गांज से थोड़ा सा हल्का सा हम दबा कर रख सकते हैं। खून रुकने के बाद श्रोता साथियों, घाव को साफ पट्टी से ढक ले। लेकिन श्रोता साथियों, अगर घाव है वो बहुत गहरा है, खून लगातार निकल रहा है या चोट गंभीर है, तो ऐसे में श्रोता साथियों, में स्वास्थ्य केंद्र या अस्पताल जाने की जरूरत है।
1: जी हाँ।
0: घाव पर मिट्टी, राब, गोबर या कोई गंदगी है तो उसे साफ करना हमारे लिए सबसे जरूरी है।
1: बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा। तो जैसा कि कार्यक्रम में हम ढेर सारी बातों को जान पा रहे हैं, आगे भी निरंतर ये बातें यूं ही बनी रहेंगी, लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
0: जी बिल्कुल अंजलि जी, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। जैसा कि गीत से पहले हम ढेर सारी बातों को जान पा रहे थे, यही बात करें कि प्राथमिक उपचार देने से पहले क्या करें। तो श्रोता साथियों, किसी भी घायल व्यक्ति की सहायता करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें ध्यान रखनी चाहिए। सबसे पहले अपनी सुरक्षा। यदि सड़क दुर्घटना हुई है, आग लगी है, बिजली का करंट लगा है या कोई अन्य खतरा मौजूद है, तो बिना सोचे समझे घायल व्यक्ति की ओर दौड़ना उचित नहीं है। सबसे पहले देखें कि आसपास कोई खतरा तो नहीं है, बिजली का तार तो नहीं है, आग या धुआं तो नहीं है, सड़क पर वाहन तो नहीं आ रहे, कोई जहरीला पदार्थ तो नहीं फैला है। सहायता करने वाला व्यक्ति स्वयं सुरक्षित रहेगा तभी वह दूसरों की मदद कर पाएगा।
1: जी हाँ।
0: इसी के साथ घबराहट नहीं, समझदारी जरूरी है। दुर्घटना के समय अक्सर आसपास भीड़ इकट्ठा हो जाती है, हर व्यक्ति अपनी राय देने लगता है। कोई पानी पिलाने को कहता है तो कोई तुरंत उठाने को कहता है तो कोई घरेलू उपचार करने लगता है।
1: जी हाँ।
0: लेकिन याद रखें कि हर घायल व्यक्ति को तुरंत पानी पिलाना जरूरी नहीं है, हर बेहोश व्यक्ति को झकझोरना सही नहीं है, हर चोट पर तेल घी या कोई अन्य पदार्थ लगाना उचित नहीं है। इसलिए स्थिति को समझना बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल।
0: इसी के साथ काटने या चोट लगने पर प्राथमिक उपचार करें। घर में काम करते समय, खेत, स्कूल में, किसी अन्य स्थान पर कटने या चोट लगने की घटनाएं हो सकती हैं। यदि चोट सामान्य है तो हाथ साफ करके सहायता करें। घाव को, जैसा कि मनीषा आपने बताया, उस अनुसार हमें पानी से सावधानी पूर्वक साफ करना है, साफ कपड़े से उसे ढकना है, और यदि खून बह रहा है तो साफ कपड़े या ड्रेसिंग से हल्का और लगातार दबाव देने की आवश्यकता है। गंभीर चोट या ज्यादा खून बहने की स्थिति में तुरंत स्वास्थ्य सेवा लें। घाव पर मिट्टी, राख, तेल, हल्दी या अन्य अस्वस्थ पदार्थ लगाने से संक्रमण का खतरा श्रोता साथियों बढ़ सकता है, इसलिए ऐसी चीजें ना करें।
1: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ कभी कभी हम देखते हैं कि किसी व्यक्ति को नाक से खून आने लगता है। ऐसे समय में श्रोता साथियों, व्यक्ति को हमें शांत रखना है, उसे बैठा कर रखें और थोड़ी देर उसे झुका कर रखें। नाक के श्रोता साथियों मुलायम हिस्से को कुछ मिनट तक हल्के से हम दबाकर भी रख सकते हैं। सिर को श्रोता साथियों ज्यादा पीछे नहीं झुकाना है हमें। अगर खून लंबे समय तक नहीं रुकता है, बहुत ज्यादा खून आता है या चोट लगने के बाद नाक में खून आ रहा है, तो ऐसे में श्रोता साथियों हमें डॉक्टर से संपर्क करने की भी जरूरत है।
0: बिल्कुल मनीषा, अगर यही बात करें कि रसोई में आग, गर्म तेल, गर्म पानी या अन्य कारणों से जलने की घटना आम हो जाती है, जलने की स्थिति में सबसे पहले व्यक्ति को जलने के स्रोत से दूर करें और प्राथमिक हिस्से को सामान्य ठंडे बहते पानी के नीचे कुछ समय तक ठंडा किया जा सकता है। लेकिन कुछ गलतियां बिल्कुल नहीं करनी होती है, जैसे कि जली हुई जगह पर टूथपेस्ट नहीं लगाएं, मिट्टी या राख नहीं लगाएं, तेल या घी लगाने से बचें, फफोले को नहीं फोड़ें, जलते हुए कपड़े को जबरदस्ती न खींचें यदि वह त्वचा से चिपक गया हो। इसी के साथ श्रोता साथियों, यदि जलन गंभीर है, चेहरा या शरीर का बड़ा हिस्सा प्रभावित है या व्यक्ति की स्थिति खराब है तो तुरंत अस्पताल ले जाना चाहिए। यही बात आती है कि जब खाना गले में फंस जाए तब हमें क्या करना चाहिए। तो कभी कभी मनीषा, खाना खाते समय भोजन का टुकड़ा गले में फंस सकता है। यदि व्यक्ति बोल पा रहा है या खांस रहा है तो उसे खांसने का मौका देना चाहिए। लेकिन यदि व्यक्ति सांस नहीं ले पा रहा, बोल नहीं पा रहा, उसी स्थिति गंभीर हो रही है तो आपातकालीन स्थिति हो सकती है और तुरंत प्रशिक्षित सहायता और चिकित्सा सेवा की आवश्यकता होती है। समुदाय में लोगों को सही तरीके से प्राथमिक उपचार, जीवन रक्षक तकनीकों का प्रशिक्षण मिलना चाहिए ताकि जरूरत पड़ने पर सही सहायता दी जा सके।
1: बिल्कुल अंजलि जी, यही अगर बात करें कि सांप के काटने पर हमें क्या करना चाहिए इसकी, तो श्रोता साथियों हम देखते हैं कि गांव और खेतों में सांप दिखाई देना एक सामान्य सी बात है। सांप के काटने की घटना हो तो हमें डरने के बजाय श्रोता साथियों जल्दी से जल्दी हमें चिकित्सा जाना चाहिए। व्यक्ति को शांत रखें, उसे ज्यादा चलने न दें। काटे हुए स्थान पर श्रोता साथियों हमें काटना या चूसना नहीं चाहिए। घावों पर मिट्टी, तेल या घरेलू पदार्थ भी हमें नहीं लगाने हैं। कसकर रस्सी बांधने की जो बोलते हैं कि पुरानी तरकीबें हैं, वो भी श्रोता साथियों हमें नहीं अपनानी है।
0: जी जी।
1: अंजलि जी, हम देखते हैं कि कई बार गांव के लोग बोलते हैं और सोशल मीडिया पर भी ज्यादातर बातें करते हैं कि अगर सांप या कोई ऐसा कुछ काट लेता है तो अगर हम उस जगह पर चूसते हैं या काट लेते हैं तो उसका जहर बाहर निकल जाता है। तो श्रोता साथियों, अक्सर हम देखते हैं कि ये धारणा है वो गलत होती है। वैसी बातें हमें नहीं माननी है और जल्दी से जल्दी हमें अस्पताल या स्वास्थ्य केंद्र उस व्यक्ति को पहुंचाना बहुत जरूरी है।
0: जी हाँ मनीषा, हर परिवार को पहले से कुछ तैयारी करनी चाहिए। उन्हें घर में प्राथमिक उपचार बॉक्स रखना चाहिए। परिवार के सदस्यों को उसका स्थान पता हो। महत्वपूर्ण फोन नंबर सुरक्षित रखें। बच्चों को आपात स्थिति में सहायता मांगना सिखाएं। संभव हो तो प्राथमिक उपचार का प्रशिक्षण लें। घर में आग, बिजली और फिसलन से बचाव की व्यवस्था करें। दुर्घटना होने के बाद तैयार होने से बेहतर है कि पहले से तैयारी की जाए। श्रोता साथियों, आपातकालीन स्थिति में समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। सही समय पर सही सहायता मिलने से व्यक्ति की स्थिति संभल सकती है। इसलिए हमें अपने परिवार और समुदाय में यह सोच विकसित करनी होगी कि मुझे डॉक्टर नहीं बनना है, लेकिन जरूरत के समय सही मदद करने लायक जानकारी जरूर रखनी चाहिए। प्राथमिक उपचार का ज्ञान हमें जिम्मेदार नागरिक बनाता है। यह केवल जानकारी नहीं बल्कि मानवता और संवेदनशीलता से जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण जीवन कौशल है।
1: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से इस विषय को लेकर ढेर सारी बातें हो चुकी हैं और समय भी हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा तो हम जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले क्यों ना श्रोता साथियों को कार्यक्रम का एक और गीत सुनवा दें।
0: जी हाँ।

0: श्रोता साथियों, इस गीत के साथ ही हमारा आज का कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य और हमारी स्वास्थ्य प्रति बातें अब यहीं समाप्त होती है। उम्मीद करते हैं कि आज के कार्यक्रम में हमारी आपसे जो भी बातें रही, गीत संगीत रही, वो आप सभी को जरूर पसंद आए होंगे। तो श्रोता साथियों, आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643।
0: इसी के साथ श्रोता साथियों, आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में, इसी समय, एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपके अपने साथी अंजलि पारेश्वर
0: और आपके अपने साथी मनीषा पटेल को।
1: नमस्कार।

सुबह सुबह एक ख्वाब की दस्तक पर दरवाजा खोला, देखा सरहद के उस पार से कुछ मेहमान आए हैं। आंखों से मानूस थे सारे, चेहरे सारे सुने सुनाए, पांव धोए हाथ धुलाए, आंगन में आस

भाई ने बोनो घर तक ही निकलते वक्त कोई आपरो इंतजार करी रू है। माँ ने दुआ, पिता ने उम्मीद, ने सोरनी मुस्कान होवे। इटली गाड़ी धीरे सलावो, हेलमेट पहरो, सीट बेल्ट लगाड़ो। एक नानी सी सावधानी हित जिंदगी बचाड़ी लेगा। सड़क सुरक्षा अपनावो क्योंकि घेरे कोई आपरो इंतजार करी रू है। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। बहन बोनो आ तो हती हमारी आज की सभा। हमें आशा कर रहा हूँ कि आज की सभा में प्रसारित था हमारा कार्यक्रम गीत संगीत आपने पसंद आई हुआ होगा। आपने हमारा आज ना कार्यक्रम केवा लग्या इन्हें बल्ले आप मने राय सुझाव आली शको हमारे अणपता माते। हमारू पतु है वागड़ रेडियो 90.8 FM मुकाम पोस्ट कोपड़ा वागधारा कैंपस बांसवाड़ा राजस्थान। हमारू पिन कोड नंबर है 327001। अजी वधारे जानकारी बल्ले आप मने फोन करी शको अमारे अणा फोन नंबर माते। अमारो फोन नंबर है 9414082643। तो भाईन बोनु आ तो हती आपणे आजनी सभा। बीजी सभा में फेरी मुलाकात थागा। तारुदी आपनी बोन अंजलि नु राम राम राम राम।